मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:56 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल

0: फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वरों में देशभक्ति गीत के साथ।

तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर परशिव सुरभूपा।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
1: हम सब ने सुना है संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष में परम सुख है, और यह कथन 100% सत्य है। यह उस दुर्लभ मोती के समान है जिसे संसार रूपी समुद्र से सीप से प्राप्त किया गया हो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है को मानने वाले ही संतोष का जीवन जीते हैं, और जो लालसा, लोभ, वासना, कामना, इंद्रिय सुख की वृत्तियों से ग्रस्त रहते हैं वे सदैव असंतुष्ट रहते हैं। असीमित इच्छाएं, अतृप्त रहने की प्रवृत्ति मनुष्य को अधीर व्यग्र बनाए रखती हैं, और प्रायः वह दुष्प्रवृत्तियों की ओर मुड़ जाता है। फलतः संतोष समाप्त हो जाता है, जीवन की दिशा उत्तान के मार्ग पर न जाकर पतन के मार्ग पर चलने लगती है। लक्ष्य धुंधला पड़ जाता है, यह भी पालूं वह भी मिल जाए कि उधेड़बुन संतोषी बनने ही नहीं देती। यह समय बाहरी चकाचौंध का है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह भी उसमें खींचा चला जाता है और व्याकुल सा रहता है। भौतिक जगत, आधुनिक संसाधनों ने संतोष नाम का अमूल्य मोती छीन लिया है। जो भी प्राप्त होता है वह अपर्याप्त ही लगता है। एक और दुर्गुण मानव में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है, अन्य से तुलना, फिर उसे अपने में कमियां ही लगती हैं। परिणामतः सीमित साधनों में भी वह प्रसन्न नहीं रह पाता। अधिकाधिक प्राप्त करने का मोह स्वप्न में भी संतोष प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं। उच्च महत्वाकांक्षाएं धैर्य धरने भी नहीं देती, इनका आकाश ऊंचा और ऊंचा होता चला जाता है, जो सीमा विहीन होकर मनुष्य की पहुंच में नहीं होता। मन की चंचल गति उसे विचलित करती है, और कई बार यह स्थिति तनाव अवसाद का मूल कारण बन जाती है। असंतोष दुखों का कारक है। अंतहीन आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। तो कभी हमारी परिस्थितियां कभी अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल, या कभी किसी प्रकार का अवरोध आकांक्षाओं को अपूर्ण बनाता है। ऐसे में संतोष भाव समाप्त हो जाता है, मिलती है पीड़ा। अपर्याप्त धन, सीमित सुविधाएं, हानि देता व्यवसाय, मन वांछित नौकरी का न होना मनुष्य के असंतोष का कारण बन जाते हैं। किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह इन कठिनाइयों, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खोए, जीवन में संतुलन बनाकर समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़े और संतोष से जीना सीखे। हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म भी संतोष या असंतोष का आधार होते हैं। सत्कर्म जैसे परोपकार, दान, सहयोग, सहानुभूति, प्राणी मात्र से प्रेम आदि भी संतुष्टि प्रदान करते हैं, जबकि आसुरी वृत्तियां जैसे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, हिंसा, धन का लोभ, निंदा, हृदय में चिढ़, कुंठा का भाव भरकर संतोष भाव को जीवन से ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थितियों, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य करना चाहिए। संयमित दिनचर्या होनी चाहिए। मूलभूत जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी प्राथमिकता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अन्य आवश्यकताएं पूरक हैं। संतोष सुख शांति का पर्याय है। संतोष जीवन में रहेगा तो सुख शांति स्वमेव आ जाएगी, लेकिन धन संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग विलास की वस्तुएं संतोष प्राप्ति का साधन कदापि नहीं हो सकती। इनसे केवल शारीरिक, मानसिक सुख मिल सकता है। संतोष तो अदृश्य रहने वाला वह भाव है जिसे योगी, साधु, सन्यासी, महात्मा अथवा ज्ञानी प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी दृष्टि इस पर हो कि हमने क्या क्या पाया और जो मिला है वह दूसरों की अपेक्षा बेहतर है, यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, इस पर विचार करते रहें तो कभी भी संतोष नहीं मिलेगा। अपनी अवांछित इच्छाओं पर अंकुश लगाएं, जीवन को संयमित जिए, अनावश्यक व्यय न करें, दिखावे, आडंबर से कोसों दूर रहें। ईश्वर ने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें ही संतोष है। यही संतोष आत्मा तक पहुंचकर प्रसन्नता से परिपूर्ण करता है। संतोष धन वह है जिसके पास है वह सबसे बड़ा धनी है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर था पद्माक्षी अवस्थी का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। गायक हैं सुरेश वाटकर, संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं, आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोषरहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है, जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा, जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत, चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले, तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती, देव नदी गंगा, शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे। तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। गायक थे सुरेश वाडकर, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चौकोट।
1: काश्तकार भाई बहन मन, खेती कमानी का जे बैला भैंसा चो खूबे जरूरत पड़े से, ये मन चो नहालोर खेती कमानी मुश्किल होए दे। हम चाहन गांव मन ने सबे ठान ने ढोर अस्पताल निहाय, गुनुक गाय बैला के कई बीमारी पड़लो ने ये मन चो इलाज करा तो काजे किसान भाई बहन मन के खूबे तकलीफ होए से। असन ने गाय बैला ने जौट तो रोग और हुंचो रोकथाम चो वाट के जानून रले, पशु जनावर चो प्राथमिक उपचार किसान आपलो घरे बोले करुक लाए सकोत। तो या काश्तकार भाई बहन मन, पशु जनावर ने जौट तो रोग और हुंचो रोकथाम चो वाट के हामी जानू। बैला भैंसा ने पेट फूलतोर गोटक बीमारी होय से, ये बीमारी ने बैला भैंसा चो पेट फूले से और ए मन के खूबे तकलीफ होय से। गाय बैला चो पेट फूल तोर कारण होय से जेबे एमन खूबे मात्रा ने हरा चारा खासोत तेबे असन होय से। नहाले कुहलो खराब बीती चारा खादलो ने, नहाले फिर गंदला पानी के पीवलो ने, नहाले पेट ने केस रूंडा हौंदरलो ने, ये सबे कारण लागुन बैला भैंसा चो पेट ने फूला चेगाव रह से। ये बीमारी ने पेट ने अनगर मात्रा ने लेहरा भरी होय से, जेचो लागुन पशु के निनाश धरतो ने तकलीफ होय से। पशु जनावर दुखा काजे पाए के भूई ने बिसार मारते रुवात और पेट के बले लात मारुआत। ये जो रोकथाम काजे घर ने 1 लीटर खातो बीती तेल, 1 लीटर गरम पानी और 20 ग्राम खातोर सोडा मिलाऊन पशु जनावर के पियाऊन दे तो राय, असन कर ले एमन चो तकलीफ कम होय दे। गाय बैला ने पेट सूल नाव चो बीमारी होय से, एके हमी पेट दुखा चो बीमारी बले बलुक लाए सकू। ये बीमारी जौट तोर कारण होय से जेबे पशु खाली पेट ने रह से और अगर बूता करुन दय से तो हुनके पेट दुखा होय से। और हुन चो खातो बीती आहार ने अचानक बदली कर ले, नहाले लेहरा के जौटा तो बीती कई जिनिस के खादलो ने पशु जानवर के पेट दुखा उठुक सके। असने पशु चोपेट ने चारा कुहुन रले, नहाले पेट भीतर ने घाव हौन रले और पथरी हौन रले बले पेट दुखुआए। काश्तकार भाई बहन मन, बैला भैंसा के पेट दुखा चो बीमारी होले ए चो लक्षण बल्ले चीना असन दखा पड़े दे। पशु घन घन पेट के दखुन पाए के भूए अपटते जाए दे, जुगे पेट दुखा दिलो ने भूए ने लोंडून उलट पुलट होए दे और दांत कट रे दे। असन ने हम के जानतो राय कि ये पशु के खुबे पेट दुखा दय से। काश्तकार भाई बहन मन, तुरते घर ने एचो रोकथाम काजे जीरा 15 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम, काला नमक 5 ग्राम, हरट 20 ग्राम, ये सब जाग के मिसाउन पिसुन भाती गर्म पानी संगे पशु जनावर के पियाउन दे तो राय, असन कर ले पेट ने भरलो लेहरा बाहर निस्के दे और पशु के अच्छा लागे दे। पशु मन के 20 से 30 ग्राम मात्रा बड़े पशु मन के और नानी पशु मन के 10 ग्राम मात्रा दिन ने दुहार पिया तो राय। काश्तकार भाई बहन मन, के भाई जे भाई हामी दुखुआओं की बैला भैंसा चारा खाऊक नहीं मने आऊआत और असन हुन मन तेबे करुआत जेबे पशु के जर धरली से, नहाले पेट दुखा दय से, नहाले और कोनी दूसर प्रकार चो बीमारी होली से। तो काश्तकार भाई बहन मन, एचो घर ले इलाज काजे 10 ग्राम अजवाइन, आंवला 20 ग्राम, चित्रक 5 ग्राम, पीपली 5 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, हरट 15 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम और जीरा 10 ग्राम, ये सब जाग के मिसाउन कुटुन भाती चूर्ण तैयार करतो राय और बड़े पशु के 20 से 30 ग्राम और नानी पशु के 10 ग्राम तैयार कर लो चूर्ण के गर्म पानी संगे दिन ने दुहार पिया तो राय। असन कर ले पशु के चारा नी खाऊ भाव तो बीती बीमारी ले उपचार होय दे और पशु जो ना चारा खाऊ मुरे आए दे। गाय बैला भैंसा ये पशु मन तो हम जो संगे गोठियाउक नहीं सकोत, मानतर हमन मन के ये पशु मन ने जौट तोर बीमारी चो लक्षण बल्ले चीना के जानून रतो राय और ये मन के कहीं बल्ले तकलीफ होय से बल्ले आप लोग घरेज प्राथमिक उपचार करतो राय, फिर पाछे ढोर डॉक्टर मन के बल्ले दखातो राय। हम जो खेती कमानी ने बैला भैंसा खूब सहायता देसोत तो हम के बल्ले आप लोग घर चो लोग असन ये मन के मानतो राय और बीमार पड़ ले ये मन चो नगद इलाज करातो राय।
0: आप सुन रहे थे बेड़ा खाड़ा चौगोट, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हुलहुली में लीजिए सुनिए राउत गिरलीपाड़, वादक कलाकार हैं धर्मू और साथी।

0: हुलहुली में आप सुन रहे थे राउत गिरलीपाड़। वादक कलाकार थे धर्मू और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम इनसे मिले हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 7:05 पर सुनेगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर आकर्षण। सुनेगा छलकी मीम साहब की चप्पल। लेखक होंगे जगदीश अधिकारी, निर्देशक होंगे के परेश और होगी मधुरिमा। लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी का अंक 3 आप सुनेंगे सुबह 9:00। संपादक होंगे भरत कुमार गंगादित्य। सुबह 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज आप सुनेंगे फिल्म राम बलराम के गीत। गुलशन में सुनेगा मेरी पसंद सुबह 10:00। सुबह 10:30 पर प्रस्तुत करेंगे हल्बी लोकगीत। कार्यक्रम होगा गुरदुम और कलाकार होंगे बसंती और साथी। रुसरुसा में आप सुनेंगे लोकगाथा आंधा राजा का भाग 2 सुबह 11:00। गायिका होंगी सुबरी बाई। एक ही कलाकार में आप सुनेंगे पार्श्व गायिका ध्वनि भानुशाली की फिल्मों के गीत दिन के 11:30 पर। दोपहर 12:00 सुनिएगा कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कृषि सामये की बेड़ा खाड़ा चौकोट का पुनः प्रसारण। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। FM बैंड 100.1 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे दोपहर 3:00 से। संध्याकालीन सभा में सुनेगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। जगार गीत सुनेगा शाम 6:35 पर। कलाकार होंगे सुदनी और साथी। बस्तर के स्वर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। शाम 7:21 पर सुनेगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव। घलर में प्रस्तुत करेंगे हल्बी लोकगीत रात 8:00। कलाकार होंगे बदरू कश्यप और साथी। पिलामन काजे गोठ में सुनेगा ऋतु चक्र के बारे में रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी बंशीराम कश्यप की। नंजर में आप सुनेंगे भेंट वार्ता रात 9:15 पर। तुकेश्वर प्रसाद खोटे से बातचीत करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात 9:30 पर खेल पत्रिका में सुनिएगा भेंट वार्ता। मैराथन खिलाड़ी कुसुम शार्दुल से बातचीत करेंगे भरत कुमार गंगादित्य। रात 10:00 प्रस्तुत करेंगे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की। संयोजक होंगे चंद्र ऋषि ठाकुर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासि परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-तम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलदूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन यूयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंदः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है।

0: उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

नमस्कार श्रोताओं, आज के नमस्कार जगदलपुर के साथ मैं तृप्ति परिडा आज आपके लिए है झलकी और मधुरिमा।

श्रोताओ, बच्चों की हंसी में ही भविष्य की सबसे मधुर धुन छिपी होती है। जब उनके सपनों को उड़ान मिलती है, तभी समाज प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता है। आज हम बात कर रहे हैं बाल श्रम निषेध दिवस की, जो हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। ये अवसर हमें ये सोचने का संदेश देता है कि बचपन का स्थान कामकाज की कठिनाइयों में नहीं, बल्कि शिक्षा, खेलकूद और खुशियों के संसार में होना चाहिए। बच्चे किसी भी देश की सबसे मूल्यवान पूंजी होते हैं। उनके कोमल हाथों में किताबें, रंग और सपने होने चाहिए, न कि मजदूरी का बोझ। दुर्भाग्य से आज भी अनेक बच्चे आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण बाल श्रम करने को मजबूर हैं। इससे उनका स्वास्थ्य, शिक्षा और सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। बाल श्रम केवल एक सामाजिक चुनौती नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन भी है, और शिक्षा ही वो माध्यम है जो उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की ओर ले जाती है। इसलिए समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बाल श्रम को रोकने और बच्चों को विद्यालय से जोड़ने में सहयोग करे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सहभागिता हो, क्योंकि जब बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और खुशहाल बचपन मिलेगा, तभी राष्ट्र का भविष्य मजबूत होगा। तो आइए, बाल श्रम को ना कहें, शिक्षा को हाँ कहें। बचपन बचाएं, भविष्य संवारें।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
5: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। आइए अब सुनते हैं झलकी, मेम साहब की चप्पल। लेखक हैं जगदीश अधिकारी, निर्देशक हैं के परेश।

0: अरे 10 बज गए, बाप रे, बड़े बाबू आएंगे तो जान खा जाएंगे। जल्दी जल्दी काम निपटाओ शंभू बेटा। तो इस चप्पल की पोटली को कहां रखूं? इसे खरीदते खरीदते इतनी देर हो गई, कब से जिद कर रही थी बेचारी, कहां रखूं भाई। हां साहब तो दौरे पर गए हैं, साहब के चैंबर में रख देता हूं, उसके बाद फटाफट काम निपटा लूंगा।
1: देखा, पूरे 10 बजे हैं और हम हाजिर हैं अपने दफ्तर में। मैं जानता था कोई नहीं आएगा और आज भी कोई समय पे नहीं आया है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे ना, और ये हमारा देश सुधरेगा।
0: नमस्ते बड़े बाबू, मैं तो
1: आ गया। हाँ हाँ अभी आया होगा। अरे तेरे जैसे चपरासी का समय दफ्तर खुलने के पहले आकर झाड़ू पोछा करके साफ सफाई करके 10 बजे तक दफ्तर को टीप टाप रखना है, और तू अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। तू मैं जानता हूं ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे और ना ये देश सुधरेगा। अरे अब खड़ा क्या है, जल्दी जल्दी हाथ चला।
0: जी जी बड़े बाबू। हरे कृष्ण, नमस्ते बड़े बाबू। जरा घड़ी देखिए तो, आज मैं सही समय पर आया हूँ।
1: हाँ हाँ बराबर सही समय है शर्मा जी, जब से इस दफ्तर में आप आए हैं तब से यही टाइम आप मेंटेन कर रहे हैं।
0: हरे कृष्ण, मैं जानता था आज मैं किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर लेट नहीं हो सकता।
1: जी हाँ शर्मा जी, आज आप बराबर आधा घंटा लेट हैं।
0: मतलब हरे कृष्ण।
1: शर्मा जी आज तक 10:30 से पहले कभी भी आपका यहाँ आना मेरे नयन युगल ने ना तो देखा है ना मेरे इन कर्ण युगल ने कभी सुना है, और आज भी।
0: हरे कृष्ण, क्या करूं बड़े बाबू, आप तो जानते हैं साहब के घर का काम करना पड़ता है। आज गया था डॉक्टर के पास साहब का मेडिकल बिल लेकर, सिर्फ डॉक्टर साहब को दस्तखत करने में घंटे लग गए। साहब का बिजली बिल पटाने गया और बिजली ऑफिस की भीड़ में लंबी लाइन में लग जाता तो आज या तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती या आपको एक्सप्लेनेशन। फिर भी बिना बिजली बिल पटाए बिना खाए पिए दौड़ते हुए अभी दफ्तर इस आशा से पहुंचा हूं कि शायद आप कहें कि मैं आज सही समय पर हूं, मगर हरे कृष्ण।
1: अब बस कीजिए शर्मा जी, अरे बहुत हो चुका, कृपया अपना यह विस्तार अब आप बंद कीजिए और बैठ जाइए अपनी कुर्सी पे। राम जी का या कृष्ण जी का जिनका भी नाम आपको लेना है ना, उनका नाम लेते जाइए और अपना काम शुरू कीजिए।
2: गुड मॉर्निंग बड़े बाबू। मॉर्निंग शर्मा जी।
1: आप भी
2: लेट हो गया, सॉरी।
1: हाँ हाँ पूरे 1 घंटे लेट हैं आप।
2: हो गया ना बड़े बाबू, तो
1: क्या? अरे भाई ऑफिस का एक डिसिप्लिन होता है, एक कानून होता है, सही समय पर आना ऑफिस का डिसिप्लिन है।
2: ये डिसिप्लिन सबके लिए होना चाहिए।
1: अरे होना क्या चाहिए, होगा। होगा नहीं, हो रहा है और बराबर हो रहा है। देखो मेरे लिए सब समान है, कानून की देवी जैसे आंख में पट्टी बांधकर अपना फैसला सुनाती है वैसे ही मेरे लिए सब बराबर है।
2: सॉरी, फिर से सॉरी बड़े बाबू, कल से सही समय पर आऊंगा।
1: ठीक है। देखो तुम अभी युवा हो, यंग हो, नई नई नौकरी ज्वाइन की है तुमने और नौकरी का लंबा रास्ता तुम्हारे सामने पड़ा है।
2: ठीक है बड़े बाबू, अब मैं सही समय पर आऊंगा।
3: बड़े बाबू सब साफ हो गया, अब मैं डाक लेने जाऊं?
1: अरे हाँ भाई हाँ, जल्दी जाओ।
0: हरे कृष्ण। बड़े बाबू आप देश के बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है मेरे साथ आपकी नौकरी भी हरे कृष्ण हो जाएगी।
1: क्यों, कैसे और किस लिए भला? अरे भाई क्या गलती हुई है हमसे, क्या कोई गलत नोट चला गया है? मैंने तो सरकारी खजाने का कभी कोई दुरुपयोग नहीं किया, मेरी नौकरी हाथ से निकलकर भला जाएगी कहाँ?
0: हरे कृष्ण, जा सकती है बड़े बाबू, क्योंकि जीपीएफ वाली फाइल नहीं मिल रही है।
1: जीपीएफ वाली फाइल? अरे वो तो मेरे पास थी।
0: हरे कृष्ण, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके पास भी वो नहीं मिल रही है।
1: अरे भैया तो साहब के पास होगी।
0: साहब तो दौरे पे गए हैं।
1: अरे उनका चेम्बर तो है।
0: चेम्बर?
1: अरे कल भेजा था, शायद दस्तखत करके वहीं रख दिए होंगे। शर्मा जी कृपया जाकर ले आइए, और ध्यान रखिए शर्मा जी, ये इन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाकर अपनी नौकरी के साथ मेरी ईमानदार और अनुभवी नौकरी को दांव पे मत लगाइए, समझ गए ना?
0: जी बड़े बाबू।
1: समझ में नहीं आता इन लोगों का, ये लोग कैसे सुधरेंगे और ये देश कैसे सुधरेगा।
4: नमस्ते बड़े बाबू, सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। क्या करूं, कसम खाई थी सही समय पर दफ्तर पहुंचूंगी। ना चाहते भी लाख कोशिशों के बाद आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी वाले प्रॉमिस के बावजूद लेट हो गई।
1: अरे कोई बात नहीं रीनी जी, होता है होता है। हम अच्छा सोचते हैं, सही करना चाहते हैं, मगर लोग, अरे हाँ कमबख्त लोग रीनी जी, अच्छा कभी चाहते ही नहीं। इसलिए अक्सर मैं सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचने में लगभग 100% मजबूर हो जाता हूँ रीनी जी, कि इस देश का क्या होगा।
4: मेरा क्या होगा सर?
1: अरे कुछ नहीं होगा रीनी जी, आप अपना काम शुरू कीजिए। अरे नो प्रॉब्लम।
5: हाँ ये लेट आएंगे तो नो प्रॉब्लम, और हम एक बार भी लेट हुए तो आंख दिखाकर कहता है बीजापुर ट्रांसफर कर दूंगा।
1: क्या कहा?
5: कुछ नहीं।
6: हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
7: बड़े बाबू बड़े बाबू, देखो देखो ये क्या है।
1: अरे क्या है भाई?
7: ये पैकेट।
1: अरे अरे शर्मा जी छूना मत, छूना मत इसे। अरे वहीं रख दो जमीन पर यार। अरे अनजानी चीज पकड़ना तो दूर, अरे उसे छूना भी गुनाह है। अरे नजदीक मत जाना उसके। अरे अरे उसे देखो भी मत शर्मा जी, अरे छुओ मत। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे एंटी बम स्क्वाड भेजने के लिए उनसे अनुरोध करूंगा मैं। अरे शर्मा जी रखो यार।
7: लेकिन लेकिन ये सब क्यों बड़े बाबू?
1: अरे समझते नहीं हो यार, क्या होगा इस देश का, आप जैसे नासमझ लोग जहाँ रहते हैं। अरे शर्मा जी इसमें बम भी हो सकता है।
7: हरे कृष्ण बम नहीं बड़े बाबू, ये तो एक जोड़ी नई चप्पल है।
4: चप्पल देखू तो? अरे कितना सुंदर है, छोटा छोटा, सो क्यूट। ये तो 100% लेडीज चप्पल है। शर्मा जी ये क्या आपकी बेटी के लिए या भाभी जी के लिए?
7: हरे कृष्ण ये मेरा नहीं है मैडम, साहब के चेम्बर में था।
4: साहब के चेम्बर में?
7: हाँ, जब जीपीएफ वाली फाइल के लिए मैं साहब के चेम्बर में गया तो फाइल तो नहीं मिली, लेकिन ये पैकेट मिल गया। साहब के चेयर के पास था, पांव लग गया तो पता चला एक जोड़ा नया चप्पल।
4: साहब के चेयर के बिल्कुल नजदीक था शर्मा जी, फिर ऊपर से लेडीज चप्पल, शायद शायद ये मेम साहब की चप्पल होगी। साहब खरीदे होंगे, घर ले जाना भूल गए होंगे और
7: हाँ फिर आज दौरे पे चले गए। मेम साहब की चप्पल मेम साहब तक पहुंची नहीं अब तक।
5: अरे शर्मा जी, मेम साहब की चप्पल अगर होती तो साहब क्या फोन करके चपरासी से मंगा नहीं सकते?
4: नहीं राजू जी, शायद साहब मेम साहब को सरप्राइज देने के लिए सोच रहे होंगे।
7: वह सब जो भी हो, यह चप्पल मेम साहब की है, मुझे दो, मैं इसे अभी पहुंचा देता हूं।
1: आप? अरे आप क्यों वहां पहुंचाएंगे शर्मा जी?
7: हरे कृष्ण मैं क्यों पहुंचाऊंगा? आप सब जानते हुए ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। आप इस दफ्तर का चप्पा चप्पा जानते हैं बड़े बाबू, मैं ही साहब के घर का सब काम करता हूँ। सिलेंडर की बुकिंग, साहब का बैंक खाता खोलने से लेकर मेम साहब का छोटा बड़ा सब काम।
5: हाँ इसलिए आपको अपना बनाया हुआ अधिकार मिल ही गया। आप ये चप्पल मेम साहब के पास पहुँचा कर साहब के गुड बुक में आकर CR का फायदा लेना चाहते हैं।
7: हरे कृष्ण राजू जी, आप खामखा मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मैं आज तक कभी भी इस प्रकार की चमचागिरी करते हुए अपना स्वार्थ या अपना काम नहीं निकाला हूँ।
4: और शर्मा जी राजू जी आप क्यों बहस करते हैं? साहब जहाँ रहते हैं हमारा घर तो उधर ही है। मैं एक काम करती हूँ, ये चप्पल मैं मेम साहब को पहुँचा देती हूँ।
2: तुम्हारा घर तो धर्मपुरा है और साहब रहते हैं लालबाग में, मतलब एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम, आप कैसे पहुंचाएंगे? लाइए मैं पहुंचाऊंगा ये चप्पल, मैं लोकल लड़का हूं, यह मेरा काम है। दीजिए शर्मा जी, मैं अभी से मेम साहब को देकर आता हूं।
1: नहीं कोई नहीं जाएगा वहां। अरे इस दफ्तर का बड़े बाबू मैं हूं, मुझे बिना पूछे बिना मेरी इजाजत के यहां से ये चप्पल कोई नहीं ले जा सकता, समझ गए?
7: लेकिन बड़े बाबू आप तो जानते हैं मैं तो साहब के घर का सब काम।
1: हाँ हाँ सब काम करते हैं मैं जानता हूँ, इसीलिए तो आपके महीने में 4-4 छुट्टियां लेने के बाद भी साल के आखिर में आपके खाते में 8 TL शेष रहते हैं शर्मा जी।
2: आप ही तो सही फायदा उठाते हैं शर्मा जी। बड़े बाबू चप्पल लेकर मैं जाऊंगा।
1: नहीं श्रीमान आप भी नहीं जाएंगे, अगर आप ये चप्पल देने जाएंगे तो मेरी टेबल से आपकी फेस्टिवल एडवांस फाइल कैसे हेड ऑफिस पहुंचेगी राजू बाबू, ये मैं देखूंगा।
4: रियली बड़े बाबू, मैं एक काम करती हूँ, धूप तेज है फिर भी आपका मान सम्मान इज्जत रखने के लिए मैं ये तकलीफ सह लूंगी। धूप में भी रिक्शे का पैसा खर्च करके भी मेम साहब को यह चप्पल पहुंचा दूंगी। देखो तो कितने प्यार से साहब ने खरीदा है।
1: नहीं, कोई नहीं जाएगा मेम साहब की चप्पल पहुंचाने, आप में से कोई भी नहीं जाएगा।
2: साहब खुद देंगे क्या?
4: साहब को दौरे से आने में तो एक हफ्ता लग जाएगा, तब तक यह चप्पल आउटडेटेड ना हो जाए और मेम साहब को भी पसंद ना आए।
1: इसीलिए रिनी जी मैंने ये सोचा है कि अगर इस दफ्तर में साहब द्वारा खरीदी गई ये प्यारी सी सुंदर सी खूबसूरत सी कंट्रोवर्सियल चप्पल मेम साहब के पास पहुंचाने का एकमात्र संवैधानिक नैतिक और शारीरिक अधिकार अगर किसी का है तो वो सिर्फ मेरा है।
2: आपका?
1: हाँ, क्योंकि इस दफ्तर का बड़े बाबू मैं हूँ, आप सबसे सीनियर मैं हूँ, इसलिए ये काम सिर्फ और सिर्फ मुझे करना चाहिए। शर्मा जी लाइए वो मेम साहब की चप्पल मेरे हाथ में पकड़ाइए, उनके क्वार्टर में आज अभी और इसी वक्त जाऊंगा।
3: लीजिए बड़े बाबू डाक, और ये पैकेट आप सब ऐसे मिलकर बड़े बाबू के हाथ में क्यों दे रहे हैं?
2: तू समझेगा नहीं शंभुनाथ, बड़े बाबू अपने सीआर के लिए साहब को पटाने के लिए मेम साहब की चप्पल पहुंचा रहे हैं।
3: मेम साहब की चप्पल?
4: हाँ देखो ना कितनी सुंदर है।
3: लेकिन ये कहाँ से मिली?
7: हरे कृष्ण मिलेगी कहाँ से, साहब के चेम्बर में थी।
3: साहब के चेम्बर में? साहब के चेयर के पास?
7: हाँ, पर तुझे कैसे मालूम?
3: देखूं तो।
4: देख शंभू कितनी महंगी चप्पल है, शायद इम्पोर्टेड भी हो सकती है।
3: इम्पोर्टेड
4: मतलब विदेशी भी हो सकती है। मेम साहब क्या ऐसी वैसी चप्पल पहनती है? देख मगर आहिस्ता से, नहीं तो इतने नजदीक से देखने का कमबख्त मौका ही नहीं मिलेगा।
3: देखता हूँ, लेकिन इसे बड़े बाबू इतने इज्जत के साथ क्यों पकड़ के रखे हैं?
4: अरे बुद्धू मेम साहब को देना है ना।
3: क्यों?
7: यह मेम साहब की चप्पल है ना।
2: तेरा काम बड़े बाबू कर रहे हैं।
4: मतलब चप्पल पहुँचाने जा रहे हैं?
3: ये थोड़ी मेम साहब की चप्पल है।
2: तो
3: ये तो मैंने खरीदा था फुटपाथ से अपनी बीवी के लिए मोल भाव करते हुए 20 रुपए में, और हड़बड़ी में चप्पल साहब के चेम्बर के चेयर के पास रख दिया था।
2: क्या?

आप सुन रहे थे झलकी मेम साहब की चप्पल। लेखक थे जगदीश अधिकारी। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। बड़े बाबू आलोक अवस्थी, शर्मा जी रतन व्यास, रिनी कुमारी भारती रथ, शंभु के श्रीधर और राजू संपत झा। इस झलकी के निर्देशक थे के परेश। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, बचपन जीवन का वो सुनहरा दौर है जहां सपने जन्म लेते हैं, प्रतिभाएं निखरती हैं और भविष्य की नींव रखी जाती है। बच्चों की दुनिया जिज्ञासा, सीखने की चाह और अनगिनत संभावनाओं से भरी होती है। इसलिए उनका स्थान काम के बोझ तले नहीं बल्कि विद्यालयों, खेल के मैदानों और खुशियों के संसार में होना चाहिए। हर बच्चे के भीतर कुछ नया करने की क्षमता छिपी होती है। कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई खिलाड़ी तो कोई शिक्षक। लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की वो पाठशाला है जहां जीवन के मूल्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और जिम्मेदारियों का ज्ञान मिलता है। इसलिए स्कूल चले हम केवल एक अभियान नहीं बल्कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प है। आज जरूरत है कि हर बच्चे के हाथ में किताब हो, मन में सपने हो और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर। क्योंकि जब बचपन सुरक्षित होगा, शिक्षा सब तक पहुंचेगी और सपनों को उड़ान मिलेगी, तभी एक सशक्त, जागरूक और विकसित भारत का निर्माण होगा।

0: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

दिल के मौसम भी बड़े अजीब होते हैं साहब, दिल के मौसम भी बड़े अजीब होते हैं साहब, कभी खामोश रहते हैं तो कभी एक गीत बनकर बहने लगते हैं।

जब दिल किसी का हो जाता है तो फिर हर बात में उसी का जिक्र होता है, हर ख्याल में वही रहता है और हर मुस्कान का कारण भी वही बन जाता है।

कभी कभी कोई शख्स हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाता है कि उसके बिना गुजरता हुआ हर लम्हा अधूरा सा महसूस होता है।

0: सर्जन? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा।

0: मधुरिमा के इन गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर से तृप्ति परिडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया गया। इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
5: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
3: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
6: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
7: We signed this year a free trade agreement with Europe.
8: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
9: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
10: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
9: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है।

0: प्रोफेसर राजीव प्रकाश जी को इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है और ये संस्थान जमीनी स्तर की समस्याओं से जुड़ने के लिए क्या प्रयास करता है और इनके क्या क्या समाधान हैं, इसके बारे में आप सबसे पहले बताएंगे।
1: तो अगर हम इनमें बात करें तो हमें तीन कैटेगरीज में आईआईटी ने तीन कैटेगरी में इन समस्याओं को रखा है। एजुकेशन को हम अभी फिलहाल नहीं लेते, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिसे हम एग्रीटेक बोलते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हेल्थ से रिलेटेड जिसे हम हेल्थटेक बोलते हैं, हेल्थ से संबंधित टेक्नोलॉजी, और फाइनेंस जिसमें कि हम व्यापार रोजगार तो उसे फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों को हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, एग्रीटेक, हेल्थटेक एंड फिनटेक। ये हमारी तीन फोकस्ड एरिया है जिसमें आईआईटी का मेजर फोकस है। ऑफ कोर्स एजुकेशन जैसे मैंने कहा वो तो है ही है, हम एजुकेशन के लिए ही हैं यहाँ, इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए हम हब हैं। सो आईआईटी भिलाई इस तरह से एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में और फाइनेंस कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस चारों पे कार्य कर रहा है। जल्दी जल्दी अगर हम इन चारों को अगर बात करते हैं तो एजुकेशन के लिए स्कूल्स को अडॉप्ट करना, टीयर टू टीयर थ्री कॉलेजेस को लेना और उनके साथ कार्य करना, आईटी पार्क जैसी, रिसर्च पार्क जैसी सुविधाओं को लाने पर विचार करना, और ऑनलाइन एजुकेशन पर बात करना। शायद आगे हमें मौका मिलेगा तो हम इस पर और भी बात करेंगे। अगर हेल्थ टेक पे बात करें तो कैसे हम आज की सुविधाओं को आसानी से गांव तक या वनंचल जो वन में रह रहे हैं वहां तक पहुंचा सकें, उस पर कार्य करना एम्स के साथ मिलकर के, इस पर भी हम और बात कर सकते हैं आपके साथ। और फिनटेक में आपके जो यहाँ के लोगों में अपनी खूबियां हैं, जो हुनर है इस राज्य की अपनी, जिसके लिए ये नोन है, उस एरिया में काम करते हुए, उन व्यवसायों पर काम करते हुए उसमें कैसे हम धन अर्जन करा सकें, उनको उनकी वृद्धि कर सकें, धन की प्राप्ति की, और कैसे उनको आधुनिक बना सकें, इस पर कार्य करना। तो इसमें कार्य करने के लिए हम लोगों से जुड़ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे महिलाओं से जुड़ करके 4000 से ज़्यादा महिलाओं को हमने ट्रेनर बनाया है जो ट्रेनिंग दे रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को, तो उनसे उनके व्यवसायों को आगे ले जाना, वनों में जाकर के कुछ प्रोजेक्ट चलाना। तो जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए आईआईटी भिलाई ने पूरे देश के लिए कार्य किया, विशेष ध्यान छत्तीसगढ़ पर रखते हुए कुल 20 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आईआईटी भिलाई ने दिए। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि जिसमें विभिन्न संस्थानों में इंडस्ट्रीज के लोग जो उत्सुक हैं इस तरह के कार्य करने के लिए, जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट की बात की जाए, तो उन एरियाज में उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जो जमा किए आईआईटी में, उसका हमने उन्हें रिव्यू किया और उनके साथ हैंड होल्डिंग करके और उन्हें धन भी दिया और उनकी फंडिंग करके ऐसे प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं। तो जिनसे कि छोटे छोटे रोजगार आए, व्यवसाय आए, जो कार्य वो कर रहे हैं उसको आगे लेके चले। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आईआईटी के पाठ्यक्रम भी उस तरह से बदले गए हैं, छात्र छात्राओं में भी उस तरह का भावना प्रकट हो, ऐसा करके भी हम लोगों ने कोशिश की है। एडॉप्टेशन स्कूलों का करना, ऐसा हम लोगों ने शुरू किया। अभी एक स्कूल जिसको कि हमारे ठीक बाउंड्री वॉल से लगा हुआ आप कह सकते हैं कि स्कूल था, जिनमें बच्चे बड़े ही उत्सुकता के साथ हम लोगों के साथ जुड़ते थे, आते थे, पढ़ते थे, तो उनको हमारे यहाँ के अध्यापक लोग भी और छात्र भी सब ध्यान रखते थे। तो उन बच्चों के रिजल्ट्स आए अभी, तो देख के बहुत खुशी हुआ कि 75% से ऊपर सभी ने मार्क्स पाए जो भी हमसे जुड़े हुए थे, और प्लस उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखी, इवन AI भी हम अब उनको सिखाते हैं स्कूल लेवल से। तो इस तरह से इन चीजों पर हम लोग कार्य कर रहे हैं।
0: प्रदेश की स्थिति के अनुसार यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की जरूरतों को समझते हुए आईआईटी भिलाई कार्य कर रहा है, जैसा कि आपने बताया। अब हम भिलाई के कैंपस के बारे में जानना चाहेंगे कि इस कैंपस के नए इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक लैब और दूसरी खासियतों के बारे में भी आप बताएं।
1: अगर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह गृह अवार्डी कैंपस है, गृह 5-स्टार अवार्ड इस कैंपस को मिला है, इसकी डिजाइन को, इस कैंपस को। हम नेट जीरो जिसे कहते हैं, मतलब आप कंप्लीट रूप से अपने पानी, अपने बिजली के लिए, आप अपने ऊपर, अपनी ऊर्जा के लिए, अपने ही

0: उसे पैदा करें, इसकी तरफ हम अग्रसर हैं। एनर्जी में भी अभी एक बड़ी पहल की है, हमारे सारे बिल्डिंग जो भी जितनी भी हैं, कुल 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन है 400 एकड़ में। तो इन सब का रूफटॉप खाली जनरली फ्री होता है, तो उसके ऊपर सोलर एनर्जी लगाई जाए। अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हम सोलर एरिया में पूरी दुनिया में आगे जा रहे हैं, और बहुत इजी है। इससे आपका वो बिल्डिंग भी कूलिंग रहती है अगर छत पे अगर सोलर पैनल लगे हैं, तो हम अपनी एनर्जी भी खुद पूरा बना सकें, इसकी तरफ भी हम अग्रसर हैं। नई आधुनिक सुविधाओं की अगर आप बात करें, तो चूंकि नई IITs हैं, तो ये कि फ़ायदा एक लाभ मिलता है आपको कि आप पुरानी सारी IITs में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कमियां थी, क्या होना चाहिए, उसे आपको देखने का एक मौका मिल जाता है, और आप शुरू से ही उन बातों को देख करके सोच करके आगे बनाते हैं। दुनिया की स्टेट ऑफ आर्ट्स जो है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, आप उसे लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब लाने की कोशिश की गई। IIT भिलाई को दो फेज में पूरा होना है। पहला फेज पूरा हो चुका 2024 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया February 20, 2024 को, और डेडिकेट किया नेशन को। फेज टू अब जल्दी ही शुरू होगा, और इतना ही करीब करीब 1.5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया का निर्माण फिर से किया जाएगा, और इस तरह से दो फेजेस के बाद ये एक कह सकते हैं कि आधुनिकतम IITs में से एक होगा। स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाएं हैं, अच्छे से अच्छे उपकरण जिनकी आप जरूरत सोच सकते हैं इंजीनियरिंग में वो हैं। नए नए विषय भी जोड़े गए हैं, मेकाट्रॉनिक्स जैसा विषय जो आधुनिक विषय है जिसमें अभी बहुत कम IITs शिक्षा दे रहे हैं, वो मेकाट्रॉनिक्स की हम पढ़ाई कराते हैं, जिसमें बीटेक भी हम देते हैं। और EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी बड़ी डिमांड में है, उस पर भी हम एक अलग से डिसिप्लिन ही रखा है, डिसिप्लिन है EV जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। AI मशीन लर्निंग डाटा साइंस, ये सारे तो आज बहुत ही आधुनिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो, ये सारे सब्जेक्ट्स पर हमें पढ़ाइयाँ रिसर्च हो रहे हैं। इन्वायरमेंट से प्रति जागरूकता रहे, सजगता रहे, इसलिए छात्राओं को उस पर भी क्लासेस कराई जाती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, अब छात्र में शुरू से ही जॉब सीकर ना हो, जॉब देने की भावना आए, जॉब अपना करें, खुद करें, ऐसा करने के लिए एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप पर भी कोर्सेज चलाए जाते हैं।
1: राजीव सर, यहाँ 3D मॉडलिंग और डिज़ाइन कोर्स पर भी खास जोर दिया जाता है, हमें पता चला है, तो आप बताएं कि फैब्रिकेशन लैब और इलेक्ट्रिकल लैब और 3D प्रिंटिंग लैब के बारे में, जो कि 3D मॉडलिंग और डिज़ाइन कोर्स का एक अहम हिस्सा है।
0: एकदम आपने सही कहा। आज अगर आप देखें तो 3D प्रिंटिंग से आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी बनाए जा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग से तरह तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, और 3D प्रिंटिंग से यहाँ तक कि घर और मकान भी बनाए जा रहे हैं। तो ये 3D प्रिंटिंग आप कह सकते हैं कि इसको अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों में अगर मिला के देखें तो 3D प्रिंटिंग का काफ़ी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, और इस बात को शुरू से ही सोचा गया। तो प्रोटोटाइप 3D प्रिंटिंग जैसी लैब को हम लोगों ने स्वरूप से ही ध्यान देते हुए बनाया। तो इस दिशा में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आधुनिक से आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको ला करके हम लोगों ने एक 3D प्रिंटिंग लैब बनाई है। बहुत आधुनिक लैब है, इसमें स्टूडेंट्स आकर के सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और इंडस्ट्रीज जो जिन्हें, जैसे मैंने कहा, अगर इम्प्लांट चाहिए, इम्प्लांट मटेरियल्स लेना है कोई बायोमेडिकल में या कोई सर्जरी के लिए, तो उस तरह के इम्प्लांट्स भी बनाए जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स या किसी और सेक्टर में अगर किसी स्पेसिफिक टूल्स की ज़रूरत हो, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट को हम लोगों ने ये ऑफर दे रखा है कि कोई स्पेसिफिक पार्ट किसी टूल का जरूरत हो, तो उसको हम डिज़ाइन करके आपको दे सकते हैं। तो ये सारी एरियाज के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग हो रहा है, और हम लोग इस एरिया में अच्छे से IIT भिलाई में एस्टेब्लिश है।
1: अगर हम देश की नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें, तो इसके तहत IIT भिलाई में कौन कौन से नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं।
0: जी, महत्वपूर्ण ये विषय है। नई शिक्षा नीति जो हमारे राष्ट्र की आई, जिसे हम NEP कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके तहत अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ फ्रीडम था, काफी कुछ रिलैक्स किया गया उनको, बहुत सारे ऐसे विषयों को पढ़ने में भी सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई जिन्हें कि कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं पढ़ा जा सकता था या मुश्किल था। अगर बड़ा ही आसान शब्दों में अगर हम इसे समझाएं तो साइंस का विद्यार्थी साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स का विद्यार्थी आर्ट्स पढ़ेगा, मेडिकल का विद्यार्थी मेडिकल पढ़ेगा, ऐसा करके है, जिसमें कि अभी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की गई। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मेडिकल भी पढ़ सकता है, तो कुछ विषय जैसे हमारे यहाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर शुरू की गई तो हमारे स्टूडेंट्स एम्स में भी जा करके क्लासेस करते हैं, तो हफ्ते में एक दिन वो स्टूडेंट्स एम्स जाते हैं, वहाँ पर क्लास करते हैं। तो ऐसे विषयों को लाया गया, सिलेबस को नया बनाया गया और सिलेबस में इस तरह की छूट दी गई, ऐसी बातों को डाला गया कि जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी चाहत के हिसाब से सब्जेक्ट को ले सके, हाँ पर वो मिस ना हो जाए, एक उनको डायरेक्शन भी दिया गया और सब्जेक्ट्स को लिंक्स भी किया गया कि ताकि वो इंटरडिसिप्लिनरी या ट्रांसडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स बने रहें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र अगर बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो ठीक है, वो इसलिए पढ़ना चाहता है कि बहुत से बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, फ्लूइड डायनेमिक्स की जरूरत पड़ती है, तो इन सब को सोच करके उस तरह के सिलेबस कभी बनाया गया। प्लस इसके अलावा हॉबी कोर्सेज या अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कोर्सेज लेने के लिए उन्हें फ्रीडम दी जाए, जो कि ठीक है वो अपनी हॉबी के हिसाब से लेगा, वो म्यूजिक पढ़ना चाहता है इंजीनियरिंग करते करते, तो ऐसे ओपन इलेक्टिव्स के नाम पे, ओपन कोर्सेज के नाम पे भी कोर्सेज लाए गए। नए प्रोग्राम्स की शुरुआत, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया, कई नए कोर्सेज भी IIT ने शुरू किए हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण और बात है कि हमने NEP में मल्टीपल इंट्री तो नहीं कह सकेंगे कि अभी पूरी तरह से हम लागू कर पाए हैं, बट एग्जिट दिया है। अगर स्टूडेंट ने काम करते हुए लगा कि नहीं उसे एक वर्ष जा करके अपना कोई रोजगार, अपना कोई स्टार्टअप या कोई और बात करनी चाहिए या कहीं और जाके उसको एक साल पढ़ना चाहिए, तो इस तरह का सेमेस्टर से सेमेस्टर आउट करने का प्रोग्राम, सेमेस्टर ब्रेक का प्रोग्राम, इस तरह के, या वो ड्रॉप करना चाहे कि नहीं ठीक है मैं दो साल पढ़ लिया, अब मुझे अपना काम शुरू करना है, रोजगार शुरू करना है, तो उसे एक एग्जिट के लिए डिप्लोमा दे करके डिग्री की जगह बीटेक की जगह डिप्लोमा दिया, सर्टिफिकेट दिया, ऐसा व्यवस्था भी कर दी गई है। एक बात और जोड़ेंगे, सिर्फ यही नहीं, NEP सिर्फ IIT भिलाई ही नहीं लागू करे, हम NEP और संस्थान कैसे लागू करें उसके लिए IIT आज एक नॉलेज हब की तरह है। हमने यहां के और तमाम यूनिवर्सिटीज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, उनको भी हम जाकर के ट्रेनिंग दे रहे हैं या उनके लोग आकर के हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी हाल में कई स्कूल के प्रिंसिपल्स के कई प्रोग्राम हुए जिसमें 50-50 की टोलियां बना करके उनके प्राध्यापकों को, उनके आचार्यों को बुला करके ट्रेनिंग दिया गया। तो NEP को राज्य में अच्छे से लागू करने के लिए IIT भिलाई कटिबद्ध है।
1: श्रोताओं, इनसे मिले कार्यक्रम में आज हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजू प्रकाश जी को, और आप IIT भिलाई से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दे रहे हैं। तो राजीव सर, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाया जाए।
0: एक दो गीत ऐसे हैं जो काफी दिल के करीब रहे हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रीत।

0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजू प्रकाश जी। राजू साहब, आज का दौर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन का भी सहारा ले रहा है और आज तो ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में ऑनलाइन के कार्यक्रम की बात करें तो ये किस तरह से सहायक साबित हो रहा है?
1: बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑफलाइन शिक्षा दे पाना, सभी को एक जगह बुला करके क्लासरूम में बिठा के शिक्षा दे पाना, ये थोड़ा मुश्किल भी है और मैं मानता हूं कि ये उतना अनिवार्य भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको आप आसानी से ऑनलाइन से दूरस्थ शिक्षा दे करके कर सकते हैं और वो अपने जगह पे बैठे हुए, अपने स्थान पे रहते हुए उस शिक्षा को ले सकता है और कर सकते हैं। ऐसा करके आईआईटीज ही नहीं, बहुत से और भी संस्थानों में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ। आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसका एक सफल प्रयोग कोविड के दौरान हुआ, जो उस समय ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया गया वो आगे भी बड़े सफलता से चलता रहा। आईआईटी भिलाई भी बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन देते हैं। और इसमें एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोगों ने बहुत सारी डिग्रियां ऐसी इंट्रोड्यूस की हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके लिए आपको जेईई एडवांस जैसी परीक्षा को पास करके आने की जरूरत नहीं है। बिना उन परीक्षाओं के पास किए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आप किसी इंडस्ट्रीज में इंजीनियर हैं, आप वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, अब आपको लगता है एक नया एआई आ गया, एमएल आ गया और एआई एमएल का जमाना है, अब हम कैसे अपने को इम्प्रूव कर लें, अपस्किल कर लें, तो इसके लिए आप अपने कार्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आप करते रहिए, परमिशन ले लीजिए वहां अपने एम्प्लॉयर से कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है आईआईटी का, मैं वहां जुड़ना चाहता हूं, और आप जुड़ जाइए इस प्रोग्राम में। ये सारे कोर्सेज या तो शाम को चलते हैं, नहीं तो वीकेंड्स पे चलते हैं और वीकेंड्स में एक तरह से पैकेज बना करके ये डिलीवर करते हैं। वैसा ही है जैसा कि आपके सेमेस्टर्स होते हैं प्रोग्राम्स में, दो हर साल में दो सेमेस्टर एग्जामिनेशन, हाँ एग्जामिनेशन के लिए हम लोग ऑफलाइन बुलाते हैं, बीच बीच में भी हम लोग ऑफलाइन बुलाते रहते हैं ताकि आप कैंपस को देख सकें और आप उस तरह से ही उन सब्जेक्ट्स में जो हम ऑफलाइन दे रहे हैं आप ऑनलाइन भी उन सब्जेक्ट्स में अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं।
0: हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजाति बाहुल्य राज्य है। अगर हम जनजातियों के लिए शोध की बात करें तो आईआईटी भिलाई में किस तरह के शोध किए जा रहे हैं?
1: जैसे मैंने पहले भी कहा, जनजातीय समाज हमारा जुड़ा हुआ है खेती से, वनों से, वनोपज से और कुछ ऐसे रोजगारों से जो यहाँ के लिए यूनिक हैं, खनन से संबंधित हैं, लॉ से संबंधित हैं, एलॉयज हैं, जैसे कि मेटल वर्क यहाँ का बहुत फेमस है, बहुत से बुनकरी और काश्तकारी भी फेमस है, अगर कोसा की बात करें तो कोसा सिल्क और उससे बने हुए वस्त्र आभूषण ये सारे यहाँ की, और ये अपने आप में अनूठे हैं, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेटल वर्क की बात करें, आईआईटी के लिए एक एरिया है मेटलर्जी जिसे हम कहते हैं, और मेटलर्जी में जब हम यहाँ का मेटल वर्क देखते हैं, यहाँ का एलॉय देखते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हजारों साल पहले उस तरह के एलॉयज, उस तरह के मेटल वर्क यहाँ होते थे जो अपने आप में बहुत ही अनूठे हैं, और उस तरह से मेटल वर्क कैसे इन्होंने किया इसको सोच करके आश्चर्य होता है। इसके अलावा बुनकरी है, कोसा है, कोसा सिल्क है, बट ये सारी एरियाज में अभी आधुनिकता लाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते हैं कि इनके जो ज्ञान है, इनका नॉलेज जो है उसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए आधुनिकता लाने की जरूरत है, उसको सपोर्ट करने के लिए मशीन की जरूरत है, इसलिए उनकी अपने नॉलेज को, उनकी अपने हुनर स्किल को देखते हुए हम आईआईटीज ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहा है, दे रहा है जो उनको सुविधाजनक हो। एक छोटे छोटे उदाहरण इसके साथ लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे वनोपज है और बहुत ही अच्छे अच्छे वनोपज है, महुआ से लेकर के फुटू तक की बात है, और वो अपने आप में बहुत ही पौष्टिक भी हैं, उनके अच्छे खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, बट उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका प्रोसेसिंग, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो उसमें कुछ मशीनें डाल दी जाए जो आसानी से उनको प्रोसेस कर सके, उन्हें सुखा सके, काट सके, सीड बाहर निकाल सके। इमली है तो कैसे जल्दी से सीड को बाहर निकाला जा सकता है, कैसे उसे हम ड्राई करवा सकते हैं, उसके पाउडर बना सकते हैं ताकि ये उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सके। तो इस तरह से वनोपज में उन्हें सुविधाएं करने के लिए वो आसान टेक्नोलॉजीज को देना। तो अभी बस्तर पंडुम हुआ था, तो बस्तर पंडुम में IIT भिलाई ने एक बड़ा स्टॉल लगाया जिसमें छोटे छोटे ऐसे उपकरणों की वहां पे मेला लगाई कि भाई ये उपकरण IIT भिलाई आपको बहुत आसानी से सस्ते में या लोन में उपलब्ध करा सकता है। उसकी बात करें तो यहां पर कोसा सिल्क और टेक्सटाइल्स है, तो टेक्सटाइल्स के भी एरिया में हम लोगों ने अभी कैसे आप उसमें नए डिजाइंस को ला सकते हैं, कंप्यूटर एडिट प्रोग्राम कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग उनको मदद पहुंचा रहे हैं। मेटल वर्क के लिए जो मैंने पहले भी आपसे कहा, उनकी मेटलर्जी धीरे धीरे यहां पर यह कार्य कम होता गया, बंद होने लगा, लेकिन इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रोजेक्ट्स हम लोग लगा रहे हैं। अपने यहाँ भी हम लोग वर्कशॉप करते हैं, उनको भी उसमें प्रोत्साहन करना। और एक लास्ट जोड़ेंगे इसमें, यहाँ की औषधियाँ जो वनोपषधि हैं जिसमें कि आपकी यहाँ महारत है, उसमें आइडेंटिफिकेशन, वैलिडेशन, करेक्टराइजेशन, ये सब करने के बाद उन औषधियों को ऑथेंटिक रूप से आप बाजार में पहुंचा सके। क्योंकि मार्केट में पहुंचने के बाद ये लगता है कि ये औषधि ठीक है लेना क्या, कि नहीं ठीक है, क्या इससे साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। इन सारे भ्रमों को दूर करने के लिए अगर IIT उनकी जांच स्वतः करके और ऐसे औषधि को प्रमाणित कर दे कि नहीं ये ठीक है आप ले सकते हैं, तो ये आयुर्वेदा संस्थान के साथ मिलकर के, यहाँ के वैद्यों के साथ मिलकर के IIT इसमें कार्य पिछले एक वर्षों से कर रहा है और उम्मीद है बहुत जल्द ही कुछ ऐसे औषधियों को भी मार्केट में ला दिया जाएगा।
0: राजीव सर, 2024 में माननीय राज्यपाल जी ने CCLT की स्थापना की थी, यानी कि IIT भिलाई में संस्कृति भाषा और परंपरा अध्ययन केंद्र, तो आप बताएंगे कि वर्तमान में ये किस तरह से कार्य कर रहा है?
1: ये जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई बात है जो आपने अभी अपना प्रश्न किया था, ये उसी से जुड़ते हुए एक केंद्र की स्थापना करना। भाषा है, संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं, तो इन परंपराओं को, भाषा को, संस्कृति को कैसे बनाए रखा जाए, संजोए रखा।
0: राजीव सर, हाल ही में IIT भिलाई ने दुर्ग जिला प्रशासन के साथ मिलकर IT पार्क का उद्घाटन किया है, तो इसके उद्घाटन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो आप बताएंगे कि इस IIT पार्क का उद्देश्य क्या है?
1: IIT पार्क का, जिसमें कि हमारे जो भी युवा हैं वो IT और IoT, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स कहते हैं IoT, और IT और IoT से रिलेटेड अपने रोजगार को आगे ले जाना चाहते हैं ऐसे युवा, उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जहां से वो एक आसान शुरुआत कर सके, जिसमें उनको नॉलेज मिल सके, सपोर्ट मिल सके, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके और गाइडेंस मिले, ताकि जब शुरुआती दौर में कोई स्टार्टअप चलता है तो उसमें बड़ा रिस्क होता है और ज्यादातर स्टार्टअप वहीं पे बंद हो जाते हैं। ऐसा ना होने पाए इसलिए देश भर में जगह जगह IT पार्क, रिसर्च पार्क, ऐसे पार्कों की स्थापना की जा रही।
0: देश और प्रदेश के युवाओं की आंखों में आने वाले कल के ढेर सारे सपने हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए वे प्रयासरत भी हैं, तो वे अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके सही दिशा में आगे बढ़ें, इसके लिए हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहें?
1: शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय शिक्षा, उसका अध्ययन करना। आज किसी न किसी तरीके से आप विद्यालयों से इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, चाहे आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, कोई भी एरिया हो, उनसे जुड़िए। बहुत तरीके हैं उनसे जुड़ने का, केवल डिग्री के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और सहयोग की भावना के साथ, टीम वर्क के साथ आगे बढ़ती। कोई भेद नहीं, न जाति का, न धर्म का, न राज्य का, न क्षेत्र का, न भाषा का, एक होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। इस भावना के साथ और वसुधैव कुटुंबकम को मानते हुए कि हमें दुनिया के कल्याण के लिए बात सोच करके करनी है, बढ़ें थोड़ा एक बात का ध्यान रखते हुए कि हम अपने लिए ही केवल नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या हितकर है, ऐसा सोच के चलें। यही भारतीयता है, यही भारतीय धर्म।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये संदेश हमारे सभी युवाओं तक पहुंचेगा और वे युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूर्ण संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे और उनके जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई अगर आए तो उसका सामना भी पूरी हिम्मत के साथ करते हुए वे आगे बढ़ेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं आपके इस वक्तव्य के साथ हमारे सभी युवा साथियों के लिए रहेगी, सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगी। आदरणीय राजीव प्रकाश जी, आज आपने आकाशवाणी में पधारकर आईआईटी भिलाई के बारे में बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। इस मुलाकात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इनसे मिले कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुने लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी का अंक 3। संपादक है भरत कुमार गंगादित्य।

0: लोक साहित्य पत्रिका मचो माटी सुन तुझा माय लोक के मच बाटले खूबे खूबे जुहार। आज आमी धरुनेलू से सुनील निसार चो भत्री कहानी, घासी राम चो हल्बी कविता पाठ और सुक्कू सोरी चो गोंडी कहानी। जाले सबले आगे सुनो सुनील निसार चो सांगलो ये भत्री कहानी।
1: मोर कतानीर नाव है लिटी बूटा, खूबे दिनर पैलर गोट है, गोटो गांव ने गोटक असन माने रहते रला, जार भाग फूटी रला। बोल ले हतार पीला बेरा, पहले तार बुआ मोरला और ये तार दुई बरस पाछे तार आया बोले ए मोजपुर के छाल के दी ताके सर के उठी गला। आया बुआ मोलदार पाछे तार साका होय बार कोनी लोग हाय गांव ने ना रोत, ए तार हतार घर झूठा आटा खाई जीते जीते हाय केबे धागा होई गला पता ना चलला। झार रेटे तार गोटो कुड़िया रेला, हाय ताने हाय एकला रहते रेला, गोटोक राती जेबे हाय सोई रेला। हतार सपना ने तार आय तार माँ आई बोलला, बेटा हमर जीव रेव रेव तोर आया बुआ तोर काछे काई करके ना सकलू, मातर तोर भाग एवर जय जय होइसी। सुन तू ये गांव के छाल करी, गोटक असन गांव ने जा, जोनता के जोनता ने गोटक लीटी बूटा गांव ने धका देसी, और हाई बूटा ने रकम रकमर चेड़े मन बोसी लेवाय, जेबे हाई समया ने गोटक लीटी चेड़े धका देसी, जोन माने मनसन गोटाईसी, हाई चेड़े आकत तो के हाई बाट सांगसी, जाके सुनी करी तोर फुटला भाग उजर होइसी। अंति आवरी अतकी फोलिज करी तार माँ तार स्वप्ना ने स्वप्ना ले जसन गला, तार झुमरा भांगी गला, आवरी हाय माँ बोली कोलार होई डाकला। सकार पायला बेर उदला तेबे जोन असन कमलू गांवर सोकार घरे जोन ताने हाय कम्या रेला, तार घर गाय बुइल आवरी छेली मेडी चराय के झाड़ भीतरे गला, हाके जगदाय हाय पेज खाए तेरेला, तेबे हाके राती बेरा स्वप्ना हेत पगला। सोंझ होयला तेबे कमलू गाय बुइल के कोटा ने बांधी हाय आयला, आवरी राती बेरा घरे एकला मुंडे हाथ दी करी सोची पकायला, आवरी मने मने बोल के मुरायला, सपना ने तार माँ जोनू आट के सांगला छे हाय अंतिज करसी। दूसर दिने कमलू कुगाड़ा के उठला, अरे तुमा ने पेज धरला, इतार पाचे अपनार आया बुआ के सुरता करी और अपनार भगवानर नाम धरी, बेलुदबा पहले हतार मार सांगला गांव ने जीबा काचे निकरला। गांव सरासरी जेबे हतार पाए संधी रेटे खेटला, तेबे हाय गांवर माटी के दुई हाथ जोगी करी जुआर करला, फिर गांव के छाड़ी करी निकरी गला। जेबे हाय बियाबान झाड़ के लांगला, तेबे पानी झुआ झुआ मार के मुरायला, लंदी लेगे खेटला तेबे लंदी उछली जाए तेरेला, तार पिटियांगा ले खूबे पवन धुका हाके उड़ाए नवा काचे आए तेरेला, छुमे लंदी ने पूर और पिटियांगा लेरा धुका, बोले दोनों बाटे गले मृत्यु। ए दकी कमलू इस पर नाम धरी आकी मिची करी, हाय लंदी ने डोगाए देला, तार डोगायलार पाचे लंदीर पानी ताके बोगाए करी, हाय पाट लंदी रेटे धरी उठी गला। जोन रेटे लीटीपुर नामर गोटो गांव रेला, कमलूर नागी के गांवर दुईटा मास धरू मन दकी पोकायलाय, तेबे तार नागी खिनिक खिनिक चलते रेला, तेबे खाय दोनों कमलू के बोई करी गांवर बैद लेगे धरी गलाय, तेबे बैद तार दवा दारू करी ताके चेंग चेंगा करी देला। दूसर दिने कमलू के चेत पगला, बेर उदानी बेरा कमलू बैद के जुआर करी बोलला, एबर मुई जीवी बे बोली झाय के मुरायला, जेबे हाय सात आठ कोड़ी पाए हिंडी लेला, तेबे गांवर ढोंगरी ऊपरे गोटो गस तले हाय चक्कर काई घसरी गला। कमलू हाईच गस तले घसरला, जार बारे तार माता के तार स्वप्ना ने सांगी लेला, कमलू के काई हेत चेतनाई गांवर कुकड़ा के हाय काय सुंदर लीटी बूटा उपरे, जेबे हाई माने असन गोटाऊ लीटी चगे बोसला, आवरी घोटाई के मुरायला, तार हेत पोगला, पहले कमलू हाई चेड़े के जुआर करला, आवरी चेड़े सेंगे घोटाई के मुरायला, तेबे हाय लीटी चगे ताके मार सांगला भेद के सांगी देला, लीटी चगे सांगला ढोंगरी उपरे बुदनी हाथ के गोटक मऊ गचा चे जोन ताने काय सुंदर मऊ फूल फूटला आचे हाई फूल के टूटाई करी लंदी रेटर गांव सुंदर बनने रायधर सोकार सोकार घरे सकार सकार बेल उत्पादाय दी देस तेबे हाय अपनार गोटकीच बेटी सुंदरी के तोर संगे बिया करी देसी। लिटी चले कमलू के ए बोली सांगला कि रायधर लगे 500 घाना बेड़ा गोटक बोगे माई लसन घर 200 घाय बुईल आवरी कतक छेली मेंडी आचोत तार बायले रुपाय 100 तोला तल्ले उपरे ओराय होयला आचे सबूतोर होइसी। ए सुनी कमलू मऊ फूल छोपा छोपा टूटायला छोपा छोपा टूटायला आवरी दूसर दिनर बेल उदबावेरा रायधर सोकार के जाई दी देला। पहले तो रायधर कमलू के अपना घर लोक बाग का से बनायला बाकरा ने ठेवायला फिर दूसर दुने कमलू के बोलला बेटा कमलू मोर गोटकीच बेटी आए मोर बेटी संगे बिया करबीस तेबे कमलू झटक ले हाँ बोली देला। तेबे कमलू संगे अपनार बेटी सुंदरी के रायधर राजार बेटी असन बिया करी देला। दखते दखते कमलू के 5 बरस भितरे दुटा पिलाटोगी होयला है तेबे गोटक दिने ताके तार माटी मारला गाँव सुरता आयला तेबे गोटक दिने अपनार बायले और पिलाटोगी संगे जकमक मार घोड़ा घाड़ी ने बोसी करी अपनार माटी मारला गाँव ने खेटला जोनता ने हाय जन्म धरी रेला। कमलू रसन चमत्कार आवरी झकमक के देखी गाँव सब लोग हका बका हो गला है। मदर कोमलू एवे बोले हाइच कोमलू रेला जोन गाँव और माटी ने खेटलार पहले माटी के जुआर करी गाँव और माटी के चुमी पकायला आवरी पाचे हाथार घर बाड़ी के गाँव और गरीब दुखी के दान करी देला।
0: एबे आमी सुनलु सुनील निसार चो सांगलो भत्री कहानी अदाय पारी आए हल्बी कविता पाठ चो जाले आमी सुनो घासी राम चो हल्बी कविता पाठ कूड़ई पान।

कुड़ी पान के बचौरा ले काम देवा सतई कुड़ी पान के बचौरा ले काम देवा दखनवा जीव न खाजे ए दे काम देवा दखनवा जीव न खाजे ये काम देवा सर्ग सेव न बचौरा ले सबके देवा दखा सर्गी पान के बचौरा ले सबके देवा दखा कुड़ी पान सब ले ज्यादा काम देवाय अमचो नदी दड़ी चो कुड़ी पुल कुबे सुंदराय अचनाचा काय पिला मान जोने उजुराय अचनाचा काय पिला मान जोने उजुराय नंदी दड़ी दड़ी कुड़ी बूटा कुबे रहे से नकै

आए जशन जशन बीमारी रले उनके दूर करू आए हे जशन बीमारी रले उनके दूर करू आए ये तो एकादे सांगते रले सबके जान तो राय हाँ ये तो एकादे सांगते लेके सबके जान तो राय दका कुड़ी उठ के बचौ रले काम देव आए काई कुड़ी उठक बचौ रले।

आय जंगल बाटे जड़ी दखले काम देवाय जंगल बाटले जड़ी दखले काम देवाय जसन सुगर बीमर रले उनके सबके छंडौआय जसन सुगर बीमर रले उनके सबके छंडौआय हेतु काजे कोड़े बूटके हमके बचातवाय तो कोड़ी बुटके हमके बचतवाए दका लोग रोग रहे दे हुनके दूर करुआ तेरो रोग बीमारी रहे से हुनके दूर करुआ हम तो बतर की तरह।

गणित जीवन हम तो जीवन आय तर्क सिवन गणित जीवन हम तो जीवन आय यदे सब जन के बचौरले काम देवा यदे सब बन के बचौरले काम देवाय संगत गोट के नंगत करुण नंगत रतोराय ततय संगत गोट के नंगत करुण नंगत रतोराय ततय सियन मन के सांगल गोट के हम के दतोराय ततय सियन मन से सांगल गोट के

हमके दाता तो आए जंगल बाटे रुक रहे हमके बचत आए जतन बैदी रुक देखो हमी हमके बचत आए जतन जड़ी रुक रली जले हमके बचत आए हाट पटन जड़ी बूटी के बिकुक ने तो नुआ हाट पटन में जड़ी बूटी के बिकुक ने तो नुआ दका करे हमके ये काम देवू आए सत हम।

जुर इल एदे माता पिता सांगून दिला सबके काम दिल एदे माता पिता सांगून दिला सबके काम दिली ते गोट के सुरत कर ले सबके बनुआ ते गोट के सुरत कर ले तेप्त बनुआ हमी माई बाबत को गोट के निदर लिखा।

ਨਕ ਬੋ ਤੋ ਲੱਤ ਆਇਆ ਨਾ ਪੱਟਾ ਨੁਲਤਾ ਏ, ਨਕ ਪੱਟਾ ਨੁਲਤਾ ਆਇਆ।

अभी आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका मुचो माटी का अंक 3। संपादक थे भरत कुमार गंगादित्य। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे 1980 में प्रदर्शित एक्शन ड्रामा फिल्म राम बलराम की। फिल्म का निर्माण टीटू ने किया। विजय आनंद की विशिष्ट प्रस्तुति, प्रभावशाली पटकथा और मनोरंजक शैली में फिल्म को दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया और उस वर्ष की चर्चित फिल्मों में शामिल रही फिल्म राम बलराम।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: फिल्म राम बलराम की कहानी दो भाइयों राम और बलराम की है, जिनके माता पिता की हत्या उनके लालची चाचा जगतपाल द्वारा कर दी जाती है। परिस्थितियां दोनों भाइयों को अलग अलग राहों पर ले जाती है, एक अपराध की दुनिया में और दूसरा कानून का रक्षक बनता है। आगे चलकर दोनों भाई सच्चाई जानकर अन्याय के विरुद्ध एकजुट हो जाते हैं।

फिल्म राम बलराम में धर्मेंद्र ने राम और अमिताभ बच्चन ने बलराम की भूमिका निभाई। जीना दामाद ने मधु और रेखा ने शोभा की भूमिका निभाई। साथ ही अजीत, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा और हेलन जैसे कलाकारों ने फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाया।

फिल्म राम बलराम का संगीत प्रसिद्ध जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया। गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने और स्वर दिया है लता मंगेशकर, दिलराज कौर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने। संगीत में रोमांस, मस्ती और भावनाओं का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है।

फिल्म राम बलराम के कई गीत श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हुए। गीत, संगीत और शीर्ष गायकों की आवाजों ने फिल्म के गीतों को यादगार बना दिया। फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। एक्शन, भावनाओं, हास्य और संगीत का संतुलित मेल इस फिल्म को 1980 के दशक की यादगार फिल्मों में शामिल करता है।

एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुने फिल्म राम बलराम के गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकासगाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनूप रंजन पांडे को इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकासगाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। नीति आयोग शासी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अगले 3 वर्षों में बस्तर में निवास करने वाले परिवारों की मासिक आय बढ़ाकर 30,000 रूपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए डेयरी, सिंचाई, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें लोक कलाकार और रंगकर्मी तथा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके डॉ अनूप रंजन पांडे भी शामिल हैं, जिन्हें इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉ अनूप रंजन पांडे के कथक नृत्य के लिए वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेट को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉ आनंद कुमार पांडे को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। श्री सिंह आज दोपहर रायपुर के एक अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। श्री सिंह आज राजधानी में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अपने प्रवास के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कल 13 जून को राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे ऑक्सीजोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। किर्गिस्तान के इसिक्कुल में 8 जून से 13 जून तक आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। श्रीमंत ने यह सफलता बेहद कड़े मुकाबले वाली PIUH 85 किलोग्राम श्रेणी में हासिल की है। पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने अपनी इस कामयाबी को भारत के वीर शहीदों के नाम समर्पित किया है। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में आज से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायाकिंग कैनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चांपा और कवर्धा में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन NMC ने ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेज और उपलब्ध जानकारी का परीक्षण करने के बाद इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकासगाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनूप रंजन पांडे को इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। गुलशन में पेश है मेरी पसंद। मेरी पसंद सुनने वाले तमाम श्रोताओं को तृप्ति परिडा का नमस्कार। श्रोताओ, इंसान की पहचान सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, उसके कार्यों से होती है। जिंदगी की राह में कई बार सच और भ्रम साथ साथ चलते हैं, लेकिन वक्त चेहरे से नकाब हटा देता है। आइए सुनते हैं रिश्तों और विश्वास की गहराई को छूता एक खूबसूरत गीत।

कभी कभी आंखें वो कहानी कह जाती है जिसे शब्द बयां नहीं कर पाती। एक मशहूर शेर है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।

जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि अपने लोगों का साथ और आज की मुस्कान है। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता, इसलिए हर पल को जी भर कर जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है।

घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि सपनों, विश्वास और अपनापन से बनता है। दो लोग जब एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो छोटी सी दुनिया भी जन्नत बन जाती है।

अंधेरे चाहे कितने भी गहरे हों, एक छोटी सी उम्मीद की किरण उन्हें मिटा सकती है। निदा फाजली का एक शेर है, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर।

दोस्ती और अपनापन जिंदगी की वो रोशनी है जो मुश्किल वक्त में भी राह दिखाती है। रिश्तों की गर्माहट हो तो उदास दिलों में भी उम्मीद के फूल खिल उठते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो अपनेपन और साथ निभाने की खूबसूरती को सुरों में ढालता है।

संगीत इंसान के मन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जब दिल खुश होता है तो हर धड़कन में एक धुन बस जाती है और हर पल एक गीत बन जाता है। इसी उल्लास और जीवन रस को समेटे सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: इस गीत के साथ ही मेरी पसंद अब संपन्न होती है। गुलशन में आप सुन रहे थे मेरी पसंद। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 बजे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम में प्रस्तुत है हल्बी गीत। कलाकार हैं बसंती और साथी। पर पहले ये संदेश।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: खेल तो तीन चोगेली रे माजी कर काजी गाय सिंह के हालाई पानी काट जारे जावे जालू राम बोले सुगालू बोलते बोलले की मन जलते जला रे माझी घर काजी गाय सिंह पानी काटे जारे जावे जालू सतन पाले सुगालू बोलते बोलले की मन जलते जला रे
1: लाई लड़ू पर सुखाई बिता के समडर गिला दूर रे आनी घर कांजी गए सिंह के होलाई पानी गाटे चारे चारे चालू लाम के रे आसु कालू बोलते बोल ले का मन जलते जल रे
0: ए लाई लड़ झुल को चालू चेतने बड़ बाड़ू रे माजी घर कांजी गए सिंह के होलाई पानी गाटे चारे जावे जालू सोसन पाले आसु कालू बोलते बोल ले की मन जलते जल रे कने टुसकी बोता डोकरी अतले रदार माजी घर काजी गाय सिंह के हलाई पानी काटे जारे जावे जालू सोसन पाले सुगालू बोलते बोलले की मन जलते जला रे
1: काजे आमदर निंगरा जाडू गीत काजे बद मारू रे माजी घर काजी गाय सिंह के हलाई पानी काटे जारे जारे जालू लंबेरे सुगालू बोलते बोलले का मन जलते जला रे
0: बोलते बोलले की मन जलते जला रे।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे बसंती और साथियों के गाए हल्बी गीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। रूस रूसा लोक गाथा में सुनिएगा आंधा राजा का भाग दो। गायिका है सुब्री बाई।
1: आंधा राजा तो जैसे

ना जाए, प्रभु हरि बोलू ना जाए। ये सोना सोना तुम्ही महापुरु लोगो, ये सोना सोना तुम्ही भगवान लोगो, जे मोचो बातो सुना प्रभु मोचो बातो सुना। ई धन दिला सो मालो दिला, एकासा दिला सो तामा दिला सो, बेटा बोले दिला प्रभु बुहारी बोले दिला। ई सोना सोना तुम्ही भगवान लोगो, ए सोना सोना तुम्ही महापुरु लोगो, जे मोचो बातो सुना प्रभु मोचो गोटो सुना। ए मुंड कटा तो वो सुना गगतर, ए मुंड कटा तो वो सुना गगतर, बेटी दिया बोले प्रभु बेटी दिया बोले। हरी हरी जय राम राम, ए हरी हरी जय राम राम, मैं राम बोलू न जाए प्रभु हरी बोलू न जाए। ई सोना सोना तुई आंधा राजा, ए सोना सोना तुई आंधा राजा, जे मोचो बातो सुना प्रभु मोचो बातो सुना। तुके धन दिलू जे मालो दिलू, एकासा दिलू जे तामा दिलू, तो बेटा बोरो दिलू राजा बेटा।

राम बोलू न जाए प्रभु हरि बोलू न जाए। बेटी बोरो हमी देव को नाही, बेटी बोरो देव को नाही सोखू प्रभु देव को नाही सोखू। जो बड़ा दोस्ती मांगे से ये जो बड़ा दोस्ती तो मांगे से ये बे जे आंधा राजा तो आए प्रभु आंधा राजा तो आए। ही लोगे जामू न पाए पोड़े ये लोगे जामू न पाए पोड़े जे धूरे उबा होए प्रभु धूरे उबा होए। ऊटो ऊटो तुई आंधा राजा ए ऊटो ऊटो तुई आंधा राजा जे तू चोनी हाय बोलत प्रभु तू चोनी हाय बोलत। तू गनाए ए ऊटे ए बे ए लो दो नाए तो सोए ए बे जे आंधा राजा तो आए प्रभु आंधा राजा तो आए। नही तुमी नी बोला भगवान ए नही तुमी तो नी बोला भगवान बेटी बर दिया प्रभु बेटी बर दिया। असनी बोलू न बोले ये बे ए असने बोलू न बोले ये बे जे आंधा राजा तो आए प्रभु आंधा राजा तो आए। ही भगवान लोक तो सुनत एबे ए मा पुरु लोग तो सुनत एबे जे भगवान लोक सुनत प्रभु मा पुरु लोग सुनत। इनी आए बोलू न बोलत एबे ए नी आए बोलू न बोलत एबे जे भगवान लोक बोलत प्रभु मा पुरु लोग बोलत। जो बड़ा दोसती करे ये जो बड़ा दोसती मांगे ये बे जे आंधा राजा तो आए प्रभु आंधा राजा तो आए। सुना सुना तुम्हें भगवान लोगो ये सुना सुना तुम्हें माँ परु लोगो जे नाई नी बहला भगवान बेटी बर दिया। असनी बोलू न बोले ये बे ए असने बोलू न बोले ये बे जे आंधा राजा तो आए प्रभु आंधा राजा तो आए। ही जारे टूरा तुई नीरा मुहा ए जारे टूरा तुई काला मुहा जे दिलू बोलू न बोलत प्रभु दिलू बोलू न बोलत। हुडो मतान गेलो एबे ए गिरिंज मतान गेलो एबे जे आंधा राजा तो आए प्रभु आंधा राजा तो आए। ही ऊटो बोलू न बोलो तेबे ए ऊटो बोलू न बोलो तेबे जे आंधा राजा के आए प्रभु आंधा राजा के आए। दिलू बोलू न बोलत एबे ए दिलू बोलू न बोलत एबे जे आंधा राजा के आए प्रभु आंधा राजा के आए। जाबे आंधा तुके दिलू बोलत ए जाबे आंधा तुके दिलू बोलो तो भगवान लोक तो।

हरे राम बोलू न जाए, प्रभु हरि बोलू न जाए। आंधा बोले तो उठे ये बे, ए आंधा बोले तो उठे ये बे, जे धुरला पोची हो ये प्रभु धुरला पोची हो ये। पाठ करू न ऐसे ये बे, ए पाठ करू न ऐसे, आंधा जे अपोलो राजे ऐसे, प्रभु अपोलो देसे ऐसे। भगवान लोक तो काये बोलोत, ए महापुरु लोग तो काये बोले, सोद भगवान लोग बोलत, प्रभु महापुरु लोग बोलत। धन दिलू तके मालो दिलू, ए कासा दिलू तके तामा दिलू, जे सोना चांदी दिलू, प्रभु गाये गोरु दिलू। बेटा बोले तो दिलू तेके, ए बुवारी मन तो दिलू तेके, जे काये बोर खोजे प्रभु काये बोर खोजे। असने बोलू न बोलत ये बे, ए असने बोलू न बोलत ये बे, जे महापुरु तो वात, प्रभु भगवान लोक तो वात। आंधा राजा तो इलो ये बे, ए आंधा राजा तो इलो ये बे, जे अपोलो घर ने आए, प्रभु अपोलो राज ने आए। हरि कहरि को इलो ये बे।

राम बोलू न जाए प्रभु हरि बोलू न जाए। रोवत रोवत वासत एवे ए रोवत रोवत वासत एवे जे जमा माही पोई प्रभु जमा माही पोई। कितल दिन तो होली एवे ए कितल दिन तो होली एवे जे देश धरु न खावत प्रभु राज धरु न खावत। रानी बोले तुई अंदनी रानी ईरानी बोले तुई अंदनी रानी जे मच बात सुन प्रभु मच बात सुन। ई मच बात तुई सुन रानी ई मच कल तुई मान रानी जे मच गोट धर प्रभु मच कल मान। ई सात जन तो बेटा आसत ए सात जन तो बुआरिया सो तो बेटी जाले नाही रानी बेटी जाले नाही। बेटी बोरो मैं मांग क गेले ए बेटी बोरो मैं मांग क गेले जे भगवान दिला कसन प्रभु माँ पुरु दिला कसन।

ना करत प्रभु खाना पीना करत। इरातो काजे तो सोहुन जावत, इरातो काजे तो सोहुन जावो तो बियान पाऊ न जाए प्रभु पांगरा फाटू न जाए।

जय गौरव वासो गेली प्रभु गौरव वासो गेली। राजा बोले तुम्ही आंधा राजा, ये राजा बोले तुम्ही आंधा राजा, जे मोचो बातो सुना राजा मोचो बातो सुना। नी जा बोलून मैं बोल ले राजा, ए नी जा बोलून मैं बोल रे राजा, जे अचचा नाही लागे राजा जोरो मौके धरी से। योसनी बोलू न बोले से मोने, ये असने बोलू न बोले से मोने, जे आदिन रानी तो आय प्रभु आदिन रानी तो आय। मोचो गोटो के तुमी राजा, ए मोचो बातो के तुमी राजा, जे नाई सुनला सब बोले प्रभु नाई सुनला सब बोले। तीनो मोए ना होली एवे, ये तीनो मोए ना होली एवे, जे चारो मोए नाय प्रभु पांचो मोए नाय। छोए मोए ना होली एवे, ये सातो मोए ना होली एवे, जे आठो मै ना होली प्रभु नौ मै ना होली। नौ मोए ना पूर्ण गेली, ए नौ मोए ना पूर्ण गेली, जे आदिन रानी के आय प्रभु

राम मय राम बोलू न जाय प्रभु हरि बोलू न जाय। राजा बोले तुम राज राजा ए राजा बोले तुम दस चो राजा जे मचो बात सुना प्रभु मचो बात सुना। सुई न घरे तुम जाहा राजा ए सुई न घरे तुम जाहा राजा जे हाग दे उन आना प्रभु हाग दे उन आना। आंधा राजा तो वासे ये बे ए आंधा राजा तो वासे ये बे जे बेटा बीता मन प्रभु बेटा बीता तो मन। सुई न घरे तो जासत ये बे ए सुई न घरे तो जासत ये बे जे बेटा बीता तो मन प्रभु बेटा बीता तो मन। बाग मई तो कपट आसे ई बाग मई तो कपट आसे जे कारी भौरा बिलई प्रभु कारी भौरा बिलई। सुई न घरे तो गेला ये बे ये सुई न घरे तो गेला ये बे जे बेटा बीता मन प्रभु बेटा बीता तो मन। बाई बोले तुई सुई न डगरी ई बाई बोले तुई सुई न डकरी जे हम चो घरे तो जो बाई हम चो घरे तो जो। ई बेटा बोले तुम्हें सातो जनो ए बेटा बोले तो सातो जनो जे काये विभती पड़ली बेटा काये विभती पड़ली। ई जो बे बोड़ा तुई सुई न डकरी ए जो बे बोड़ा तुई सुई न डकरी जे आया पोटन गेली प्रभु बाबा पोटन गेला। डकरी बोले तो तियर होली ए सुई न बोले तो तियर होली जे आंधा राजा घरे प्रभु आंधा राजा घरे। आंधा राजा तो घरे ये बे ए आंधा राजा तो घरे ये बे जे सुई न मुरुन गेली प्रभु कोन लगे आशीष बोले से। ई रानी बोले तुई आ दिन रानी ए रानी बोले तुई आ दिन रानी जे कोन लगे आशीष बोले प्रभु चपटी पेटते ओले चपटी पेटते तो ओले ये बे ये चपटी पेटते तो ओले ये बे जे बाबी पीला तो वाय प्रभु बाबी पीला तो वाय। जनम करू न गेली ये बे ये जनम

0: बोलू न जाए प्रभु हरि बोलू न जाए। ई धुआ पोचा तो करे एबे ए धोवा पोचा तो करे एबे जे नारो बांधू न जाए प्रभु नारो काटू न जाए।
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस बैंक RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल अब हर गुरुवार और शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
7: रुस रुसा लोक गाथा में अभी आप सुन रहे थे आंधा राजा का भाग 2। गायिका थी सुबरी बाई। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे भारतीय पॉप संगीत जगत की लोकप्रिय युवा गायिका और अभिनेत्री ध्वनि भानुशाली पर। उनकी गायकी में कोमलता और भावनाओं की गहराई साफ झलकती है। उनकी मधुर आवाज ने उन्हें युवा पीढ़ी की लोकप्रिय गायिकाओं में

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: ध्वनि भानुशाली का जन्म मुंबई के गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता संगीत और मीडिया जगत से जुड़े रहे। बचपन से ही ध्वनि को संगीत में विशेष रुचि थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ गायन का अभ्यास भी जारी रखा। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। ध्वनि ने अपने करियर की शुरुआत कवर गीतों और रिप्राइज संस्करणों से की। उनके शुरुआती गीतों में हम सफर, इश्तेहार शामिल है।

2018 में रिलीज हुए गीत दिलबर ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। इसके बाद इशारे तेरे ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। उनकी सबसे बड़ी सफलता 2019 में आई जब वास्ते रिलीज हुआ। ये गीत भारत में ही नहीं विश्व भर में लोकप्रिय हुआ और सोशल मीडिया पर अरबों बार देखा गया। इस गीत ने ध्वनि को भारतीय पॉप संगीत की अग्रणी युवा गायिकाओं में शामिल कर दिया।

संगीत में सफलता के बाद ध्वनि ने अभिनय के क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने 2024 में फिल्म कहां शुरू कहां खत्म में बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की।

ध्वनि भानुशाली को पहली बार सफलता और पहचान मिली फिल्म सत्यमेव जयते के गीत दिलबर से। इसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय गीत गाए जिनमें शामिल है वास्ते, लेजा, बेबी गर्ल, नयन, राधा आदि। उन्होंने कई प्रसिद्ध गायकों के साथ काम किया जिनमें हैं अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल और गुरु रंधावा शामिल हैं।

ध्वनि भानुशाली को अनेक पुरस्कार और अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें है मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, मिर्ची सोशल मीडिया स्टार अवार्ड, IWN डिजिटल अवार्ड और मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक सिंगल आर्टिस्ट ऑन द वेव पुरस्कार शामिल हैं।

0: 再更。
1: ध्वनि भानुशाली ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और मधुर आवाज के बल पर बहुत कम समय में भारतीय संगीत उद्योग में विशेष स्थान बनाया है। आज वे भारत की सबसे लोकप्रिय युवा गायिकाओं में गिनी जाती हैं और लगातार नए गीतों और फिल्मों के माध्यम से अपने प्रशंसकों का मनोरंजन कर रही है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और सुनते हैं उन्हीं के गाए ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायिका ध्वनि भानुशाली पर केंद्रित कार्यक्रम एक ही कलाकार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राजस्व मंत्री ने एक ही स्थान में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने किर्गिस्तान में आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि डिजिटल भू अभिलेखों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कल रायपुर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि गड़बड़ी रोकने के लिए EHRMS पोर्टल बनाया जाएगा। राजस्व मंत्री ने विभिन्न जिलों में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और राजस्व निरीक्षकों की सूची तलब की है। इसके साथ ही एक ही हलका में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का भी पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने के लिए सभी आवश्यक सर्वे कार्य आगामी 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। श्री सिंह आज दोपहर रायपुर के एक अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। श्री सिंह आज राजधानी में हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अपने प्रवास के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कल 13 जून को राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे ऑक्सीजोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें लोक कलाकार और रंगकर्मी तथा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉ अनूप रंजन पांडे भी शामिल हैं, जिन्हें इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉ अनूप रंजन पांडे के अलावा कथक नृत्य के वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेट को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉ आनंद कुमार पांडे को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर उनकी सेवा अवधि फरवरी 2027 तक या राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियमित पदस्थापना होने तक बढ़ाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। किर्गिस्तान के इसिक-कुल में 8 जून से 13 जून तक आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। श्रीमंत ने यह सफलता बेहद कड़े मुकाबले वाली PIUH 85 किलोग्राम श्रेणी में हासिल की है। पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने अपनी इस कामयाबी को भारत के वीर शहीदों के नाम समर्पित किया है। नवा रायपुर स्थित सेंधलेक में आज से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायाकिंग कैनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 1-2 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इससे पहले प्रदेश में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बीती रात राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्व मंत्री ने एक ही स्थान में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने किर्गिस्तान में आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा।

0: तो सबले पहल कला और कलाकार कार्यक्रम संतोष सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन मन के मैं सुनाए करे से जुहार और नानी नानी पीला मन के मुझ बाट ले खुबे खुबे मया। तो दीदी बहिन मन देखा आमी मया करुआ और मया मया ने कैक ठन गीत बले आए कहानी बले सुनाऊआ और संगे संगे कभी कभी आमी कविता बले बोलुआ। तो आम चो जीवना ने कविता चो बले खुबे महत्व से असन ने कविता जो पाठ करतोर ले समाज चो आईना आमी दखा उकलाए सकूं कोनी बांटे कोनी घटना होली जे के आमी अलग ले बदा उकलाई नहीं सकूं उनके आमी कविता चो माध्यम ने समाज ने कवि मन एक दखा हुआ अरे चोले लोग मन के बुद्धि बले चेगुआ की समाज ने कसन काय चीज होए से जसन सुंदर गीत आए सुंदर कोई सुंदरता चो वर्णन होए से कोई रोमांच चक कोनी चीज होए से तो हुन के कविता ने गोठिया हुआ और कविता बल्लों ने जसन आमी पीला बेरा बल मतलब आमे सुनते रलू कितरो कहानी आप लोग किताब ने पहली चो दूसरी चो तीसरी चो कि कितरो सुंदर आमी नानी नानी बेरा बले कविता ने चौपाट करुन भाती एबे पढ़लू लिखलू और इतरो बड़े बनलू। तो कविता आम चो जीवना ने खुबे महत्व आसे और ए समाज चो भीतर चो जोन बल गोट आए उनके आम के उजागर करुआ है उनके दखा हुआ है और आप लो दिमाग चे बुद्धि ने कविता के दखालो ने लोग मन जानुआत की ए कम शब्द ने सब तीज के आमी जसन आमी जानुआ उनके बोलुआत कविता जसन पीला बेरा बोलुआत उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई मुंह धोलो असन आमी जसन पीला बेरा जसन ए कविता के आमी सांगते रलू। तो ये आमी जसन नानी ने एले पीला मन खिंडी कम शब्द ने एक जानू और सुनुक और हरी कुदीम ने एक जानुक और सुनुक मीरे अरे आजकल पीला मन बले कितरो सुंदर सुंदर कैक ठन स्कूल चो पाठ चो किताब ने कविता मन के पढ़ून भाती बले ए मन कैक ठन चीज के जानुक और सीखुक मीरे से। तो कविता आम चो समाज चो आईना आए और कवि चो बले सपाए बाटे मान आसे आम चो देश ने भारत राज ने आम चो छत्तीसगढ़ ने आम चो बस्तर ने बले कवि चो खूबे मान आए और कविता जे कवि बड़े बड़े कवि सम्मेलन ने लोग मन जाऊन कई ठन कविता के सुनुन भाती समाज चो घटना के जानुक सुनुक और समझुक बले मीरे से। ए तो रली नगद गोट और संग संग दखा आम चो जन कला और कलाकार जन कार्यक्रम भीतरे हमें जानू हूँ कि कैक ठन जसन हर हमेशा हमें नए नए नए कलाकार चो गोट बात केवल धरून एवं असने हिसाब ने आमी आज ही सांगवाओ दादा जगदीश स्वामीनाथन चो गोट बात। ए दादा चो जन्म 21 जून 1928 ने होन रली। ए दादा आप लोग कला चो क्षेत्र ने खूबे नाव कमाला और ए दादा भारतीय कलाकार ने चित्रकार कवि और लेखक के रूप ने काम करला। ए दादा भोपाल ने 1982 ने बहु कला परिसर भारत भवन चो स्थापना बले करुण खूबे महत्वपूर्ण भूमिका कर लो। ए दादा जगदीश दादा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चो सदस्य रूप ने बले काम करला। जे जगदीश स्वामीनाथन चो नाव ने सांस्कृतिक पत्रिका बले छपली और ए बले आप लो आमी जानू सकी 1992 में दादा रूपंकर कला संग्रहालय ने निदेशक चो रूप ने आप लो कार्य बले करला और ए दादा सो शिक्षा एकेडमी फाइन आर्ट्स ने होली और जेचो ने पढ़ून भाती है दादा आप लो देश ने गाँव ने गुड़ी ने आप लो नाम के कमाला। ए तो रली नगद गोट और एक एचो संगे संगे और आमचो लगे जहला आसे आले एके बले सुनवाते बे।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है। और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
7: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: तो आमी जसन जानलू कि आमचो जीवनाने कलाचो कितरो मान आसे और कला रलोने आमी जीवनाने कोनी बले उन्नति बाढ़ती ने आम काम करुकलाय सकूं। असनी दखा कला ने जगह गीत बले आसे तो असनी हिसाब ने आजी आमचो लगे बाजा गाजा धरुन दादा इलासो ताले मंचो गीत के बले सुनू और दादा चो नाव के पाछे सांगवा देवे।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: हाँ, तो एदाए में सुन लू राज श्रीदेव और संगवारी चो गाओ लो गीत के। तो गीत तो आमचो जीवना ने खूबे हरी कुदीम लागू है। आमी कोनी भले काम बुता करूँ आओ और दखू आओ कि अरे आम के अच्छा नहीं लागे से, आज मन बल खिंडी अच्छा नहीं लागे से, बने ने गाना बजाऊं रेडियो कठा बसलो ने मन बले अस्थिर लागे से, धीर बले धरे से। और गीत गीत कहनी आमचो जीवना ने खूबे महत्व आसे और असने हिसाब ने आमी आमचो जनगीत चो मोटरा के आनुची आओ लोग मन सुनुआत और थाने कई ठन कलाकार चो गाओ लो गीत बल आमचो लगे आसे और दादा मन बले उन भाती ये गीत के गाऊआत। तो असनी हिसाब ने आज फिर गोटोक आमचो मोटरा के ढीलू और ए राश्री देव दादा चो गाओ लो गीत के सुन लू। एदाए फिर गोटोक बहिन दयामती और संगवारी चो गाओ लो ये गीत के बोले सुनते भी।

एदाय सुनलू आमी दयमती और संगवारी चो गांव लो गीत के सरासरी दाए मेघनाथ पटनायक और संगवारी चो गांव लो एकाए सुंदर गीत के बले सुनते भी।

तो एदाय आमी सुनलो मेघनाथ पटनायक और संगवारी चो गावलो गीत के एदाय जातो समयाबल होए से आज जी गेलो ने काली फर भेटवा अरे कुदीम ने रहा ए नगद गुहार संगे मुके विदा दियास। तो जातो पूरे कला और कलाकार कार्यक्रम सुनतो सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन के मैं सुनाए करे से जुहार।

कला और कलाकार। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

घर द्वार कार्यक्रम संतोष सब पाए गांव करी दीदी सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं सुनाए करें से जुहार और नानी नानी पिला मन के मोचो बाट ले खुबे खुबे मया। तो दीदी बहिन मन देखा मोचो बल तो गोटी आए कि आमचो जीवना ने अमी कई ठन लोग के पीला झीला मन के आम तो मया करूँगा और कई ठन काम बुता संगे संगे जे भी आमचो घरे तिहार बाहर होली जाले खूब बेकाम रहुआ है उन दिन आम के समय बोले नी फाबे असनी ने आमे जानू से कि जसन के आमी अमूस आए दियारी तिहार आए ए सपाए तिहार के आमी कुटुम लोग मिलून मिसुन भातीय तिहार के मनाऊआ जे चोले परिवार ने भी कुटुम ने गोटोक एकता चो गोट बले होए से पहल हिसाब ने बोलुआत की अलग अलग कटकी के सब टूटा उकला सकुआ मांतर हुन किटकी चो भारा बनलो ने कोनी टूटा उकला ही नहीं सके तो असनी गोटोक एकता चो गोटोक चो मया चो गोटोक परिचय होए से तिहार बाहर और ए मनाऊ से और देवता धामी चो सुमर ना करतो काजे तुम्ही तो जाना साहस कि आमी मिलून मिसुन भाती ए कुटुम परिवार संगे गोटोक तिहार के मनाऊ से और कोनी बले तिहार हो आमी अलग अलग तिहार के मना लो ने आम के हरिक बले नहीं लागे असनी सामने आमी जानुआ कि तिहार चो कितरो महत्व आए और एचो ने आमी परिवार चो भीतरे आमी सपाय मिलून भीसन भाती ए तिहार के पीला हो झीला हो नानी हो सियान हो

0: चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तक वेंट इंजे जीएसटी छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोइतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोरकीता।
2: तो इदा है दखा अमी नगद गोड बात तो आम चो लग रहा हुआ है और जे चले आम चो जीना ने उन्नति बाढ़ती बले हुआ है आम चो जन कर द्वार कार्यक्रम भीतरे आमी हर कार्यक्रम ने आमी भेट वार्ता धरून एम आओ और नगद गोड बात के सुनन बाती दीदी मन के बले खूब हरिक लागे से असनी हिसाब ने आज ही आम चो जन भेट वार्ता चो मोडरा भीतरे आसे जैविक खाद उत्पादन और मसाला उत्पादन ने बहिन गोमती मौर्य आम के काय सुंदर गोड बात के धरून इली से आले ए दीदी संगे गोड बात के सुनू और गोड बात करे सो बलबीर सिंह आले सुनू ये भेंट वार्ता की
3: घर द्वार सुन तो बहन मन आज फिर गोटुक में असन बहन संग गोट बात करें से एमन बल्ले स्व सहायता बनाउन बाती कितले मतलब स्वरोजगार हिसाब ने काम कर सोत तो मैं गोट बात करें से मन संग सब ले आग तुचो नाव आरु गांव चुनाव संग
4: मुझे नाम गोमती मौर्य है और मुझे गांव चुनाव है सोसन पाल।
3: अच्छा तो गोमती ये संग जैसे की तुम जो स्व सहायता समूह आसे तो उन चो कई नाम वाले आसे होती
4: जी हम समूह जो नाम है शारदा और उन थन में अध्यक्ष है।
3: अच्छा हाँ बोले कितलो दिन असन होली एक बना लो
4: 6 साल होली
3: 6 साल होली।
4: हाँ।
3: अच्छा तो जैसन की बोले ने कोनी कहीं बल चीज के गठन कर तो काजे तो बोले ने कई चीज के जानू कला पड़े से बोले ने कसन तुम्हें ये स्व सहायता समूह बनालास कोने सरकार बाटले बनले कि तुम्हें सोचलास कसन
4: नहीं आम के बाहरी ले रहा दीदी मन जोड़ तो काजे तो मतलब बाकी लोग नी जोड़ू बल तरला पहले नी जान तरला नी समूह वगैरह का आया बोलून फिर बोला हम डोठुन बाती जुड़ लू और हम थान ले मतलब आम के कुछ तो फायदा ही है इसे जुड़ लो तो।
3: अच्छा
4: हाँ जुड़न बात हम थान हम काम करूँ से जहन की अभी गोठान ने काम करूँ से।
3: अच्छा
4: गोठान में जन गोबर खरीदी करवाऊ उनके बाद में खाद बनावा बेचवाऊ केचुआ वगैरह भी पालन करवाऊ।
3: अच्छा
4: केचुआ वाल बेचवाओ और उनके साथ साथ जैसे गोठान ने काम कर लू नहीं तो हम के उद्यानिक विभाग गई एक ठन मशीन मिली से मसाला यूनिट भी दिया है।
3: अच्छा
4: उन थाने आमी मसाला तो नी पीसू लेकिन हल्दी वगैरह पीसवाऊ।
3: अच्छा
4: आटा बल पीसवाऊ मंडिया वगैरह सब पीसवाऊ।
3: अच्छा
4: हाँ एक ठन नाम का और राजी मिली और किसान दादा मन संग बोले जुड़न बाती काम करवाऊ।
3: अच्छा
4: आजीविका ने जहन की किसान मन के कसन समय ने धान वगैरह लगाता रहा है कसन समय ने पल्हा पखाता रहा है उन सब सांग हुआ।
3: अच्छा
4: और कीड़ा वगैरह लग तो चुप पहले कसन मतलब दवाई डालता रहे उन सब
3: हुआ। अच्छा अच्छा गोमती ये सांग जैसन की तो बल्लिस जैविक खाद जून बना दी थी बोली
4: हाँ।
3: तो ये चुका पूरा सेड वगैरह बल बन लीस होती
4: हाँ, पूरा सेड बन लीस
3: है। अच्छा बल्ले कौन कृषि विभाग बाटले बना दिला
4: नहीं मतलब सरकार बाटले बन ली शायद।
3: अच्छा
4: गोठान
3: अच्छा हाँ। गोठान ने
4: हाँ
3: और जैसन की मोर ने जैसन की गोबर तुम घेंसास होती।
4: हाँ
3: अच्छा फिर केचुआ वगैरह बल्ले कहाँ ले तुम की मिरली भी
4: केचुआ मतलब पहले तो हम घेन उकली पड़ ली शुरू में तो केचुआ थोड़े बल डालू रहे बहुत सारा हुआ।
3: अच्छा
4: तो उसने खूब सारा हो ली तो उनके अभी बेचू बलाऊ।
3: अच्छा
4: बिकलू इस साल 14-15 हज़ार तक बिकलू केचुआ के।
3: अच्छा
4: अलग से ही केचुआ
3: अलग से ही केचुआ। अच्छा तो ये जैसन की बल्ले खत बोलू भे गोटो टाका ने बोलू भे
4: हाँ।
3: गोबर छाण सास गोबर आरू हाँ। पे केचुआ छाण सास
4: हाँ।
3: अच्छा फिर उन कितलो दिन ने तैयार हो जाले
4: उन तो करीब मतलब आम तान इतलो भरपूर आस होत केचुआ तो आम के ज्यादा टाइम नहीं लागे एक महीना हो पूरा बड़े हुआ।
3: अच्छा हाँ नहीं जैसन की गोबर वाले कितने दिन ने तैयार हो
4: गोबर तो हुआ है 25-26 दिन ने।
3: अच्छा बोले वो तो खाली गोबर ची है कि और कहीं बल मिलाव पड़े
4: नहीं।

0: चे बस गोबर चो छड़ा ची चुन बाती मतलब सराल टाइप चो करू आऊ उन चो बाद ने गोबर के डालू आऊ कच्चे गोबर बस बाकी कुछ नहीं डालू।
1: अच्छा
0: हाँ पैर वगैरह कुछ नहीं डालू बस सादा गोबर डालू आऊ
1: उन
0: चो बाद ने ऊपर केचो छाड़ू आऊ 15 दिन होले ने छाड़ू आऊ नहीं तो गोबर गरम रह केचो मरुआत नहीं
1: अच्छा तो फिर के
0: पानी वगैरह डालू मतलब एकदम तैयार करूँ उनके उनके बाद में केचुआ डालू ढाकून दीवाऊँ
1: अच्छा
0: मतलब फिर 2-3 दिन खाऊ मुरिया बाद
1: अच्छा
0: केचुआ फिर उन खाद बनवाए।
1: हाँ तो 20-25 दिन ने तो तैयार हुआ
0: हाँ
1: है बोल से।
0: तैयार हो चिया है बीस
1: अच्छा
0: पच्चीस दिन
1: भले नहीं कि कसन हिसाब ने बिक तो रहे से फिर
0: इकी फिर लेम सन्नी बात
1: ना नहीं मतलब किलो हिसाब ने कसन आए पैकेट कसन बना इसका।
0: पैकेट 30 केजी शुरू है।
1: अच्छा एक पैकेट में।
0: हाँ
1: अच्छा
0: हुन 10 रुपया के जिन तो 300 है से
1: हाँ
0: तीस
1: हाँ
0: के जी चो।
1: अच्छा भले ये सब चीज़ पैकिंग वगैरह तुम्हें खुद दोता करो।
0: हाँ पैकिंग वगैरह खुद करूँ हमें लेम
1: हाँ
0: सबल छाड़ उग जाऊँ।
1: अच्छा हाँ भले फिर उता फिर कितलो दिन ले तुमके पास पैसा मेरे से जाले।
0: उन थाने जहन की ये बात आम चो इंट्री कर लायल सचिव मन तो डलू आए पैसा खाता ने।
1: अच्छा हाँ। और जैसन तुम सांगते रहे इसकी केचुआ बल भी कुआं बोलते
0: हाँ
1: बोले ने कसन हिसाब ने तुम बिकसा साल।
0: केचुआ बल्ले ने खूब सारा आम थाने मतलब खूब मात्रा नासवत तो उनके संग उन बल काय करूँ दूसरा थाना अगर जरूरत आस तो 250 रुपया किलो ने बिकवाऊँ हमें।
1: अच्छा
0: हाँ
1: 1 किलो
0: एक
1: ढाई
0: किलो
1: सौ
0: 250।
1: अच्छा तो उसने खत बना तो लोग मन नहीं सोच बोले कि नहीं।
0: हाँ गोठान मन में नहीं बात
1: हाँ
0: सर मन फिर संपर्क करुआत कि हुन
1: हाँ
0: थान केचुआ मीरे से बोलून बाती तो पाछे बिकवाऊँ हमें।
1: अच्छा हाँ। तो ये खत के अलग लेवल तुम भी कुछ सकास कि।
0: नहीं अलग लेनी बिकू बस लेम सनी चीनी वाहू।
1: अच्छा पूरा लेम समझे।
0: हाँ
1: हाँ। और जैसन कि तिबल से किसान मन के बल उन मन संग बल काम करूँगा बोल से
0: हाँ
1: तो उन्होंने कहीं सिखा हुआ आज ट्रेनिंग वगैरह बोले।
0: हाँ जहन की रोपा वगैरह कसन लगाता रहा है तो कसन समय ने पलहा पकाता रहा है उन सब सांगुआ कसन बीज तैयार करते रहा है उन सब सांगुआ किसान दादा मन के और कतार विधि और क्या बोलो
1: श्री पद्धति है
0: हाँ
1: ना।
0: श्री विधि
1: हाँ
0: उनने लगा लेने कितरो फायदा हुआ है उन्हें सब सांगुआ हमी।
1: अच्छा तो
0: हाँ
1: ये सब के सांग तो तुम क्या आगे कहीं ट्रेनिंग वगैरह मिल ली प्रशिक्षण।
0: हाँ ट्रेनिंग मिरु रैली
1: अच्छा कहाँ होता है देवरला
0: तो कपाल में देवरला।
1: तोखापाल में।
0: हाँ
1: अच्छा बोले कृषि विभाग बिताऊँ।
0: हाँ
1: हाँ। तो ये जैसन कि तुम किसान मन के प्रशिक्षण सांग साथ ये चुपल कहीं समूह कहीं मेहनत मेरे से
0: हाँ 50 रुपया मिरु आए रोजी।
1: रोजी।
0: हाँ
1: अच्छा बोले प्रशिक्षण दे लेने। हाँ। तो बोले ने कितलो पंचायत गोट की पंचायत ने काम करूँ आज की।
0: हाँ एक पंचायत में जहन 15 समूह 20 समूह रुआत तो एक ग्राम संगठन बनुआ एक ग्राम संगठन ने तो उन एक ग्राम संगठन ने आमी आसू 4 या 5 केडर रुआत
1: हाँ अच्छा
0: तो कृषि सखी पशु सखी सक्री महिला रुआत चार झन असत उन मन जहन के हम दुई झन मिलून बाती जहन पशु सखी रहे से गोठान ने दखतो काजे
1: अच्छा
0: कृषि सखी किसान मन जो दखतो काजे सक्री महिला मन समूह मन के जोन जो भाई समूह जोड़ तो काम होली समूह में कसन चले से हुन सब एक सप्ताह बैठक करुआत नहीं पैसा लेन देन कसन कर सत हुन सब सांग तो का सक्री महिला मन रुआत।
1: अच्छा बल्ले ये समूह भीतर ले सोत कि मन
0: हाँ
1: अलग ले रहे सोत।
0: समूह भीतर ली शुरुआत।
1: अच्छा हाँ। बल्ले उन मन सांगते जाए सो फिर।
0: हाँ
1: हाँ। तो जैसन कि जैसे समूह बल्ले 6 साल इतलो होली है बेलसिस तो ये चो जो बैठे का है नहीं तो हिसाब किताब है बल्ले कसन कर सास कितने दिन ले कर सास।
0: 1 सप्ताह में बैठक करवाऊँ 20 रुपया बचत करवाऊँ बचत थान ले जान हिसाब किताब एक ही सप्ताह ने हुआ है पूरा हिसाब किताब करवाऊँ जो बात जहन की लोन नोगरा निकरात रहा है जोन बलाए हुनी बैठक नहीं ची कार्रवाई करवाऊँ उनके बाद ने लोन वगैरह भरुआ कोकी जरूरत बल रुआ है तो लोन जो जरूरत आसे उन लोग मन धरुआ और अच्छा ले पठाऊ
1: अच्छा
0: बैंकन बल।
1: अच्छा तो बाकी आमदनी भी थी कि बोले कसन बाटा बुटी कसन वैसे जाले।
0: जोन आमी आजीविका वित्त काम करुआ हूँ बीती उन धाने जन जितरो लोग काम करूँ से जितरो लोग मेहनत करूँ से उतरे लोग धरुआ।
1: असन ने जैसन खत वगैरह बोल भी के लिए नहीं उन पैसा छो बोले।
0: नहीं हुन बीती खत बिकलो बीती के मतलब व्यक्तिगत ही बांटलो तो जितरो लोग करोड़ो लो उतरी।
1: अच्छा तो दक 6 साल होली बोलसी उसने पूरा 10 जना साथ। हाँ हाँ, तो जैसन कि मतलब आर्थिक रूप ने आमदनी हिसाब ने बोले जौन दिन ले बोले समूह बनाला साथ, तो तुम चो जो महिला समूह मन ने बोले 10 जना सु बोलसी तो उन मन चो जीवना ने कहीं फरक
0: बदलाव बहुत बदलाव इली। असन तो मैं खुद बोलता कहें कि महिला मन कितना समझदार होला, जन आपली काज तो बचास हो जो बचत कर सो पैसा वगैरह और जो लोन वगैरह बल धरे सो थुन धान ले धरून बाती आप लोग आजीविका ही बढ़ावा आगे बढ़ा सो तो बहुत ही सुधार इली से मुझे ख्याल ने तो।
1: अच्छा हाँ, पैसा कौड़ी हो तो के मनुष्य जसन की
0: सब कुछ बदल ली, घर द्वार बले अच्छा ले मतलब रहन सहन खान पीन सब चीज ठीक ही होली।
1: अच्छा बोले घर चुपीला जिला पड़ा तो बल समझदारी
0: हाँ, समझदार होला जहन की समूह ने जुड़न बाती जहन लोन आम के असनी तो लोन धार ले ज्यादा ब्याज लगावत समूह ले होले कम ही लगावत 2% लगावत।
1: अच्छा हाँ, बोले ब्याज कम मिले,
0: ब्याज कम है तो ना हम के सोना चांदी गहना मारूक नहीं पड़े ना कहीं नहीं तो आम थान 10,000 बल पैसा आज तो दीवाद बैंक बितावन पैसा।
1: अच्छा
0: हम जो बचत के दोन बाती हाँ
1: तो जसन की गोमती असन तुम्हें कोनी बाटे बाहरी बल्ले ने तुम चो समूह हिसाब ने ना ले व्यक्तिगत हिसाब ने कहीं दक दकुक लाए प्रशिक्षण धरुक लाए गेला सा
0: नहीं अभी तो नहीं गेलु से एक बार 18 में एक आर सोजे असन बुलुक जाऊ रू नेवरला
1: कहाँ
0: रायपुर नेवरला।
1: अच्छा बिलुता काय दखाला जाले
0: उन था नहीं मतलब सब कुछ दखाला अच्छा अच्छा चीज मन और जाऊ नहीं रोलू फर्स्ट टाइम गेले मैं बोले
1: अच्छा
0: अच्छा लागली और मतलब सब कुछ एकदम अच्छा लग लिया बलनी बात लेकिन जाऊ नहीं हुआ है कोनी कोनी बिरा।
1: अच्छा हाँ बोले समय नहीं मेरे से बोले
0: समय नहीं मेरे से।
1: अच्छा
0: घरे मतलब गोठाने दखुन बाती फिर घर च काम बल करुक पड़ुआ है पीला झीला के पढ़ा लिखा बल करुक पड़ुआ है घर में दुकान बल संभालुआ है।
1: अच्छा बोले ने घर चो काम संगे संगे पर गोठान चो काम
0: गोठान चो काम समूह लोग जो दख तो काम बस सफाई करूं है।
1: अच्छा बोले ये तो अच्छा काम है बोले तू घरे व्यक्तिगत रूप ने बोले दुकान बोले आसे बोले सी काय दुकान आ जाले
0: किराना दी स्टोर है।
1: अच्छा किराना स्टोर आसे बाकी सब मैंने तो ये था घरे दकुआज बोले
0: और दीदी मन लोन फार्म वगैरह भरुआ एपल से आर पीच बल काम करे से।
1: अच्छा बोले कैसन काय हो से
0: ए मतलब जहन की अभी लोन वगैरह निकलवा तो दीदी मन समूह ले तो फार्म भर पड़वाए तो ए एक झने पल सी आर पी के 4 या 5 पंचायत देवरुआत तो पंचायत मने जाऊन जाऊन लोन बीती फार्म भरून बाती बैंक जनपद ने जमा करूँ।
1: अच्छा तो ये बोले तुम के जाओ क्ला पड़े से
0: अच्छा जाओ पड़वाए
1: अच्छा पंचायत वगैरह मने
0: हाँ
1: तो इतलो काम के जैसन की घर से बल काम आए गोठान ने बल जाए सा फिर घरे दुकान बल आ से बलसीस तो बोले कसन होय से सफाई काम
0: हाँ करूँ है मतलब पहले असन लागत रही कि मैं नहीं करे असन लागत रही तो मतलब बलत रहा हम जगह लोग बल नहीं जुड़े का है फालतू चीज है बलत रहा लेकिन समूह ने जुड़ बेरा मुख बिकट अच्छा लागली कि ये सब करे से बाहरी जाओ मेरे से यार सब लोग के जान पहचान होय से बड़े बड़े लोग मन के जानुक बल हो ना हम जनपद के नहीं देख रुलू तहसील के नहीं देख रुलू बैंक के नहीं देख रुलू घर भीतर कहाँ देखुक लाए हुआ है बाहरी नहीं सकलू सब चीज के जानू से सबके देखू से बड़े बड़े लोग संग जान पहचान बल होली सब कुछ होली अभी बहुत अच्छा लागू है सब लोग संग बातचीत करतर मिलतर
1: डर बल मेटे से
0: अरु जन के बड़े लोग सामने लोग ही लेने कोनी गोठे उकले नहीं सकत रू आगे डर लागत रे कोनी पुलिस भी तक बल दखले डर लागे काका जी लास्त असन लागत रे अभी सामने जाऊ ना बात करूक ले सकू।
1: अच्छा बल्ले ने समूह बना तो कितलो तुमके
0: फायदा
1: होले बोलू है कि नहीं तो बल्ले पढ़ा लिखा बल कितलो कर ले सी साले तुम
0: मैं 12वीं पास आसे।
1: अच्छा तो दक 12वीं पास होन बल तो अच्छा है खूब पढ़ा लिखा बल सी मानतर सबले ज्यादा तुमके जो निर्भीक आए निडर आए झिझकपन मिट तो भी थी स्व सहायता
0: समूह ही चीज जुड़न मेरली
1: से। हाँ हाँ तो गोमती मोरे तुझसे इतलो अच्छा आज गोट बात होली तुम चो पूरा स्व सहायता समूह जो गोट के सांगली स्फेर के भी भेंट घाट हुआ खूब खूब जुआर
0: जुआर जुआर
2: एदाय आम्ही सुनलो भेटवार्ता जैविक खादर उत्पादन चे गोट बात के बहिन गोमती मोरे काय सुंदर गोट के धरुणी व्रत और गोठियाते रहोते मन संगे दादा बलबीर सिंह कच्छ एदाय फिर आम्ही आमचो जोन कार्यक्रम चो मोडरा के ढीलू और काय सुंदर गीत गोविंद के निक रंग मानतर एचो संग संग मैं बलतो गोठाए कि एदाय फिर किंडी समय पाछी स्कूल बोल खुले दे और पीला झीला मन के बलतो गोठाए कि दीदी मन तुम्हें सांगा कि आमचो जीवना ने पढ़ा लिखा कर तोर बोले खूबे महत्व से और पढ़ाई चो बलो ने जो पढ़ाई के ध्यान दी दे हुन पाछे पछता हुआ है बोलुआत की राजा चौहान ऊंची देश ने हुआ है राजा चौहान ऊंची देश ने हुआ है मांतर पढ़ा लिखा चौहान सपाय राज ने हुआ है तो पढ़ा लिखा कर तोर खूबे जरूरी हो से तो असनीय नगद गोट संगे आले मले हरी कुदीम ने आमी एक आय सुंदर जो गीत के बले सुनू और गीत कुरिया दादा असोत राज श्रीदेव और संगवारी मन

हम ही सुनलू ए बुधरी और संगवारी चौगावलो गीत के बोले मानतर देखा हमी गीत के सुनलू ए दाएँ फिर आमचो जातु समयावल होली तो जातु पूरे मैं सुनाए करें से जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह आकाशवाणी जगदलपुर है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा जगोट का पुनः प्रसारण।
2: काश्तकार भाई बहन मन, खेती कमानी का जे बैला भैंसा चो खूबे जरूरत पड़े से, ये मन चो नहाल और खेती कमानी मुश्किल होए दे। हम चाहन गांव मन ने सबे ठान ने ढोर अस्पताल निहाय, गुनुक गाय बैला के कई बीमारी पड़लो ने ए मंचो इलाज करा तो काजे किसान भाई बहन मन के खूबे तकलीफ होय से। असन ने गाय बैला ने जौट तो रोग और हुंचो रोकथाम चो वाट के जानून रले, पशु जनावर चो प्राथमिक उपचार किसान आपलो घरे बले करुक लाए सकोत। तो या काश्तकार भाई बहन मन, पशु जनावर ने जौट तो रोग और हुंचो रोकथाम चो वाट के हामी जानू। बैला भैंसा ने पेट फूलतोर गोटक बीमारी होय से, ये बीमारी ने बैला भैंसा चो पेट फूले से और ए मन के खूबे तकलीफ होय से। गाय बैला चो पेट फूलतोर कारण होय से जेबे ए मन खूबे मात्रा ने हरा चारा खासोत तेबे असन होय से। नहाले कुहलो खराब बीती चारा खादलो ने, नहाले फिर गंदला पानी के पीवलो ने, नहाले पेट ने केस रूंडा हौंडरलो ने, ये सबे कारण लागुन बैला भैंसा चो पेट ने फूला चेगाव रह से। ये बीमारी ने पेट ने अनगर मात्रा ने लेहरा भरी होय से, जेचो लागुन पशु के निनाज धरतो ने तकलीस होय से। पशु जनावर दुखा काजे पाए के भूई ने बिसार मारते रुहात और पेट के बले लात मारुआत। ये जो रोकथाम काजे घर ने 1 लीटर खातो बीती तेल, 1 लीटर गरम पानी और 20 ग्राम खातर सोडा मिलाऊन पशु जानवर के पियाऊन दे तो राय, असन कर ले एमनचो तकलीफ कम होय दे। गाय बैला ने पेट सुल नाव चो बीमारी होय से, एके हमी पेट दुखा चो बीमारी बले बलुक लाय सकू। ये बीमारी जौट तोर कारण होय से, जेबे पशु खाली पेट ने रह से और अगर बूता करून दय से तो हुनके पेट दुखा होय से। और हुन चो खातो बीती आहार ने अचानक बदली कर ले, नहाले लेहरा के जौटा तो बीती कई जिनिस के खादलों ने पशु जानवर के पेट दुखा उठुक सके। असने पशु चुपेट ने चारा कुहुन रले, नहाले पेट भीतर ने घाव हौन रले और पथरी हौन रले बले पेट दुखुआए। काश्तकार भाई बहन मन, बैला भैंसा के पेट दुखा चु बीमारी होले ए चु लक्षण बल्ले चीना असन दखा पड़े दे। पशु घन घन पेट के दखुन पाए के भूए अपटते जाए दे। जुगे पेट दुखा दिलो ने भूई ने लोंडून उलट पुलट होय दे और दांत कट रहे दे। असन ने हम के जानतो राय कि ये पशु के खुबे पेट दुखा दय से। काश्तकार भाई बहन मन, तुरते घर ने एचो रोकथाम काजे जीरा 15 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम, काला नमक 5 ग्राम, हरट 20 ग्राम, ये सब जाग के मिसाउन पिसुन भाती गर्म पानी संगे पशु जनावर के पियाउन दे तो राय। असन कर ले पेट ने भरलो लेहरा बाहर निस्के दे और पशु के अच्छा लागे दे। पशु मन के 20-30 ग्राम मात्रा बड़े पशु मन के और नानी पशु मन के 10 ग्राम मात्रा दिन ने दुहार पिया तो राय। काश्तकार भाई बहन मन, के भाई जे भाई हामी दुखुआओं की बैला भैंसा चारा खाऊक नहीं मने आऊआत और असन हुन मन तेबे करुआत जेबे पशु के जद धरली से, नहाले पेट दुखा दय से, नहाले और कोनी दूसर प्रकार चो बीमारी होली से। तो काश्तकार भाई बहन मन, एचो घर ले इलाज काजे 10 ग्राम अजवाइन, आंवला 20 ग्राम, चित्रक 5 ग्राम, पीपली 5 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, हरट 15 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम और जीरा 10 ग्राम, ये सब जाग के मिसाउन कुटुन भाती चूर्ण तैयार करतो राय और बड़े पशु के 20-30 ग्राम और नानी पशु के 10 ग्राम तैयार कर लो चूर्ण के गर्म पानी संगे दिन ने दुहार पिया तो राय। असन कर ले पशु के चारा नहीं खाऊ भाव तो बीती बीमारी ले उपचार होय दे और पशु जोना चारा खाऊ मुरे आए दे। गाय बैला भैंसा ये पशु मन तो हम जो संगे गोठिया उग नहीं सकोत, मानतर हमन मन के ये पशु मन ने जौट तोर बीमारी चो लक्षण बल्ले चीना के जानून रतो राय और ये मन के कहीं बल्ले तकलीफ हो से बल्ले आप लोग घरेज प्राथमिक उपचार करतो राय, फिर पाछे ढोर डॉक्टर मन के बल्ले दखातो राय। हम जो खेती कमानी ने बैला भैंसा खूब सहायता देसोत तो हम के बल्ले आप लोग घर चो लोग असन ये मन के मानतो राय और बीमार पड़ले ये मन चो नगद इलाज करातो राय।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 में है, पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम श्रोता सुमन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक का प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। आवाजें हैं सलीम मर्चेंट, शेखर रावजानी और नीति मोहन की। अनविदिता दत्त के लिखे इस गीत को सुर में ढाला है विशाल और शेखर ने और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। दरियापुर महाराष्ट्र से आप हैं गजाना नेले नवदीप एले। शेरी वार्डनेर अकोला से आप हैं बलदेव दामोदर अरुणा दामोदर। बिरडी से आप हैं राजेश सोनी कंचन सोनी गायत्री ठोमने वैष्णवी ठोमने चंचल ठोमने अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत मनविंदर सिंह पांधा। बुड़गन से आप हैं राम दुलारी प्रजापति रामशरण प्रजापति चंद्रेश कुमार प्रजापति चंद्रकला प्रजापति शशिकांता प्रजापति। मालेगांव से आप हैं दत्ता घायल सुनीता बाई घायल सानिका घायल और गजानन घायल। छत्रपति संभाजीनगर से आप हैं राजेश सावले पाटिल राजदीप पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश और शीतल राजेश। गोरबा बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं देवलाल कर्ष कामिनी कर्ष और यश कर्ष। डोंडीलहरा बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवशंकर तामोरिया प्रभा देवी तामोरिया अजय तुषार तामोरिया डॉली बेबी और पूजा तामोरिया। भिलाईगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिम्पल देवांगन। पुरानी भिलाई चरौदा से आप हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमीदुन सिद्दीकी जिशान अहमद सिद्दीकी और शहनवास अहमद सिद्दीकी। पटेलनगर मलोट से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया गीतारानी जजोरिया गगनदीप जजोरिया और बेबी आरजू जजोरिया। संत कंवरवाड़ भाटापारा से आप हैं रामगुलाब सेन नूतन कुमार सेन और बेबी पूजा सेन। ग्राम नागरकोका जिला राजनांदगांव से आप हैं छग्गा राम साहू बबलू जामुन देवी साहू राजू दुष्यंत लल्ला प्रांजल प्रेम पूजा और बेबी आराध्या साहू। शनि मंदिर चौक खंडवा से आप हैं दुर्गा प्रसाद सैनी अनीता सैनी गौरव सैनी राधिका सैनी और दीपिका सैनी। सालर पहलगाम कश्मीर से आप हैं पिरजादा महराजुद्दीन नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन। रानीगांव नगरी से आप हैं अखिलेश कुमार साहू चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू। भवानी माता वार्ड खंडवा से आप हैं भाई राजेश सेन सुरेखा सेन शुभम सेन और अक्षय सेन। दतरंगी से आप हैं भागवत वर्मा लेवाई से गुलाब दास। लचनपुर से आप हैं विश्वनाथ साहू पंकज साहू और तिरुपति साहू। मदनपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं श्रवण कुमार साहू योगेश साहू और राहुल साहू। तेलीपारा बिलासपुर से आप हैं गुणवंत श्रीवास करुणा श्रीवास और बेबी आयुषी श्रीवास। अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव से आप हैं रिजवान खान आयशा सबिहा अनस और रेहान। बन बघेरा डोंगरगढ़ से आप हैं योगेश शर्मा आशा शर्मा नीरज नीलेश और अंजलि शर्मा। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमद्री केवट अंजलि केवट रुद्रानी केवट और कृष्णा केवट। दुर्गा चौक रायगढ़ से आप हैं गेंदलाल श्रीवास लक्ष्मी बरेट लक्ष्मण वाधवानी अब्दुल सलीम संतोष श्रीवास मनोज यादव और गेंदू भाई। पारूण विश्नापुरी से आपें प्यारी दास मानिकपुरी, खिलेश मानिकपुरी, रोहन दास मानिकपुरी और नैन्सी मानिकपुरी। ग्राम भंडार शिवनी जिला कोंडागांव से आपें सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी। तो ये सुनिए आप सबकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: दंतेवाड़ा बचेली से आप हैं बलराम सेन, हिंदू सेन, रितिका सेन, पुष्पराज सेन, पोषण सेन, पंचु सेन और भुवनेश्वर सेन। चांदनी चौक गंडई पंडेरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विक्की नानू, रविंद्र सेन और यहीं से खुशी रौनक सेन। हिंदराज रेडियो श्रोता संघ खुपटी महाराष्ट्र से आप हैं बंटू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट। श्रीरामपुर भोकर से आप हैं हरिभाव बिडवे, श्रवण अनिता बिडवे। विडुल ताउमराष्ट्र उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका पोपलवाड़, लक्ष्मीबाई पोपलवाड़, भारत धुले। अंबेडकर चौक वाकोड़ी से आप हैं उत्तम जामधाड़े, देवशाला जामधाड़े। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। बठिंडा रोड डब्बाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। खमहरिया छत्तीसगढ़ से आप हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। ग्राम बठिना जिला दुर्ग से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, निधि वर्मा, निखिल वर्मा, यश प्रणय वर्मा और पार्थ कश्यप। सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। आर्यनगर कोका भिलाई से आप हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। छत्तीसगढ़ धमदा ग्राम सुकरी कला से आप हैं अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि जंगेल और ओशिका जंगेल। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, हेमंत बबलू जैन, गुड्डू तिवारी और उमा तिवारी। उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापपुर से आप हैं प्रकाश त्रिसुनिया, विकास त्रिसुनिया, नैतिक त्रिसुनिया, मनोहर निषाद, दिव्यांश धैर्य और आराध्य। ग्राम अमलेश्वर से आप हैं डोमान ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सुरेश ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। ग्राम दुल्हापुर से आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर। रायगढ़ से आप हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी। जम्मू कश्मीर से आप हैं रवि राजदान, एम एस अब्बासी, देवलाल, रोशन लाल, मीरचंद और साहिल डार। पीपरपारा पलचुआ मुंगेली से आप हैं उत्तरा दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री। एकता कॉलोनी रोहतक से आप हैं सीताराम कागड़ा, बबीता बोध, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा और सुभाष लूना। दुर्गा कॉलोनी हंसी से आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। पूर्वी चंपारण बिहार से आप हैं आर्यन राज, सुमित राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ग्राम गुटको से आप हैं नकुल सिंह लोनिया, अंशु, आयुष चौहान, शांति, काजल सिंह राजपूत, पूनम सिंह राजपूत, पुनीत सिंह राजपूत और ओमशंकर लोनिया। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। लालपुर मारो से आप हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निमी पम्मी ध्रुव, सिया और हर्षिता ध्रुव। अनारकली बाजार जगराव से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और नवासी देवी गव्या। गांधीनगर गुजरात से आप हैं सुरेश राठौर, मंजुला और विशाल और निशा। चावला चौक गांधीधाम से आप हैं रमेश मूलचंदानी और जय मूलचंदानी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मुझे कुछ कहना है का गीत। स्वर दिया है सोनू निगम ने, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक। तो लीजिए आपकी पसंद, आपकी नजर करते हैं।

कुमार सानू की आवाज में सुनिए फिल्म दिलवाले का गीत। गीत रचना समीर की और तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने। अनुरोध आप सबकी। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आदिल खान और जिशान खान। चारमीनार चौक गंडई पंडेरिया से अभय दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल मोटवानी। झूलेलाल चौक तिलदा से आप हैं हरीश कुमार सेतपाल, भूमिका और सुशीला दीदी। चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। बोड़सरा नैला से आप हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। गोलबाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धा नंदारे, अभय नंदारे, परमानंदारे, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी। ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श, पेगाम राविया शेख, शेख रहीमोना, शेख बहाव और नुरजहा बानो। बदलापुर मुंबई से आप हैं बंटी गवणकर और सुभाष पोतेवार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी।

गोष्टी, आनंद राठौर, गिरिजा राठौर, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बबला यादव, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, दिनेश तिवारी, साबान नायक, अंकिता जोशी और बेबी वैदेही जोशी। सहारनपुर यूपी से आप हैं राधा नामदेव। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो अभनपुर से आप हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू। लोरमी गोल बाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से आप हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा और पूर्वी। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव और तेजल यादव। पाकुड़ झारखंड से आप हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से आप हैं कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। ग्राम लुहेरी जिला महोबा यूपी से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, रेणु और रोनिका यादव। उदिता विश्वकर्मा और सुजिता विश्वकर्मा आप हैं देवरिया यूपी से। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से आप हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। ग्राम फरहानसी हिसार से आप हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरव डूडी। शंभुदयाल खटक आप हैं गांव जाखोद राजस्थान से। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद और वैदिक वेद। रोहनसी पलारी से आप हैं मुकेश कुमार साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू और मयंक साहू। कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ जिला खरगोन ग्राम गोगावा से आप हैं उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफार खत्री। कलानौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गफार डावर जी, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, अब्दुल रहमान डावर, अब्दुल कादर डावर और हमजा डावर। गोयल जीन सनावत से आप हैं मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद इसहाक और तलहा बब्बू डब्बू। कासम कॉलोनी सनावत से आप हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिम मीना। ग्राम कुम्हली लौंडीगुड़ा से आप हैं बसंती पांडे, दुधेश पाणीग्रही, अवनीश पाणीग्रही, चुनौती पाणीग्रही, तेजल, हिमांश और कमल पाणीग्रही। बोड़खड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतना नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूड़त। लगन पंडरिया छत्तीसगढ़ से आप हैं रुक्मणी बघेल, उत्तम कुमार, साहिल और भारती बघेल। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से आप हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, कुमारी साहू और इंद्राणी और माया साहू। शीतला माता चौक खंडवा से आप हैं कन्हैया मालाकर, राधिका मालाकर। रामगंज खंडवा से आप हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल और विवेक महोबिया। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां। मुंगेली छत्तीसगढ़ से आप हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताब, मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और मोहम्मद हसनैन रजा आप हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। मेघापारा लोरमी से आप हैं मनोज कुमार साहू, कृष्ण धनंजय और गायत्री साहू। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं तिजन सिंह मरावी, देवानंद, देवलाल मरावी एवं समस्त मरावी परिवार। सैयद मोहम्मद जावेद सा गुप्ता अंजुम आप हैं टावर चौक गुमला से। डबरा पारा सौगा मगरलोड जिला धमतरी से आप हैं कोमल सेन, तोषण कुमार सेन, पिंकी और रीना सेन। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर गुरुवार और शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: लौंडीगुड़ा बस्तर से आप हैं चंदन नाग, हरीश नाग, कमल नाग, उदय नाग और पाल सिंह नाग। छिंदवाड़ा दरभा बस्तर से आप हैं रामधर कश्यप, रामधर बघेल, मोतीराम मौर्य, दुखुराम मौर्य और सोनूराम बघेल। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। हरदेव लाल वार्ड सिमगा से आप हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी और कुमाल यादव। मयंग रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा।

हरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गवणकर राही, सरिता गवणकर, सिद्धांत गवणकर, प्रिंस एकांश गवणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं शैलेश गवणकर, वैशाली गवणकर, श्वेता सुमित गवणकर, ध्वनि गवणकर परी। राजपूत कृषि फार्म ग्राम मीरतला जिला महोबा यूपी से आप हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, भूपेश सिंह, भूपेंद्र सिंह, गौरव सिंह, गुरु महाराज, जानवी राजपूत और विनीता सिंह। देवकी बिहार कॉलोनी सलारपुर सारनाथ बनारस से आप हैं बाबू यादव, सीमा यादव, अनु यादव, दुर्गेश यादव और अरुणेश यादव। ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर यूपी से आप हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। ग्राम खकल जिला रजालौन यूपी से आप हैं दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज गुर्जर और उनके समस्त परिवार। ग्राम जैसला फलोदी राजस्थान से आप हैं राजाराम जवर, बिश्नोई, नाथू कडोचा, कोडेचा और महिपाल। ग्राम टौरी जिला दतिया से आप हैं सुरेश कुमार केवट, शिशुपाल केवट, छोटू केवट, खुशी खुशबू, पायल केवट, रीति गमित और आरुषि केवट। गायत्री मोहल्ला पनवाड़ी जिला महोबा यूपी से आप हैं देवनारायण, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहिनी, पवन, अनुज, गुड्डी और अंकुश पांचाल। शिवाजीनगर बड़ाली देशमुख से आप हैं राजेश खुबड़खेड़े, शिवसागर खुबड़खेड़े और इंदिराबाई खुबड़खेड़े। खांडवी बुलढाणा से आप हैं दीपाली रामधाड़े और स्वराज रामधाड़े। थिलोरी अमरावती से आप हैं सुनैना पवन भोंडे। ग्राम फुलझर घटारानी धाम से आप हैं योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान साहू और कोकिला साहू। मोजगहन बालोद से आप हैं चिंताराम साहू, नरबदियाबाई साहू, दिनेश दुलार और उर्वशी साहू। जटपुरा पनवाड़ी महोबा से आप हैं देवीदीन अहिरवार, सुनीता अहिरवार, दिनेश कपिल और पूजा अहिरवार। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से आप हैं कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू। मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, प्रांशी पाल, निवेदिता पाल और ज्योति पाल, मानसी पाल, सुदेपा पाल और सुशीला पाल। आप हैं ग्राम पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर यूपी से। राजौनी जिला महोबा से आप हैं उदयभान पाल, दीक्षा पाल, जय हिंद पाल, प्रतीक्षा पाल और विमलेश पाल। शिव कोठी ओमकारेश्वर से आप हैं राकेश पप्पू सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, ओम सेन और पिंकी सेन। स्नेह रेडियो श्रोता संघ ग्राम मीरतला जिला महोबा यूपी से आप हैं सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, रश्मि दीपिका, सुषमा, देवांश भास्कर, नंदी, किशोर और ब्रिजनंदन। जय सिया माता रेडियो श्रोता संघ ग्राम पवई जिला हमीरपुर यूपी से आप हैं किन्ना बाबू कुशवाहा, बलराम कुशवाहा, रामरतन कुशवाहा, अभिजीत कुशवाहा, नंदिनी कुशवाहा, अंशिका कुशवाहा, शिवेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र कुशवाहा। जय मां सरस्वती रेडियो श्रोता संघ ग्राम ममना जिला महोबा से आप हैं सोहंसी राजपूत, भैया एल के राजपूत, आकाश, सोनम सिंह, प्रियांशी और एसएस राजपूत। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और साजदारानी हिना। संत गागड़े नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं अनिता गाठोड़े, रमेश चंद्र गाठोड़े और लोकेश। ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर यूपी से आप हैं रोहित सिंह यादव, बेटा यादव, पंकज यादव, अंगद यादव, आयुष यादव, आर्यन यादव और आदर्श यादव। आप सभी ने सुनना चाहे जावेद अख्तर का लिखा गीत उदित नारायण, नुसरत फतेह अली खान और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। धुन बनाई है नुसरत फतेह अली खान ने, फिल्म है और प्यार हो गया। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म क्रिमिनल का गीत। आवाज है कुमार सानू की। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है MM करीम ने। चाहत आप सबकी। नेहरू वार्ड भाटापारा से आप हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू और राघवेंद्र साहू। शहीद टेकराम चौक हाथबंद करेली से आप हैं भाई रामाधर ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार ध्रुव। पोटिया कला दुर्ग से आप हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। पुणे से आप हैं पंकज वाड़ोदे, आर्य प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। खेरड़ावाड़ी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा आरवी और बोड़खे परिवार। नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी नायक चंद मल्होत्रा आप हैं खैल बाजार पानीपत से। रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का और कुनिका सिक्का। सब्जी मंडी बुल्ढाणा से आप हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा और आयाज अनम। घंटाघर चौक खंडवा से आप हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाजा अंसारी, फातमा नाजा अंसारी, हिना परवीन अंसारी आप हैं पुराना तालाब डुमराव से। जेल रोड बक्सर से आप हैं राज अंसारी, शिल्पी राज और नेहा राज। जेल रोड मधुबनी से आप हैं गुड़िया कुमारी, नरेंद्र डोम, महेंद्र डोम और उमा डोमीन। दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जामनिया जिला गाजीपुर से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। विपिन जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल आप हैं गम्हरिया जमशेदपुर से। ग्राम बड़गांव दीघी तहसील नादुड़ा जिला बुल्ढाणा से आप हैं वासुदेव बोधवाड़े, माधुरी बोधवाड़े और आकाश कुमार बोधवाड़े। ग्राम जामधड़ा जिला कच्छ भुज से आप हैं गंगा वणकर, प्रीति, जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट और समस्त वणकर परिवार। जवाहर नगर दुर्ग से आप हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना और विपुल कांबड़े। ग्राम छिंदडीही पुजारीपारा जिला कोंडागांव से आप हैं सितुराम चक्रधारी, मंगतिन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी। कोल सिटी बरकाकाना से आप हैं अफजलताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक। बिरसिंहपुर पाली से आप हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, तेजवती सिंह, राज सिंह, अदिति सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। चितरवाड़ी अकोला से आप हैं अमोल इंगोले, अर्चना इंगोले, सर्वेश इंगोले, अधीरा इंगोले और राजवी। तुलसीराम साहू, हेमंत कुमार साहू, मुकेश कुमार साहू, आरती, ममता, गोमती, जिगर, हर्षिता साहू आप हैं महुआ खपरखेड़ा से और नोनेलाल साहू आप हैं तेंदुडावर से। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया। फागेश्वर मांडावी आप हैं ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव से। अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से आप हैं वी पूनम नायडू, डी वनीता नायडू, डी कृष्णा नायडू, डी सोमशेखर नायडू, डी रोजा देवी नायडू, डी अक्षय नायडू और डी प्रांजल नायडू। सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का यादव और नौबत यादव आप हैं ग्राम पीपल नीम चौक अल्मोड़ा केशकाल से। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से आप हैं सोपान तायड़े, बसंत राव भोजने, निर्वित्ति आडोकार और तुषार करांगले। हिंदुस्तान रेडियो श्रोता बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से आप हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनाम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। जामनिया रेलवे स्टेशन से आप हैं SP जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। बागबहरा भद्रसी से आप हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। यवतमाल विदर्भ से आप हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। महामाया चौक मेघापारा लोअरमी से आप हैं रामकुशाल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु, दिव्या
दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन से मुझे यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक को दें इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है।

0: Legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक।

0: प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24,00,000 रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
3: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
1: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
1: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
1: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के

0: फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कला

चमत्कार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: NCERT अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, मीडियम वेव पर यह सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम फिर हाजिर होंगे। FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आज शाम 5:05 पर। आज शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी हल्बी बोली में। सुदनी और साथियों के स्वर में जगार गीत आज शाम 6:35 पर। आज शाम 7 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचोगांव आज शाम 7:21 पर। आज रात 8 बजे कार्यक्रम घलर में सुनिएगा भद्रू कश्यप और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। बच्चों का कार्यक्रम पिलमन का जयगोठ आज रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी बंशी राम कश्यप की। आज रात 9:15 पर कार्यक्रम नंजर में सुनिएगा तुकेश्वर प्रसाद खूंटे से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। कार्यक्रम खेल पत्रिका में आज रात 9:30 पर मैराथन खिलाड़ी कुसुम शार्दुल से भरत गंगादित्य की भेंट वार्ता। आज रात 10 बजे होगा फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोक रस। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की, संयोजक चंद्र ऋषि ठाकुर। यह थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 9:30 पर साहित्य भारती

0: हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह कल सुबह 8:30 पर और कार्यक्रम बातों बातों में कल सुबह 9 बजे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर सुनिएगा चिंतन। आलेख और स्वर होगा शैम्यूल खान का। श्री रामचरितमानस का गायन सुबह 6:25 पर। स्वर होगा शोभा जोशी का। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कल सुबह 6:35 पर और कल दोपहर 1:05 पर कृषि शामी की बेड़ा खड़ा चो गोठ। कार्यक्रम हुलोली में सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे रना कासन पाड़। वादक कलाकार होंगे धर्मु और साथी। कल सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे काव्य सरिता में अलका पांडे का कविता पाठ और साथ होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। फिल्म संगीत कल सुबह 9:15 पर। कल सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म होगी काला पत्थर। कार्यक्रम आज चौसागा में कल सुबह 10 बजे पद्मश्री पंडीराम मंडावी से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। कल सुबह 10:30 पर कार्यक्रम गुड़दुम में सुनिएगा रामकिशोर नाग और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कार्यक्रम एक ही कलाकार कल सुबह 11 बजे। कल सुबह 11:30 पर कार्यक्रम गुलशन में आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत और गजलें। फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस कल दोपहर 12 बजे। कल दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान कल दोपहर 2:30 पर। प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की। कल शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हिंदी भाषा में। कल शाम 6:35 पर मधुराम और साथियों के स्वर में हल्बी भजन गीत। कार्यक्रम बस्तर के स्वर कल शाम 7 बजे। कल शाम 7:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी। कार्यक्रम जोनी उजर में कल रात 8 बजे आप सुनेंगे दिलीप कुमार पांडे और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। कल रात 8:30 पर बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजे गोठ। प्रस्तुति होगी मिनेश कुमार पानीग्राही की। कार्यक्रम आमचोरान आमचो जीवना में कल रात 9:15 पर फूल सिंह नाग से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। कल रात 10 बजे लोकवाद धुन के कार्यक्रम पाड़ में सुनिएगा डुमा देव पाड़ और डोकरा देव पाड़। वादक कलाकार होंगे पाकलू और साथी। यह थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: केंजनोड़ी समसामयिक विषय तक आधारित कार्यक्रम तसंगे नन्ना रमेश कुमार फुड़ियामी केंजनोड़ी नेन मनवा इत कार्यक्रम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान तक केंद्रित मिंदे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान तीन अत्तद 9 जून ते 10 वर्ष पूरा अत्ता 9 जून 2016 तीन शुरू अत्तद ईद अभियान केंद्र सरकार ता अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना मिंदे। इदिन तहत कोंडे लेंजना 9 तारीख ते सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र ने गर्भवती पुट्टते मंदना मुत्तेना निःशुल्क जाँच कीता। छत्तीसगढ़ ता भौगोलिक परिस्थिति दूसर और राज्य तिना अलग मिंदे। बस्तर बीजापुर सुकमा नारायणपुर और कांकेर जिला ता बिड़िया डेड़ा मेट्टा गुप्पा ते गिरे मिंदे। नकाय नार्क इले बेग्गा मुसुड़ते एवदनात कठिन आता। नकाय वर्षा एवना इव डेड़ा ना स्वास्थ्य सेवा एविकेले प्रशासन तले नकाय बिड़िया चुनौती मत्ता। इदिन ध्यान ते वाटसो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ता शुरुआत किता। 10 वर्षा मुन्ने शुरुआत ता इद अभियान ते छत्तीसगढ़ ता घना जंगल और दुर्गम मिट्टा ते मंदनाव मुत्तेनालय स्वास्थ्य सेवा किन पूर्ण पहचानिता। राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संयुक्त रूप बिना रणनीति तैयार किस। 8 बजार ते मोबाइल मेडिकल यूनिट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ते विशेषज्ञ चिकित्सक ना सेवा यमंता। नेड स्थिति इत की बेवडेड़ ने बेचुड स्वास्थ्य सुविधा ता पहुँच सीमित आसमत्ता। अग्गा गर्भवती मुत्तेना नियमित पंजीकरण जांच और फॉलोअप पैतामंता। ईद अभियान तहत आशा कार्यकर्ता नारनार अंज गर्भवती मुत्तेना पंजीकरण किस अविना नियमित जांच तलाय प्रेरित किए मुंता। जरूरत पड़े मत के स्वास्थ्य संस्थान एवना एवदनक सहायता कीता। संगे ई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण संबंधी निगरानी कीता। इतके ANM टीकाकरण प्राथमिक जांच और जरूरी दवाई ना उपलब्धता सुनिश्चित कीता। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ते काम के मुंतोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मुन्ने स्तर तक जोखिम ना पहचान किस विशेषज्ञ चिकित्सक तिना समन्वय स्थापित की तोड़। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ना मानेम आयनत की गंभीर प्रसूति जटिलता ना पहचान अतके अविकिन समय मंजो नियंत्रित किया ना आता। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ता सबले महत्वपूर्ण पहलू उच्च जोखिम ता गर्भावस्था ना पहचान कियनद। इदिना तहत गंभीर एनीमिया उच्च रक्तचाप गर्भकालीन मधुमेह पूर्ण प्रसव संबंधी जटिल कम उम्र इलोक दिव्य उम्र ते गर्भधारण और जुड़वा गर्भ तासुंता स्थिति किन चिन्हांकित किता। छत्तीसगढ़ ते ईद अभियान तहत बढ़िया संख्या ते उच्च जोखिम ताव गर्भवती मुत्ते ना पहचान किता। ये मामला ना चिन्हांकन तापेर के अविकिन उच्च स्तरीय संस्थान तिना जोड़ा किता। इतके प्रसवता समय वातावरण प्रकार ता तिप्पल फुटमकी। अत्तव उचुक वर्षा ने डिजिटल तकनीकी ते मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम ते पूर्ण गति इत्ता। PMSMA पोर्टल ता माध्यम तिना गर्भवती मुत्तेना पेदड़ आधारित ट्रैकिंग कीता। बदायवेंट स्वास्थ्य केंद्र ते जांच ता पेर के जानकारी तत्काल ऑनलाइन दर्ज कीता। यदि बदाय मुत्तेना उच्च जोखिम श्रेणी ते तास के ताना जानकारी संबंधित चिकित्सक इकाई एवना एवदिता। प्रसवता संबंधित दिनांक चिकित्सक स्थिति और जरूरी सुविधा न जानकारी मत के आपातकालीन परिस्थिति के नला प्रबंधन संभव आता। छत्तीसगढ़ ते डिजिटल निगरानी प्रणाली स्वास्थ्य सेवा किन दिव्य जवाबदेह और प्रभावी पड़ता। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ता 10 वर्षा पूरा आयना उपलक्ष्य ते 9 जून ते राष्ट्रव्यापी समारोह ता शुरुआत कित्तोर। इद अवसर तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ते जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधि आयोजित किए मुंता। इदिन तहत गर्भवती मुत्ते और अविन परिवार की निःशुल्क सेवा न लाभम पोतले प्रोत्साहित किए मुंता। केंद्रीय मंत्री कत्तूर की दूरस्थ डेढ़ा एवना निर्बाध स्वास्थ्य सेवा एविकेना विशेषज्ञ चिकित्सक लोरा उपलब्धता प्रसिकेना प्रसव ते पेर के देखभाल तीन और मजबूत पाड़ना और शहरी गरीब बस्ती एवना सेवाना पहुंच सुनिश्चित केना केंद्र सरकार ता प्राथमिकता मिंदे। श्री नड्डा कत्तूर की ड्रोन आधारित आपूर्ति प्रणाली टेलीमेडिसिन डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और प्रशिक्षित मिडवाइपरी सेवाना विस्तार वायना वर्षा ने मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम किन और मजबूत पाड़ा परना आता। और कत्तूर की गर्भवती मुत्ते और नवजात शिशु बेदेवन समाज ता सबले महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मनता। बचुट ओंड आयो सुरक्षित मत के चौजे ओंड जीवना बचेम अयो इतके पूरा परिवार समाज और भविष्यता सुरक्षा निश्चित आता।
0: आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवावाणी हल्बी बोली में।

0: जुहार।
1: आले कसन से मलबती, तुई कसन आसी?
0: मैं तू नंगत आसे किरण, तुई सांग तुई कसन आसी?
1: मैं बोले तू नंगत आसे काय?
0: ये किरण,
1: हाँ,
0: तुम चो बाटे कितरो पानी ले हेरा धुका आयरी?
1: काय सांगू आसे मलबती, आम चो बाटे तो असन पानी ले हेरा धुका इली कि आम चो गांव चो जंगल ने आधा रुक राई मन टूटून जेडी, आरु घर कुड़िया बले तहस नहस होली।
0: हाय ची ने किरण, आमचो बाटे बोले पानी लेहरा दुका तू। हाय ची किरण, मानतर इतरो प्रकार नो है जितरो तुई सांगसीस, आमचो बाटे किंडी कम है।
1: हाँ, आमचो बाटे पखना एरिया है तो आदो लोग धान धानी बुनुक बले मुरिया उरला, आदो लोग मंचो धान अखरुक बले मुरिया उरली, आरु आदो लोग मंचो ये पानी लेहरा चो लागुन थे बुंजेली से।
0: हाँ किरण, आम चो बाटी बली धान बुन तो लोग बुन ला जानू, आदो लोग मन रोपा लगा तो कहे छान ला से बल जानी।
1: हाँ असनी ची आए काई सपाई बाटी।
0: हाँ किरण, किरण आम चो घोट भात तो घोटी आलू ने के भी नी सरे ने।
1: हाँ।
0: तो आम चो संगवारी मन के इन्फ्लुएंसर संस्कृत चो युवा मन ने असर ए चो बारे ने किंडी सांगुन दक।
1: हाँ से मलबती, तु नंगत बल्लीस इन्फ्लुएंसर संस्कृति चो युवा मन के गहरा असर और बहुआयामी असर पड़े से, जैसन कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक जैसन प्लेटफॉर्म मंचो माध्यम ले आप लो व्यवहार उपभोक्ता और आत्म छवि चो आकार देशोत, ये चोले आम चो युवा संस्कृति और पहचान के प्रभावित करे से।
0: हाँ किरण, तुई नगत गोट भल्लीस इन्फ्लुएंसर संस्कृत के धकुआ तो एवे चो युवा मन के खूबे प्रभावित करे से, युवा मन के अच्छा प्रभाव वाले पड़े से और बुरा प्रभाव वाले पड़े से, कसन किरण?
1: हाँ काय, तुई तो नंगत बल्लीस युवा मन के प्रभाव तो पड़े से, जसन की व्यवहार ने बदलाव, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चो व्यवहार बौद्धिक दृष्टिकोण और सामाजिक नैतिक पहलू के महत्वपूर्ण रूप ले प्रभावित पड़े से।
0: राजनीतिक अभिव्यक्ति चो हसर दखवा तो लोकप्रिय संस्कृत ले प्रेरित ओन भांति इन्फ्लुएंसर युवा मन चो बीच राजनीतिक संवाद और सामूहिक अभिव्यक्ति के आकार बले देशोत ने।
1: हाँ, और उसने उपभोक्तावाद चो दखुआ तो उनचो असर तो इन्फ्लुएंसर उत्पाद चो बढ़ावा दे उन भांति युवा मन के खरीदारी चो आदत ने सीधा प्रभाव पड़े से।
0: हाँ, और मानसिक स्वास्थ्य ने बले तो असर पड़े से, जैसन की केवे केवे आमी दखुआ की खूबे मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर चो प्रभाव ने केवे केवे आम चो मन ने निराशा चो भावना बले फायदा हुए से, जे चोले आम की मानसिक तनाव चो सामना करू पड़े से।
1: हाँ से मलबती, तु नंगत गोट के बल्लीस एके दखुआ तो ए चो सकारात्मक पहलू बले आसे और नकारात्मक पहलू बले आसे ने।
0: हाँ काय, सकारात्मक पहलू युवा मन के प्रेरित बले करे से और शिक्षा मनोरंजन चो नुआ माध्यम बले प्रदान करे से।
1: हाँ काय, और नकारात्मक पहलू अधिक प्रभाव युवा मन के असंतोष पैदा करे से और केबे केबे गलत विचारधारा के बले बढ़ावा दे सके और अवास्तविक जीवन शैली के बले बढ़ावा दे सके।
0: हाउ किरण, नंगत गोट की सांगलिस तो संगवारी मन सोशल मीडिया चो जमाना है तो आम के तय करतु आए कि आम चो जीवना ने काय चो असर ओक देतो राय और काय चो असर ओक नी देतो राय।
1: हाउ नंगत बल्लीस तुई से मलबती, मानतर तुचो मोंडरा ने तो खूबे जमक दखा दे से, आले तुचो मोंडरा के ढीलून दक काय काय आनली जाले दक दक मा।
0: हाँ काय, मोच मोंडरा ने आमचो रेडियो संगवारी मन का जे खूबे जमुक धरू नीलू से।
1: हाँ, हुन तो तुचो मोंडरा के दखुन भाती लागे से कि तुई खूबे जमक आनली सीस, मानतर सांग तो आमचो संगवारी मन का जे काय काय आनली सीस।
0: संगवारी मन, आज तुम जो गाज आनलू से शीर्षक गीत वार्ता, एचे संगे संगे आनलू से ज्ञान ध्यान चो गोट किरण, आले मुर करूं ते भी शीर्षक गीत बाटे ने।
1: हाँ, हाँ।
0: और आज संगवारी मन आज चो शीर्षक आए साम,
1: आज चो शीर्षक गीत चो पहली गीत आए फिल्म कटी पतंगले, ए था स्वर दिलाशे किशोर कुमार, गीतकारा तानंद बक्षी, संगीतकारा तार डी बर्मन, तो या सुनू दकू ये गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन

0: घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: संगवारी मन, एबे तुम्हें सुनते रहलास फिल्म कटी पतंग ले। ए फिल्म भावनात्मक और परिवार जो प्रेम कहानी जो बनलो फिल्म है, ये ता राजेश खन्ना और हासा पारेख ने मुख्य भूमिका निभाऊ रला। किरण, हाले और तु बल गीत आनलीसिस का आल सुनाऊ द?
3: हाँ, आनलेसे का है तो संगवारी मन, आले असनी गोटक फिर गीत सुनो। फिल्म सुरले, ए था अश्वर दिलासे महालक्ष्मी, संगीतकारात MM करीम और गीतकारात निदा फजली। तो आले या सुनो ये गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: किरण, सांझ बेरा ऐसी पुराना गीत मन सुन लो ने, कितरो अच्छा लागे सी ने।
4: हाँ का ये फिल्म संगीत प्रधान चो आए ये था, संगीत संघर्ष सफलता और प्रभावशाली चो सुंदर ढंग ले प्रस्तुत करू रला। कसन लागली तू के गीत?
3: अच्छा तो लागली किरण ने, तू की दखते रहे काय, तू जुमरती रही इस कसन री।
4: हाँ काय, गीत के सुनन सुनन एकदम मन के अच्छा लागते रहे। हाँ
3: आली ने अगला कार्यक्रम बढ़ू संगवारी मन शीर्षक गीत के डंडिक दे बहु और सुनु ये वार्ता। ये वार्ता के सांगसूत हर्ष कोष्टा, ये जो विषय आए स्थानीय संस्कृत और कला संरक्षण में युवाओं की भूमिका, तो या सुनू ये वार्ता।
5: नमस्कार साथियों, मैं हूँ हर्ष कोष्टा और आज आकाशवाणी के इस मंच से मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो हमारे अस्तित्व और हमारी पहचान से जुड़ी है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी पहचान क्या है? क्या वह सिर्फ हमारा नाम है? नहीं, हमारी असली पहचान है हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी परंपराएं। आज का हमारा विषय है स्थानीय संस्कृति, कला और परंपराओं के संरक्षण में युवाओं की भूमिका। संगवारी हो, अक्सर कहा जाता है कि संस्कृति किसी समाज का हृदय होती है और युवा उसकी धड़कन। आज जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है तो सवाल उठता है कि क्या हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं या फिर हम उन्हें नए तरीके से सजा रहे हैं। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे पास विरासत का अनमोल खजाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि हरेली के दिन हम केड़ी क्यों चढ़ते हैं? यह केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और खेती किसानी के प्रति सम्मान है। आज के युवाओं को चाहिए कि वे इस इको फ्रेंडली त्योहार के संदेश को दुनिया तक पहुंचाएं। और बात जब बस्तर दशहरा की हो तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। 75 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव दुनिया का सबसे लंबा त्योहार है। सोचिए, जहां पूरी दुनिया में दशहरा रावण दहन के लिए जाना जाता है, वहीं हमारे बस्तर में यह प्रकृति और दंतेश्वरी माई की आराधना का पर्व है। क्या हमारे युवा साथी इस अद्भुत परंपरा को सोशल मीडिया और ब्लॉग्स के जरिए विश्व पटल पर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। चाहे वह बस्तर की विश्व प्रसिद्ध डोकरा आर्ट हो, जिसे अंग्रेजी में बेल मेटल भी कहा जाता है, या कोंडागांव की काष्ठ कला, जिसे अंग्रेजी में वुडक्राफ्ट भी कहा जाता है। हमारी हर कला में पुरखों का अनुभव झलकता है। क्या हम अपनी गोंदना कला को आज के टैटू कल्चर के साथ नहीं जोड़ सकते? आज के युवा उद्यमियों को चाहिए कि वे हमारी पारंपरिक मिट्टी शिल्प, जिसे अंग्रेजी में टेराकोटा भी कहा जाता है, को आधुनिक घरों की सजावट का हिस्सा बनाए। जब हमारी कला से घर चलेगा और रोजगार बढ़ेगा तो वह कला कभी लुप्त नहीं होगी। यही तो है वोकल फॉर लोकल का असली मतलब। आज का युवा तकनीक का मास्टर है। जब कोई युवा पंडवानी की वीर गाथा को यूट्यूब पर गाता है तो तीजनबाई दीदी का वह संघर्ष नई पीढ़ी की रगों में दौड़ता है। जब इंस्टाग्राम पर पंथी की ऊर्जा, कर्मा की लय या राउत नचा की मस्ती वाली रील चलती है तो दुनिया देखती रह जाती है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्या है? हमारे ददरिया के गीतों को

0: शिक्षण की पहली सीढ़ी है। अपने घर के बुजुर्गों से हमारे तीज त्योहारों के पीछे की कहानियां सुने और उन्हें सहजें। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जो पौधा अपनी जड़ों से कट जाता है वह जल्द ही सूख जाता है। हमें अपनी जड़ों को सींचना है ताकि छत्तीसगढ़ की कला का यह बरगद पूरी दुनिया को अपनी छाया दे सके। पुरानी जड़ें और युवाओं की नई सोच, जब ये दोनों मिलेंगे तभी गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। आइए हम सब मिलकर अपनी इस माटी की खुशबू को सात समंदर पार तक फैलाएं। धन्यवाद। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़।
1: संगवारी मन, एबे तुम्ही सुनते रहलास वार्ता और ई वार्ता के सांगते रहला अर्स कोष्टा किरण कितरो अच्छा परंपरा बारे में सांगते रहला ने।
2: हाँ।
1: और जानिस पहले चो रीति रिवाज कितरो अच्छा रहे ने।
2: हाँ, okay.
1: उन चो बारे में कितरो अच्छा ले सांगला।
2: हाँ।
1: ने ये सब के भुलकते जासुत ने पहले चो परंपरा मन के लिए मानतर असन नहीं करते रहे ने।
2: हाँ। तो संगवारी मन, आले फिर मुर करूं गीत गोविंद बाटे और सुनो फिर गोटो गीत फिल्म मैंने प्यार के आले। इथा स्वर दिला से लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम और संगीतकारात राम लक्ष्मण और गीतकारात देव कोहल। तो आले या सुनो ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: संगवारी मन, एबे तुम्हें सुनते रहलास फिल्म मैंने प्यार किया ले। ये गोटो लोकप्रिय प्रेम कहानी चो बनलो फिल्म आय। इता दोस्त, प्यार, विश्वास और परिवार चो गोटो सुंदर फिल्म रली। कसन किरण किरण गीत मन के डंडिक थे बाओ ने
5: हाँ।
4: और राम चो संगवारी मन का जे ध्यान ध्यान चो गोट बले आन लो से बोलते पहल मुर ने सांगते रहलो। कसन
5: तो संगवारी मन, आज चो पहली ज्ञान चो गोट आए कि आम चो छत्तीसगढ़ ने कुल 5 संभाग आसे और कुल 33 जिला आसे और आम चो बस्तर संभाग ने 7 जिला आसे। कसन से मलवती
4: हाँ किरण गोट तो नंगत बलसीस असनी आम चो छत्तीसगढ़ चो पहल राज्यपाल बल्लो ने प्रथम राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय जी रला और ये चो एवेचो समयानी बल्लो ने वर्तमान ने राज्यपाल आत श्री रामेन डेका जी आत
5: हाउ काय और असनी आमचो छत्तीसगढ़ चो प्रथम महिला सांसद रला मिनी माता जी रला
4: हाउ और तुई जानिस किरण आमचो बस्तर चो गांधी मनकुराम सोड़ी जी के बलसोत और छत्तीसगढ़ चो गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बलसोत ने
5: हाउ काय और असनी आम चो छत्तीसगढ़ चो भगत सिंह बले बलुआत को के बलुआत जानेस परशराम सोनी जी के बलुआत और छत्तीसगढ़ चो रानी लक्ष्मीबाई बले बलुआत को के बलुआत
4: राधा भाई की ने
5: हाँ।
4: तो किरण ये तो रली आजी चो ज्ञान ध्यान चो गोट ने
5: हाँ।
4: आले फेर मुर करूं आजी चो शीर्षक गीत बाटे
5: हाँ। तो संगवारी मन आले फेर सुनू गोटो गीत फिल्म हम जोली ले यथा स्वर दिला से मोहम्मद रफी आशा भोसले और संगीतकारात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकारात आनंद बख्शी। तो आलिया सुनू ये गीत के

0: किरण कसन रही गाना सुनून सुनून तु बल चलमल चलमल होते रहीस
1: काय के संगवा से तो गाना ही असन रहे कि सुनून सुनून एकदम मटकुक बल भाव होते रहे
0: असन नहीं हो काय तु बल कौन सी लगे
1: तु तो गाना ची उसने सुनाई से सेमलवती काय के उसन हो खो नु है
0: आले सत्य ची आई ने
1: हाँ आले उसने फिर गोटो गीत सुनु ने
0: हाँ आले सुना
1: आले ए फिल्म आए साथिया और था स्वरदिला से साधना सरगम और गीतकार आत गुलजार संगीतकार आत ए आर रहमान आले फिर सुनुंदकु ये गीत के

आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक

0: कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing.
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप छत्तीसगढ़ी और संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आने आने क्षेत्र के कंपनी मन प्रदेश में 9,000 करोड़ रूपया ले ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दिन। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज प्रदेश के 2 दिन के दौरा में राजधानी पहुंचे। प्रदेश के जम्मू सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के छुट्टी के बाद 16 जून के खुली। और कांकेर जिला में गाज गिरे ले 3 मनखे मन के मौत, उन्हें 5 जिन दूसर महिला झुलस गिन। अब समाचार विस्तार ले। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आने आने क्षेत्र के 7 प्रमुख कंपनी मन प्रदेश में 9,580 करोड़ रूपया के निवेश प्रस्ताव दिन है। इखरले 7,800 ले ज्यादा के रोजगार सृजित हुए के संभावना है। ए मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतायन के नवा औद्योगिक नीति लागू हुए के बाद दिल्ली मुंबई बेंगलुरु के संगरा जापान और दक्षिण कोरिया में रखे गए इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम ले राज्य ल 8,00,000 करोड़ ले ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले है। राज्य सरकार ए प्रस्ताव मल्ला धरातल में उतारे बर तेजी ले काम करत है। मुख्यमंत्री है कहिन के छत्तीसगढ़ आज निवेश बर देश के सबले बेहतर राज्य मल्ले एक बन के उभरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन है कि सरकार है पाछू 12 बछर में महिला मल्ला राष्ट्र निर्माण और उमन के पूरा क्षमता के एहसास कराए बर अनुकूल वातावरण तैयार करे है। प्रधानमंत्री है कहिन कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता ला लेके शिक्षा हेल्थ केयर साफ सफाई आवास खेल विज्ञान और गवर्नेंस तक महिला मन आने आने क्षेत्र में अहम भूमिका निभावत है। एक ठिन सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है कहिन कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरत क्षेत्र में महिला मन के बढ़त भागीदारी ले अवसर के नवा रास्ता खुलत है और पूरा देश के विकास परिदृश्य बदलत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज छत्तीसगढ़ के 2 दिन के प्रवास में रायपुर पहुंचे। श्री सिंह आज मझनिया रायपुर के एक निजी अस्पताल में आयोजित विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुईं। इखर बाद ओमन मोदी सरकार के 12 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में राजधानी में रखे गए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुईं। श्री सिंह आज संझा राजधानी में हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य संग्रह क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारी मन संग बैठका घलो करी। उन्हें अपन प्रवास के दूसरिया दिन काली देहरादून के राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुई। केंद्र सरकार है खुदरा पेट्रोल पंप ले संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहक मन के ईंधन खरीदे ऊपर रोक लगा दी है। सरकार है कहे है कि एमल्ला अपन जरूरत के पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्र ले ही लेना होगी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हकीन है कि डिजिटल भू अभिलेख के सुरक्षा पर कड़ा इंतजाम करे जाही। कल रायपुर में एक ठिन उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ओमन कहिन कि गड़बड़ी रोके बर EHRMS पोर्टल बनाए जाही। राजस्व मंत्री है आने आने जिला में 3 साल या ओखले ज्यादा बेरा ले एक जगह में पदस्थ तहसीलदार नायब तहसीलदार अधीक्षक सहायक अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक के सूची मंगाए है। एकरे संग एके हल्का में 3 साल ले ज्यादा बेरा ले जमे पटवारी मन के घलो पूरा ब्योरा तैयार करे के निर्देश दे गए है। उमन अधिकारी मन ले नगरीय क्षेत्र में पात्र हितग्राही मन ला पट्टा वितरण करे के जम्मो जरूरी सर्वे काम अवैया 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप ले पूरा करे के निर्देश दिन है। प्रदेश के जम्मू सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के छुट्टी के बाद 16 जून के खुली। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक मल्ला आदेश जारी कर दे है। आदेश में विभाग सबो स्कूल मल्ला पहली ही दिन ले समय सारिणी के अनुसार पढ़ाई लिखाई के काम शुरू करे बर कहे है। बता दें कि राज्य सरकार है भयंकर गर्मी ला देखत 15 अप्रैल ले 16 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करे रहिस। सुनैया मल्ला बता दें कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधरी मोदी सरकार के 12 बछर पूरा होए ऊपर केंद्रित रही। एक तहत छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 13 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो माचे समाचार कोती। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय हा बछर 2025 भर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार मन के घोषणा कर दे है। ये सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 जिन कलाकार के चयन करे गए है। इमा लोक कलाकार और रंगकर्मी संग्रह पद्मश्री सम्मान ले सम्मानित हो चुके डॉक्टर अनूप रंजन पांडे घलो शामिल हैं, जे मल्ला ए साल के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दे गए है। डॉक्टर अनूप रंजन पांडे के अलावा कत्थक नृत्य के वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेठला संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे ला उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार पर चुने गए है। कांकेर जिला के कलगांव में गाज गिरे ले 3 मनखे मन के मौत हो गए है। उन्हें 5 जिन दूसर महिला झुलस गिन। बताया जाते है कि कलगांव में मनरेगा के तहत तालाब घरीकरण के काम चलत रही, जेमा करीबन 60-70 मजदूर काम करत रही। आज बिहानिया बारिश शुरू हुए मां कुछ एक मजदूर रुख के नीचे खड़े हो गिन। इसी दौरान अचानक गाज गिर गए। यह हादसा मां कलगांव के उप सरपंच समेत 3 जन पुरुष के मौकाचमा मौत हो गए है। वहां 5 महिला गंभीर रूप ले झुलस गिन, जे मल्ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़ में भर्ती कराए गए है। इमाले एक महिला के हालत गंभीर बताए जाते, जिला बेहतर उपचार पर कांकेर जिला अस्पताल में रेफर करेगे है। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी लग घायल मन के बेहतर उपचार के निर्देश दिन है। बलरामपुर जिला में पुलिस करीबन 10 करोड़ रुपया के गांजा बरामद करे है। ये मामला में पुलिस उत्तर प्रदेश के रहवासी 2 जिन तस्कर मनला गिरफ्तार करे है। पुलिस बताया है कि गांजा एक दिन ट्रक में भर के ओडिशा के सोनपुर ले उत्तर प्रदेश ले जाया जात रही। मुखबिर मिले सूचना के आधार में पुलिस आज बिहानिया नाकाबंदी करके ट्रक ल रोकीस और जांच करीस। ए दौरान बोरीमन में भरे करीबन 1941 किलो ले ज्यादा के गांजा बरामद करेगीस। किर्गिस्तान में रखे गए एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमत झा रजत पदक जीते है। उमन PIUH 85 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी ला हरा के ए उपलब्धि हासिल करे है। श्रीमंत अपन पदक देश के वीर शहीद जवान मल्ला समर्पित करीन है। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में आज ले 36वां राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग केनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गए है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग केनोइंग एसोसिएशन डहार ले भारतीय कायाकिंग केनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होवैया 3 दिन के ए प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेवत हैं। छत्तीसगढ़ में शराब के ओवर ट्रेडिंग के शिकायत में आबकारी विभाग बड़का कार्रवाई करे है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल कोतिले आने आने जिला के शराब दुकान में करे गए औचक निरीक्षण के दौरान निर्धारित दर ले ज्यादा कीमत में शराब बेचे के मामला आगू आए के बाद आबकारी आयुक्त PS अलमाहा 4 जिन आबकारी उप निरीक्षक ल निलंबित कर दिन है। उन्हें 8 जिन अधिकारी मनला कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगे गए है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 21 जून के होवैया नीट UG पुनर्परीक्षा के अवधि में 15 मिनट के अतिरिक्त समय जोड़े के फैसला करे है। अबले अभ्यर्थी मल्ला परीक्षा पूरा करे बर कुल 195 मिनट मिल ही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घौं फेर। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आने आने क्षेत्र के कंपनी मन प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दिन। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज प्रदेश के 2 दिन के दौरा में राजधानी पहुंचिन। प्रदेश के जम्मू सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के छुट्टी के बाद 16 जून के खुली और कांकेर जिला में गाज गिरे ले 3 मनखे मन के मौत, उन्हें 5 जिन दूसर महिला झुलस गिन। एक रेसंग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिरावत थे। जय जोहार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को है। संस्कृत समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
3: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्णक्षमतायाः साक्षात्काराय गतद्वादशवर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितमिति। गृहमन्त्री अमितशाहः नवदेहल्यां श्री अमरनाथयात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीय प्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोल पंप इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबन्धितम्। संयुक्तराष्ट्रसंघः ओमान देशस्य तटे तैल नौकास्थानां भारतीय नाविकानाम् उपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत्। भारतीयस्य दिग्गज लक्ष्य भेदन स्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 51 वयसि मृत्युः अभवत्। अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरोंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां केनडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अवदत् यत् वित्तीय समावेशे उद्यमशीलता इत्यतः आरभ्य शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, स्वच्छता, गृहनिर्माण, क्रीडा विज्ञानम्, प्रशासनञ्च यावत् विविधेषु क्षेत्रेषु महिलाः प्रमुखां भूमिकां निर्वहन्त्यः सन्ति। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् ड्रोन तन्त्रज्ञानमित्यादिषु उदयोन्मुख क्षेत्रेषु महिलानां वर्धमान सहभागित्वेन अवसरस्य नूतनाः मार्गाः उद्घाट्यन्ते। सम्पूर्णे देशे च विकास परिदृश्यं परिवर्तते। तत्पूर्वम् एकस्मिन् कार्यक्रमे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् गत द्वादश वर्षेषु एनडीए इत्यस्य सर्वकारः महिलानां नेतृत्वे विकास कार्यम् अकरोत्। एतच्च अन्येषु क्षेत्रेष्वपि दृश्यते।
4: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
5: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
4: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
5: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतदपि अवदत् यत् सर्वकारः याः महिलाः आर्थिकरूपेण स्वतन्त्राः भवितुं दीर्घकालं यावत् प्रयतन्त्यः आसन् ताः स्वसहायता समूहान् सक्रियतया समर्थयन्तीति। प्रधानमन्त्री इतोपि अधोरेखितवान् यत् सर्वकारस्य प्रयत्नाः मर्यादायाम्, अवसरेषु, सशक्तिकरणे च निहिताः सन्तीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जून मासस्य 14 फ्रांस देशस्य नीस नगरं गमिष्यति। तदैव फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः द्वयोः राष्ट्रयोः यूरोपीय यात्रायाः प्रथमः चरणः भविष्यति। अस्मिन् वर्षे फरवरी मासे द्वयोः राष्ट्रयोः सम्बन्धः विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्व रूपेण वर्धितस्यानन्तरं राष्ट्रपतिना इम्मैन्युअल मैक्रों इत्यनेन सह एतत् तस्य प्रथमं द्वैपाक्षिकं शिखर सम्मेलनं भविष्यति। अतः अस्याः यात्रायाः विशेषं महत्वं वर्तते। एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं फ्रांस देशं प्रत्यागमनात् प्राक् नीस नगरात् श्रीमोदी स्लोवाकिया देशं गमिष्यति, यत्र भारतं दक्षिण विश्वेत्यस्य प्रमुखस्वर रूपेण भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवदेहल्यां श्री अमरनाथ यात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीय सभायाः अध्यक्षता कृता। अस्यां सभायां सेनाध्यक्षः उपेन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजित डोभालः, जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी अथ एसएसबी इत्यस्य महानिदेशकाः अपि उपस्थिताः आसन् अमरनाथ यात्रा जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्य अगस्त मासस्य अष्टाविंशति दिनांक पर्यन्तं भविष्यति प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति सर्वकारेण संस्थागत औद्योगिक वाणिज्यिक ग्राहकेभ्यः खुदरेति विक्रय केन्द्रेभ्यः मोटर स्पिरिट इत्याख्यम् उच्चगति डीजल इत्यस्य क्रयणं प्रतिबन्धितमस्ति सहैव हि तेभ्यः स्वकीय उपभोक्तृ पम्पाख्येभ्यः विक्रय केन्द्रेभ्यः स्वकीय आवश्यकतां प्राप्तुम् आदिष्टमस्ति पश्चिम एशिया देशे वर्तमान संकटम् अभिलक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलासु मध्य व्यवधाने स्थानीय अभावान् निवारयितुम् अयम् निर्णयः कृतोऽस्ति एकस्याम् अधिसूचनायाम् पेट्रोलियम् प्राकृतिक गैस इति मन्त्रालयः अवदत् यत् 90 दिवसपर्यन्तम् एते प्रतिबन्धाः प्रवर्तन्ते इति विदेश मन्त्रालयेन संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य जॉर्ज डी अफेयर्स जेसन मिंक्स इत्यमुम् आहूय ओमान तटे वाणिज्यिक नौकायाम् आक्रमणस्य विरोधः प्रकटितः ह्यः 20 भारतीय कर्मचारिभिः सह एकस्याम् अन्यस्याम् नौकायाम् आक्रमणम् अभवत् अमेरिकी राजदूतः नवदिल्ल्यां विदेश मन्त्रालयस्य अपर सचिवेन आहूतः अयम् द्वितीयः अवसरः अस्ति यदा अमेरिका देशस्य राजदूतः मन्त्रालयेन आहूतः प्रारम्भे लुप्ताः इति सूचिताः त्रयः भारतीय नाविकाः एकस्मिन् आक्रमणे मृताः इति पुष्टीकृतमस्ति राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य द्विदिवसीय यात्रायां देहरादून नगरं सम्प्राप्तवती उत्तराखण्डस्य राज्यपालेन सेवानिवृत्तेन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इत्यनेन मुख्यमन्त्रिणा पुष्कर सिंह धामिना सह तस्याः स्वागतं विहितम् निर्धारित कार्यक्रमानुसारं राष्ट्रपतिः अद्य देहरादून नगरस्य राष्ट्रपति निकेतनं गत्वा 32 एकड़ परिमितेषु क्षेत्रेषु विकसितस्य राष्ट्रपति उद्यानस्य साम्प्रतिक निर्माण विकासयोः कार्याणाम् अवलोकनं करिष्यति भारत ऋतु विज्ञान विभागः अवदत् यत् श्वः यावत् वायव्य भारते आर्द्र ऋतुः अनुवर्तते यत्र प्रजंड वातेन शिलावृष्ट्या च सह मेघावृष्टेः संभावना विद्यते ऋतु विज्ञान विभागानुसारं अग्रिमद्वयोः त्रिषु वा दिवसेषु कर्णाटक तेलंगाना आन्ध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु नैऋत्य प्रावृतः अग्रे गमनीया परिस्थितिः अनुकूला अस्ति इति अनुमितमस्ति अन्ते शोकास्पदम् एका वार्ता प्रसिद्धः भारतीयः लक्ष्यभेदनस्पर्धा प्रशिक्षकः क्रीडकश्च पूर्व एशियन गेम्स स्वर्णपदक विजेता जसपाल राणा दिवंगतः सः 51 आसीत् भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघस्य अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देवस्य अनुसारं श्रीराणा गतरात्रौ दिल्ल्याः चिकित्सालये अन्तिमं श्वासम् अगृह्णात् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यादयः नेतारः जसपाल राणा वर्यस्य निधने शोकं प्रकटितवन्तः अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां कनाडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति अन्ते मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्णक्षमतायाः साक्षात्काराय गत 12 सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितम् गृहमन्त्री अमितशाहः नवदेहलीनगरे श्री अमरनाथयात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत् केन्द्रीयप्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोलपम्प इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबन्धितम् संयुक्तराष्ट्रसङ्घः ओमानदेशस्य तटे तैलनौकास्थानां भारतीयनाविकानामुपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत् भारतीयस्य दिग्गज लक्ष्यभेदनस्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 49 वयसि मृत्युः अभवत् अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां कैनडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति इति वार्ताः।
6: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुदनी और साथियों के स्वर में जगार गीत।

सुदनी और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे जगार गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए। आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हुए शामिल। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से खुल जाएंगे। और कांकेर जिले के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 अन्य महिलाएं झुलसी। अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 प्रमुख कंपनियों ने प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू के साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
11: छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसमें उद्योग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। एक जो परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग कामयाब हुए हैं और खनिज संपदा भी भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है और बहुत कम समय में करीब 8 लाख करोड़ का MOU हुआ है और धरातल में काम भी चालू हो गया है।
10: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। श्री सिंह आज दोपहर रायपुर के एक निजी अस्पताल में आयोजित विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इससे पहले रायपुर विमानतल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।
12: मैं 2 दिनों के प्रवास पे छत्तीसगढ़ आया हूँ और 12 साल में जो भारत को दुनिया के पटल पर केवल एक सेक्टर में नहीं बल्कि मल्टी सेक्टर में ले जाने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो सारे रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ वासियों के सामने पेश करना ये हमारा काम है।
10: श्री सिंह आज शाम राजधानी में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं अपने प्रवास के दूसरे दिन वे कल 13 जून को राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सिंह कल रायपुर में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से खुल जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में विभाग ने सभी स्कूलों को पहले ही दिन से समय सारणी के अनुसार अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू करने को कहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए 15 अप्रैल से 16 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें लोक कलाकार और रंगकर्मी तथा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके डॉ अनूप रंजन पांडे भी शामिल हैं, जिन्हें इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉ अनूप रंजन पांडे के अलावा कथक नृत्य के वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेठ को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉ आनंद कुमार पांडे को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 13 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कांकेर जिले के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 अन्य महिलाएं झुलस गई हैं। बताया जा रहा है कि कलगांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य चल रहा था, जिसमें करीब 60 से 70 मजदूर काम कर रहे थे। आज सुबह बारिश शुरू होने पर कुछ मजदूर पेड़ के नीचे खड़े हो गए, इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में कलगांव के उप सरपंच सहित 3 पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़ में भर्ती कराया गया है। इनमें से 1 महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर उपचार के लिए कांकेर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बलरामपुर जिले में पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने बताया कि गांजा एक ट्रक में भरकर ओडिशा के सोनपुर से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था।
13: जब हमने प्रॉपर NDPS के तहत कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई के पश्चात हमें पता चला कि कुल 1941.110 किलोग्राम अवैध नशीला पदार्थ गांजा जो है ट्रक के अंदर लोड थे, उसी ट्रक के साथ ये लोग जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के लिए आगे अग्रसर थे। इसी के तारतम्य में बसंतपुर पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में रिमांड में भेजा जा रहा है। कुल मशरू का जो है जो बरामद की गई है उसका कुल कीमत जो है वो तकरीबन 10 करोड़ 50 लाख के तहत जो है वो आती जा रही है।
10: किर्गिस्तान में आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। उन्होंने PIUH 85 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। श्रीमंत ने अपना पदक देश के वीर शहीद जवानों को समर्पित किया है। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में आज से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायकिंग केनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायकिंग केनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले सामने आने के बाद आबकारी आयुक्त PS एल्मा ने 4 आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं 8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर उनकी सेवा अवधि फरवरी 2027 तक या राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियमित पदस्थापना होने तक बढ़ाई गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों में संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाले नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पूरी करने के लिए कुल 195 मिनट मिलेंगे। राज्यपाल रमेन डेका आज रायपुर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फिल्में और डॉक्यूमेंट्री केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक संदेश देने का एक प्रभावी साधन है। सरगुजा संभाग आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने आज सरगुजा संभाग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी संभाग की पहली आधिकारिक वेबसाइट है जो नागरिकों, पर्यटकों और विभिन्न हितधारकों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी पुलिस ने ग्राम उड़ीद गांव में एक व्यक्ति से मारपीट कर रकम लूटने के मामले में 5 आरोपियों को

गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गोरेला पिंडा मारवाही जिले के राजस्व अनुविभाग स्तर पर 18 से 30 जून तक पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। खेत बचाओ अभियान के तहत कोरिया जिले में कृषि विशेषज्ञ गांव गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए जागरूक कर रहे हैं। और दुर्ग पुलिस ने कुथरेल और अंडा क्षेत्र में संचालित 2 अवैध गुटखा फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए। आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हुए शामिल। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से खुल जाएंगे। और कांकेर जिले के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 अन्य महिलाएं झुलसी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम बोन्डकु राम राम
1: राम राम ना दसमु राम राम
0: बोलिस तुई बोल्ने
1: होइन अमरले ना
0: समयक मन्त्र पक्षी चितौरसिस तुई बोले
1: होइन समय नेउक लागेस नै ना
0: तुहाले तुयार मेरो भेटघाट होलु
1: होइन
0: अलि यही सँगै बस्तरके स्वर कार्यक्रम सुन्तो सबै गाउँकारी सियान सजन दादा दिदी असङ जोरिया भाइ बहिनी मनके मै दसमु
1: मै बोन्डकु
0: हम दुनो करु से
1: राम राम दसमु पिला मन ना
0: हो एमन बल काय मजा तैयार होन बाती रेडी कटा कटा बसु रसते मन
1: ने तो पिला मन के बोल नि भूलू ना ने तो रेडी कटा बसलो नन नन पिला मन के बड़े म पिला मन के बोले आमचो दुनो बाटले खुबे खुबे मया और
0: लाड़ बोले
1: लाड़ और चुमा
0: तो वोंड को
1: है ना
0: तो समया बोलन तू जानसिस ने
1: हो
0: काय मजा भारती समया है
1: है ना
0: और उस भारतीय समय आए बोलो ने सबाए लोग हुनी हिसाब ने चल सोद बोले आगे हमें देखते रहो जसन की हम जो गांव चो अपेक्षा शहर ने आगे पढ़ी लिखी खूब करतो लेखा लेखी मन ने मानतर ये भी हमें देखू से जितलो जसन शहर ने आसे उतले गांव मन मरद आए बाढ़ ली से जितलो हो सकत लोग मन पढ़े लेकिन खूब ध्यान दे सो लेखा लेखी मन पर घर चो लोग मन भाई मन काय बोल सो एक बार निखार लेवल हो मंत्र पढ़े लिखे कर तो पिला जिला मन के जरूरी आए
1: जरूरी आए
0: ने
1: हाँ ना ये जो समय बोले पढ़े लिखे बहुत जरूरी है ना एबे पढ़े लिखे बोले ने कोनी लगे बोले गांव परान बोले हो शहर ले हो के शहर ले बाहरी बोल जले ने पढ़े लिखे तो मनुख चो होली मेहरार चो होली थोड़े अलग ही है ने गोड़ बात ने बोले होली कुछ संगे गोटिया तो और कहीं पूछ तो और
0: जसन की हमें देखू से ने जसन की पढ़े लिखे थे मन करे सोत मंत्र जसन की हमें देखू से पढ़े लिखी सफाई लेखा लेखी मन सफाई लोग करे सोत मंत्र सफाई के अच्छा नौकरी मीरो बोल दे सरकारी नौकरी हुन बोल आज समय संभव नो है ने
1: संभव नो है ना
0: फोटो हिसाब नहीं रहे से ने जितने लोग की मीर तो लोग की मीरे से और हुन चल बाकी लोग जसन की लेखा और बोल रहे सोत तो असन मन बल का है जसन की रोजगार हिसाब ने आप लोग गोटक सो रोजगार ने खुद चो बल गोटक कहीं बल गोटक हिसाब गोटक कला सीखुन भाती आप लोग खुद चो गोटक कला के सीखुन भाती आप लोग रोजगार बल करुक लाए मन सकोत
1: सकोत बल्ले ने कोची दूसरे ऊपर आश्रित नहीं लोग लागे ये मन अपन खुद आप लोग धंधा पानी भले घरे रोन बोले नाल कोची दूसरे थान नाल दुकान हो नाल सिलाई हो मोटरसाइकिल बना देती बल हो मोबाइल हो पेंटिंग हो बड़ाई काम हो बोले कहीं बल काम एमन करुन भाती आप लोग घर परिवार के चला सक दे बोले एबे दिन ने पढ़े लिखे हो रहे ने नहीं हमको नौकरी मिरो बोले मिरुक नहीं सके
0: और कला मन बल जा चल दक सीस ने बरन बच कला मन बल सीखा जसन की कौशल विकास प्रशिक्षण ने होता बोले बरन बच कला मन तबल सीखा है सतो
1: है ना
0: ने
1: हाँ
0: तो जसन लोग का हुसनास होता बोले बाइले मन का अलग ने
1: हाँ।
0: लेखा मन का अलग लिखी मन का माने जो के जाए आप लोग जसन की इच्छा हासे और आपने जान हु नर जाप झटके सिकुक हो दे असन बल नुआ जसन के माम के मन नहीं आए कहीं बूता कर तो जैसे की लाइट बीती है
1: हाँ।
0: तो जबरदस्त सीख तो असन बल नुआ चुका बोल कहीं दूसरा हिसाब जाए उनको सीख तो रहा से ने
1: हाँ।
0: तो असन बात भी थी हिसाब मन करुन भाती ये मन का है आप लोग स्वरोजगार बल करुक लाए सको थे
1: पलन कोनी काम छोटे बड़े नहीं हुए सब काम बराबर कर लेन सब काम नगद आए ने
0: नगद आए
1: हाँ। लाइट बीती हो लेने लाइट बीती मतलब आजकल देखू से ने सब जगह लाइट पहुंच ली से गांव गांव तक आउ तब फिर बनात का जी उनके सिकलो बीता ही बना सके ने और असनी आदमी बना नहीं सके
0: गांव मन बोल दाए जसन की कहीं जसन की मोटर गाड़ी बनाते रहो लाइट बनाते रहो ठान ठान कर दुकान बल खोल सो तो रिपेयरिंग हो नाल बिकतु बीती हो माने जसन की जसन हिसाब ने बार दुनिया चले भारतीय जुग आए बोलू से उन हिसाब ने लोग मन बल आप लोग हिसाब ने चले सो
1: हाँ बोले ने आमी ये चीज मन कर लेने आमी समय के अनुसार हम बोले आगे बढ़ती कर सकू क्योंकि ये बे पहले उन समय अलग रही ये बे समय अलग आसे ने और ये समय के अनुसार हम नहीं चल लेना पाटकुट रोक हो दे पढ़े लिखे संगे संगे ये चीज मन कर लेने आप लोग घर पूरे बल नगद हो देना ने
0: तो ये तो रोली नगद कोट मन सांग लो आराम से मोटर बल और बल जहाला मन आस्ता अले जहाला मन कमरा
1: अमरा
2: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
8: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तक का टैक्स तो और सरल बना की तोड़। बस, ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स की सितोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडो 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओया ना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी ना पर्रो मुन्नीटा लेकेन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% GST मोला देने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
9: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बना तो कंपनी अरु घेन तो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव निहोली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे।
0: हाँ बोंडको
1: है ना
0: काय सुंदर गोट कम प्रॉब्लम बने
1: हाँ
0: मंत्र हम जो मोटिन का सी गोटक भेटवार था और भेटवार था भी ते मन गोटक सूरज गर भाई जाते मन बोल गोटक एमाना सुखराम बघेल और एमान संगे भेट करता बलिराम कच आल तो बेरानी करो सुनू ये मन जो
1: गोट के
10: गांवकारी भाई बहन मन मैं गोट बात करें से गांव कले पालचो सुखराम बघेल संगे तो सुखराम बघेल बोले तु मोटरसाइकिल वगैरह बनावास ना
11: हाँ मोटरसाइकिल साइकिल बनावा है ना।
10: अच्छा तो सुखराम कहाँ ले सीखलीस ना ये काम के
11: मैं आगे केसलूर जाते हैं।
10: अच्छा दुकान ने काम करूँ
11: हाँ दुकान ने काम करूँ जाते हैं।
10: अच्छा कितलो दिन असन काम कर लीस ना होता
11: साल भर।
10: अच्छा तो दुकान ने सीखलीस की और कोनी अलग ले कहीं ट्रेनिंग वगैरह बल धर लीस
11: नहीं नहीं मैं दुकान ने सीख लेना।
10: अच्छा ये भी काय काय बनाओ ले जानीस
11: साइकिल बनावा बाइक।
10: अच्छा
11: क्लच पिलर टाइमिंग चेन।
10: अच्छा
11: हैंडल उंडल काम हुआ है। चेनिस पॉकेट पंचर उंचर सब डलू है।
10: तो ये भी तू खुद से दुकान खोल लीस।
11: हाँ मैं खुद से दुकान खोल ले।
10: कहाँ खोल लीस जाल गाँव ने।
11: गाँव ने।
10: अच्छा
11: कलेपाल।
10: कलेपाल ने
11: हाँ।
10: तो ये भी कहीं बोले ने किराए भी थी बोल कहीं साइकिल वगैरह बोल संगा लीस की बना
11: नहीं नहीं किराए भी नहीं आया।
10: अच्छा बल्ले बना तो काम है बोलोगे।
11: हाँ बना तो काम है।
10: अच्छा बना तो जो पूरा मोटरसाइकिल और साइकिल जो पूरा सामान आ से ना तू चले के बना तो भी थी।
11: हाँ मतलब आ है।
10: अच्छा बल्ले तू खुद घेन लेस।
11: हाँ खुद घेन ले।
10: अच्छा हाँ अच्छा साइकिल ने बल्ले ने जैसन की नवा सामान बोलने उन बात पूरा फिट करो तो जानिस ना।
11: हाँ पूरा पूरा फिट करूँ।
10: अच्छा
11: पूरा साइकिल के।
10: अच्छा अलग अलग जो सामान उनके पूरा नया बल्ब बना सके।
11: हाँ नया बल्ब बना सके।
10: अच्छा तू दक तु कले पाल ने बल्ले खोल लीसिस भीतर गाँव एता कसन चलेस ना तुझे साइकिल रिपेयरिंग भी चले सच।
11: हाँ मत अच्छा चलो है ना।
10: अच्छा
11: हाँ
10: बोले काय बना तो लोग जुगे उन बाटे ये सोचा
11: दोनों ही हुआ मतलब।
10: अच्छा मोटरसाइकिल और साइकिल।
11: मोटरसाइकिल दोनों ही हुआ।
10: अच्छा तो ये बैंड वगैरह सुधार तो बीती बोले पूरा काम करो।
11: हाँ पूरा ओके है।
10: अच्छा अच्छा
11: पूरा बैंड उन सब सुधरा हुआ है।
10: अच्छा
11: बाइक चो बोला इंजन उन हैंडल उंडल सब बना हुआ है। पंचर उंचर सब बना हुआ है।
10: अच्छा तो पंचर वगैरह जो मशीन ने बोले बना हुआ थी आसे तुझे लगना।
11: हाँ मशीन नहीं आया ना।
10: अच्छा
11: हाँ मशीन नहीं आया उसने हाथे बना हुआ है।
10: हाथे बना हुआ। अच्छा तू
11: लीवर से मदद ने।
10: अच्छा हाँ जैसन की मोटरसाइकिल बोलिस ना ये तो बोले ने बोले सीखतन कि खूब तकलीफ लागली होती।
11: हाँ दिमाग से ऊपर तकलीफ लागत छी ना।
10: अच्छा बोले ने मन लगन लगाओ के लिए पड़े से ज्यादा अगर ने। तू जो मोटरसाइकिल बोले आन सोत ना उन बाटे तू गांव ने बना तो लोग। अच्छा तू कहीं ये मंचो जो नानी सुनी जो सामान बोले संगाइसिस का एक कसन जाले
11: मोटरसाइकिल को। हाँ मोटरसाइकिल को सब आधा सामान हुआ टाइमिंग चैन ब्रेक शू क्लच प्लेट।
10: अच्छा
11: हैंडल कटोरी ब्रेक शू आइल।
10: अच्छा और साइकिल चो बोल सामान रहे संग रहे सी।
11: हाँ साइकिल चो सब पूरा आसे सीट आसे रिंग आसे ट्यूब आसे टायर आसे सब आसे।
10: अच्छा
11: साइकिल चो
10: ये बोले ने तू खुद चो पैसा घेन लीस का बैंक बांट ले।
11: नहीं मैं खुद चो आगे मैं गाड़ी चलाते रहे ड्राइवर रहे आगे।
10: अच्छा ड्राइवर रही। अच्छा
11: सिकुन बाद फिर गाड़ी चला लेता।
10: अच्छा
11: उनका उतर पैसा जमा कर बाद फिर खुद चल कर ले।
10: अच्छा
11: आओ।
10: कहीं अच्छा दुकान खोल का पैसा कूड़ी आजकल सरकार बाटली सुविधा आ सी ना तो डर तो विचार नहीं बने
11: का है ना उतर डर लेवल पटा जी काम आए।
10: हाँ उन तो आए ची पटा तोर तो पड़े दे।
11: हाँ
10: लेकिन बड़े हिसाब ने दुकान की बनाए दे बोलते हो सन।
11: हाँ आजकल तो सब नहीं रहते ना मात्र मैं इधर रुकूं चाहे।
10: अच्छा हाँ बोले ने
11: पूंजी में रहते।
10: अच्छा हाँ बोले बड़े बड़े दुकान ले तो की पूरा सामान बल मेरे संगात का जी।
11: हाँ
10: अलग ले
11: देवर हुआ तो ताल बोले होली से।
10: अच्छा अलग ले घेनु नानु क्लाय नहीं पड़े।
11: घेनु जाऊ पड़े देवता है शहर ले।
10: बोले नस नहीं बोल देवन रहे सद बिकलेन पैसा दे सी तू। तू ये तो अच्छा काम है ना बोले दाय तू खुद चो रोजगार का जे गांव ने खोल ली सी। बोले ने काय काय बीती चु कसन कसन रेट बोले आये ना धरुआस जाले।
11: रेट तो सामान अनुसार ने लगवा है।
10: अच्छा और जैसन
11: साइकिल बोले आजकल रेट खूब होली से।
10: हाँ
11: नवा साइकिल जो बोले असनी सामान रिंग उंग जो बोले 300 साढ़े 300 टायर मन 200 220 250 300 तक का से।
10: अच्छा
11: हाँ
10: बोले सब जो रेट मन अलग अलग है बोले।
11: हाँ अलग अलग है।
10: तू आगे गाड़ी चलाते रही पर खुद जो दुकान बोले कसन मने ली ना तुके
11: गाड़ी बोले दूसरा थाने चला तो बोले इच्छा नहीं कर ली। मन दूसरा थाने रहते और मैं फिर जानते रहे ये काम बोले।
10: अच्छा
11: दिमाग लगा ले थोड़ा दूसरा थान रोन रोन ठीक नहीं लगली पहले कुछ धंधा करें बोलते विचार होली।
10: बल्ले गांव ने घर ने रोन रोन बोली ये काम अच्छा हो ला सके बोलू भी ने उन्हीं साहब ने तुझे
11: गाड़ी घोड़ा बोल चला तो खूब डर निकला गली।
10: एक्सीडेंट
11: काय काय दुनिया भर से वैसे जितलो गाड़ी बोल बढ़तो कि उतलो एक्सीडेंट मन बोलो वैसे।
10: उन तो आए सी तो दक तुचो ए महीना दिन ने बोलू ना आमदनी हिसाब ने कसन तुचो पूर्ति होए से।
11: हाँ पूर्ति होए ना।
10: कसन अच्छा
11: डेली हुआ है।
10: अच्छा
11: 1200।
10: अच्छा
11: हाँ दुकान ने जाने साथ के 2000 हुआ के 1000 के 500।
10: हाँ उन तो आए बल्ले आम तो बना तो हिसाब ने के भी आगर बोलो ऐसे के भी कम बोलो ऐसे।
11: हाँ
10: है कि नहीं।
11: हाँ
10: तो बल्ले ने दुकान कितना ले खोलू असना दिन ने।
11: मैं दिन ने 6 बजे बोले स्टार्ट करूँ ग्राहक इलाज तुरंत।
10: अच्छा
11: बोले बना दी घर ले गया घर पूरे किया रोड ने की।
10: अच्छा तो बोले ने कोनी बना कान ला बोले कहीं टाइम नो आए बोले बोलू
11: ने कहीं टाइम नो आए
10: बिहार हो रात हो कितनी दाय बना दे।
11: कितनी दाय बना दी।
10: अच्छा कसन लागे ना ये दुकान खोल तो के
11: माँ के अच्छा लागे ना।
10: अच्छा लागे से
11: बढ़िया लागे से।
10: अच्छा झंझट नहीं तो गाँव ने खेती बाड़ी बोले आए
11: खेती बाड़ी फुटबॉल चलू है
10: अच्छा
11: सब देखो कुआ है
10: अच्छा
11: फुर्सत मेर लियाल जाओ बोलू है
10: बल्ले गांव ने घर ने दुकान हो तो कारण ने बल्ले घर चो देखभाल दुकान चो देखभाल
11: सब हुआ
10: सब है ऐसे तो बल्ले ना आगे तो चुका है बिचारा से बिना सुखराम बगे ले दुकान के आगे बढ़ से
11: हाँ आगे बड़ा तो बिचारा से मचो
10: अच्छा
11: और मचो के लिए सर्विसिंग गाड़ी दो बना तो रास्ता है
10: अच्छा तो आजकल तो गांव मन ने बोले मोटरसाइकिल मन खूब होते जाए है कि नहीं
11: हाँ खूब होते जाए से साइकिल के बोल के सोच
10: हाँ तो सर्विसिंग वगैरह भी थी बना लीज बोले खूब अच्छे से लुक लाए सके दे
11: ये लगनी आया हम जो गांव लगे हमारे गांव नाल के फ्लोर
10: बोले तुम जो गांव ने और कोई दुकान नहीं आया सन
11: दुकान नहीं आया
10: अच्छा तो आलना सुखराम बगेल तू इतना अच्छा तू चो जो दुकान मोटरसाइकिल साइकिल बना तो पूरा गोट के सांगलिस ना आले जुआर ना
11: जुआर ना
10: जुआर
11: जुआर
1: हाँ दसमो
0: हाँ बोंडको
1: काय सुंदर भेट वार्ता लीना ने
0: हो तो भाई सुखराम बगेल काय सुंदर आप लोग गोट के सांगला ने कसम सूरजगर आप लोग मुर कर ला आप लोग काम धाम के
1: हाँ
0: और ये मन से भेट करते रहला बलबीर सिंह कच
1: और आम चो जो रेडियो सुनते दादा दीदी में मन के आप लोग हर फिला जिला में उनको असन नगद गोट मन के सांग तो रहे ने
0: हो हो
1: और मन बोले असन नगद चीज मन के करोत बोले
0: करोते मन बोले
1: हाँ तो मैं बोलते रहे ना असन नगद गोट होन दिले ने गोट नगद गीत सुनु
0: मोचो बोल मन वस्त नहीं रही तो वाले गीत के आगे हम रोन देऊ गीत कुरिया भाई बहन मन पाचे हम फिर चीता हुआ
1: चीता हुआ
0: सुनुए गीत

0: हा बोडगू
1: होय ना
0: काय रस या गीत रिलीने
1: हा
0: तू गीत कुऱ्या म्हणजे चितालीस कसं
1: चिताले ना इतलं काय सुंदर गीत की कथन गीत कुऱ्या म्हणून निश्चित आहे एक गीत म्हण के गात रोत गेली म्हणे देवी और मंच संगवारी मन
0: तो वाले घड़ी बार दखले समयाबल होय बोंड को ने आज समयान जरूर समयान फिर यो को है अंबल काय सी चेता तर उनसे लोग मन बल ने कहीं बोले भूता के हम समयाने करो बोलते आज समयाने कर लो बीती काय हुन काम भूता पर पक्का नगद दखा बोल दे ऐसे है और दखा दे ऐसे समयान कर लो काय लोग संग लोग बोल दखुरो सोत नहीं है कहीं बोले भूता समयान करे से पुकी है भूता होय से कहीं बोले भूता समयान कर तो राय तो ये बोल काय गोट हिसाब होय सा ने तो हुन हिसाब ने काय कहीं बोले भूता समयान कर लो
1: पुकी होय से
0: तो वाले बिता धर तो समयाबल होली ने अलती मोरा कट रख सकल मैं बिता धरें दे जा तो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव कारी सियान सजन दादा दीदी और संग जोरिया भाई बहन मन के मैं दसमो
1: मैं बोन को
0: हम दोनों करूं से
1: राम राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: जुहार ना दसमु जुहार
1: जुहार बोंड को जुहार
0: बोलिस ने होय ना
1: आले आम तो भेटघाट होलो
0: हाओ
1: आले संगे
0: आमचो गांव कार्यक्रम सुनतोर सब पाए गांवकारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं बोंड को
1: मैं दोस्त।

0: 아무도 나가는세 주하르
1: 또 뭔고
0: 허이나
1: 아지벌레 포키보터 머리 모터 칸디서슨 라게세네
0: 허이나 아지죠
1: 홀리시 사이
0: 허이나 아지 딘벌토 수크로알 디나이나 네
1: 월산 디나 홀레 카야 케디 머리 모터 아노 클라게세네
0: 하
1: समय समय हिसाब ने
0: समय हिसाब ने
1: तो वोंड को
0: है ना
1: तो मानतराम देखो से ने समय हिसाब ने बोलन काई बले पुता काम समय हिसाब ने करू से ने
0: हां ना
1: तो समय बदल तो बल कितरो चांड होइस दक आगे जो समय असन समय आ रहे हम देखु से जसन की हम जो पीला जीरा पीला हिसाब ने तो हम जसन की काय काय कर कसन कर हम पारंपरिक खेल मन खेलू आगे
0: है ना बोले ने उदना हां हम बोल पीला रे बार खेलू ना बोले ने उदला जो जो खेल मनाए नहीं ना एबे दका तो नी दे लेकिन उदला जो खेल बोल लेने जैसे ना मी बारा डांडी खेलू ना ने बोल लेने उता बारा जन मास डांडी मनाऊ और ए बाटले उमड परन परन परन खेलू ना ने
1: आगे खेल मन बोल गो माने गो शरीर गो व्यायाम बोल गो कसरत बोल होय बोल असन खेल
0: हां ना
1: पीटू लसन है लुका छाई असन ने कबड्डी असन खो खो असन माने असन हुन मन खेल मन बले जसन की खेल संगे कोटक दिमाग चुबल कोटक बढ़े और दिमाग संगे संगे कोटक शरीर चुबल कोटक व्यायाम असन हो आगे कोटक
0: हो ना
1: हम देखू से ने और आगे जो खेल मन ने जसन की सफाई लोग मन गोटक बाट कूड़ा हो भाती ने आप लोग जसन गांव पारा हो गोटक आप लोग ठान रहे गोटक ये ठान ने जू तो रहे ने आ गोटक समय पक्की गसन आगे तो घड़ी बोल तो नहीं रहे गोटक जानी माने रहते रहे कम रहते रहे पक्का चितो रोत गोटक बेर के ये समय काम के जू तो रहे
0: जू तो रहे
1: आ जून भाती होता सफाई मिलून भाती सफाई खेलून भाती सफाई होता संगे रहोत ने
0: है ना
1: हाँ
0: बोले ने उन समय ने खेल तो कूद तो काज उतलो जसन संसाधन नहीं रहे और जो संसाधन रही उन घर ही रही वही संसाधन हमी खेल तुराय कूद तुराय ने जैसे हिबा बोल खेल होता ने और जाल बेंगा बोलत और बाटी
1: ओ आगे जसन नाव छे सुन ले गोटो कसन लागे से ने सुरता है सागे पारंपरिक काम छे खेल मन के आगे
0: है ना जो बाटी खेल तो काम बुलाम खेलू ने कितलो उता दम बोले ने दिमाग मन लगा के लागे ने और जसन बोलली ना अभी तू खो खो बोलली कबड्डी बोलले उ त ए पड़ ले हम पर परन बति ने शरीर बोले एकदम थकुन जाए ना ने
1: खेलून खेलून ने खाने पानी पियास उठाए
0: तो शरीर बोले एकदम बढ़िया व्यायाम बोले होए और शरीर होली मन होली विचार होली बढ़िया रहते रहे ना ने
1: विचार बोले गोटक मिले लोग मन संग ने ये असन खेले लेख मई जीता है ने असन गोटक तो काय तू बोल रहे गोटक ने और हुनर मन बल आगे चो जसन की पीला मन ने गोटक अलग गोटक डॉक्टर मिरे ने और आगे चो अपेक्षा है देखू से खेल मन बल कितरो माने बदलती गेली ने
0: बदल गेली ना
1: खेल मन बल यार होतरो अदा पीला मन बल बहुत कम खेल सो तो आगे जसन नी खेलो खेल तो मन नी करो ने तो उन्हीं हिसाब ने आगे जो गोटोक बोल के गोटोक पारंपरिक खेल मन रहे और हुन खेल मन के बल खेल तो चाहिए गोटोक ने
0: है ना है? बोले ने आम जो फुरकती बेरा जो खेल कूद मनाए ने एबेज खेल मन के भले आम खेल तो रहनी भूलक रहे एबेज खेल मन बोले कि एबेज खेल मन के खेल लेने आम जो जो एबेज जो सरकार बाटले बोले खूब योजना मन बोला से ने
1: होता बोले आगे बोले बरसो खेल मन ने बोले कई एक लोग मन कितरो आप लोग खेल मन ने बोले आप लोग आगे खूबे पूरे पूरे इला से हम जो देश का बोल खेल सो देश तो नाम बोल रोशन कर सो ने
0: बोले ने जस ना हम जो फुरकती बेरा ने तीर धनुष बीति बोल खर का तो खेलो ने
1: हो बिन तो बीति
0: बिन तो बीति सरकार बोले उन बीति मन के ने पूरे आने से
1: पूरे आने से
0: बोले ने हम जो गांव करी जो दादा दीदी मन चीज मन के नहीं भूलकत बोलते ने
1: हो हो हो तो बल तो गोटे आए कि आगे जितरो पारंपरिक खेल मन रहे तो उन खेल खेल मन बल फेर लेवल मूर बल कर तो रहा है और खेल तो रहा है पीला मन बल खेला तो रहा
0: है हाँ।
1: तो वोट को एतरो लिगोट मन आराम चो मोडिन अले नगत नगत जहाला मना से ए जहाला मन के अमराव
0: अमराव ना
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल बुधवार ने टेन घोषणा की तकी, सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस, इंजे 18% की सित्ता। टैक्स तगा कमी कित्ता, आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना उम्मीद मिंदे। लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडले कटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से घटे मास 5% की सित्तोड़। ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता, आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता। इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
5: है ना
6: कायरसी आई गोट मंदिर लीने
5: हाँ।
6: तो आम चुमोड़ी ना ताया गोट कभी गोष्टी
5: है ना।
6: तो ये तो इतना भागदर लो भाई मना श्री
5: जगन्नाथ बघेल,
6: शिव नारायण पांडे
5: और रामनाथ कश्यप।
6: तो आल बेर नहीं करूं, सुनिए मंचो कभी गोष्टी।
7: रेडियो सुन तो सपाय भाई भिन मन के, मैं बलबीर सिंह कच्छ करे से जुहा। तो देखा आज आमी बलने कवि गोष्ठी धरुण बाती इलू से कवि गोष्ठी बल्लेन तो जाना सी आमचो देसी आ हिसाब ने उनके ठसा बल्ले बोलूक लाई सकूं। कसन बल्ले काय कि ये ठसा जोन सांग तो बितामन कवि जोन रहसोत एमन बल्ले ने आमचो कई कसन हासी गोट बल्ले सांगसो तार कई असन संदेश मन बल्ले बल्ले ने उता जोड़न बाती ठसा ने बोलसोत कविता ने बोलसोत। तो असने ची आजी आमतानो कवि मना श्री जगन्नाथ बघेल, श्री शिव नारायण पांडे आरु श्री रामनाथ कश्यप। तो सबले पहले आमी श्री जगन्नाथ बघेल जो कविता के सुनु एमन रानले मृत्यु बीती पान आरु डोरी जो घोट के आप लोग कविता ने सांग सो।
8: मोचो हल्बी कविता है जंगली पान। सरगी सियाड़ी परसा पान के दोना पत्तल बना हुआ, सरगी सियाड़ी परसा पान के दोना पत्तल बना हुआ, घर जो लोग सबू मिलजुल करुण बात पेच कौआ, घर जो लोग सबू मिलजुल करुण बात पेच कौआ। छतरी ने चाऊआत सियाड़ी पान के, छतरी ने चाऊआत सियाड़ी पान के, देवगरे चाऊर निवात सरगी पांच दोनी के, देवगरे चाऊर निवात सरगी पांच दोनी के, सियाड़ी पान के चिपटा बना हुआ, सियाड़ी पान के चिपटा बना हुआ, महुआ पोल तेतर बीच के संगवात, महुआ पोल तेतर बीच के संगवात, पान धूप लेहरा मेरे से बूटा रुक के नी गोंदू दादा, पानी नी मेरे गाम बड़े दे ये तो बेराचो फीड़ी ने दादा, पानी नी मेरे गाम बड़े दे ये तो बेराचो फीड़ी ने दादा, पाना पताई रले ने खाद खूब बने दे, पाना पत रले ने खाद खूब बने दे, बाड़ी ने डाल लेने फसल खूब मेरे दे, बाड़ी ने डाल लेने फसल खूब मेरे दे। मचे दूसरा हल्बी कविता है जंगली डोरी। डोरी बनवा बड़ जड़ी कुमी सियाड़ी लाहके, डोरी बनवा जड़ कुमी सियाड़ी लाहके, काम दीवाए आमी सब लोग छो जीवना ने, काम दीवाए आमी सब लोग छो जीवना ने, सियाड़ी डोरी के दावा बरे जोता बनवात, सियाड़ी डोरी के दावा बरे जोता बनवात, घर ने कटिया गातुआत दसरा रथ के जिकुआत, घर ने कटिया गातुआत दसरा रथ के जिकुआत, उदाल केंदा के गोंदुन पानी ने संगवात, उदाल केंदा के गोंदुन पानी ने संगउआत एक सप्ताह ले संगान बाहरी निकरउआत एक सप्ताह ले संगान बाहरी निकरउआत डोरी निकरान सुंदर गेटा बनउआत डोरी निकरान सुंदर गेटा बनउआत गाय बैला चेरी मेंढी के दियारी दिने बांधुआत गाय बैला चेरी मेंढी के दियारी दिने बांधुआत सियाड़ी चो डोरी बहाचु बिरला ने सियाड़ी चो डोरी बहाचु बिरला ने फकना कांडा के बांधला छानी घर ने गाँव करिया दादा दीदी मन रान के गोंतो ले बचान दकू गाँव करिया दादा दीदी मन रान के गोंतो ने बचान दकू खांदा जड़ी पल फूल मीरे दे आमचो जीवना खाजे संगान दकू खांदा जड़ी पल फूल मीरे दे आमचो जीवना खाजे संगान दकू।
7: हाँ तो दखा कितलो नगत आम के श्री जगन्नाथ बघेल आप लोग कविता पाठ ने सुनाला जनाला कि रान ने मृत्यु बीती पान आम के काय काय काम एवकला सके और रान ले मृत्यु बीती डोरी आम चो जीवना ने काय काय काम एवकला सके ये सपाय गोट के सांगुन बाती आम के रान बन के बचा तो उवाट सांगल यदा आम्ही सुनू शिव नारायण पांडे चो ये कविता पाठ के
9: मचो ये कविता है घर बनातो काजे रुख सरगी सिंह नारे बसतर ने खुबे रुख काय मजारे राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व रान बसतर चो मान घर बनातो काजे रुख खूट बसतर चो सान नी धरावा रान ने आईग नी करा नुकसान नी धरावा रान ने आईग नी करा नुकसान रान बचाले गाँव पारा ने तुम चो बाड़े दे मान रान बचाले गाँव पारा ने तुम चो बाड़े दे मान सरगी सिना रे बसतर ने खुबे रूख काय मजारे घर काजे कांडा दुलुम सुकलो बीती के आना बसतर ने जमाए मीरे से नफा दरुक जाना नुकसान एक निकरा तुमी गोठ के हम चो माना नुकसान एक निकरा तुमी गोठ के आम चो माना रान ले आसे पानी लेहरा ए गोठ के जाना रान ले आसे पानी लेहरा ए गोठ के जाना सरगी सिना रे बसतर ने खुबे रूख काय मजारे घर काजे बता मीरे से निसारा रान बन बसतर ले रान सर ले जाय दे आम चो धन रान सर ले जियाद सर दे विचार करा तुमन मन रान सर ले जियाद सर दे विचार करा तुमन मन सांगू सांगू निकरा गलती तुमी घन घन सांगू सांगू निकरा गलती तुमी घन घन सरगी सिना रे बसतर ने खुबे रुख काय मजारे घर बना तो काजे रुख खुटर ले जीवना चारी कुती रान बन ले जीवना उजर निकरा नाना गति रान बन के धुरदानी तुमी निकरा जुगे भोग रान बन के धुरदानी तुमी निकरा जुगे भोग रान बन बीती बस्तर माटी तेबे तो बल दे लोग रान बन बीती बस्तर माटी तेबे तो बल दे लोग सरगी सिना रे बसतर ने खुबे रुख काय मजारे छानी कुड़िया ने रुख कूट आमचो बड़े धन घर बन ले मनुक जीवना हरि करे दे मन घर ने लागे से रुख खूट बाचू रहो रान घर ने लागे से रुख खूट बाचू रहो रान रुख नीर ले निबने घर घट दे आमचो मान रुख नीर ले निबने घर घट दे आमचो मान सरगी सिना रे बसतर ने खुबे रुख काय मजारे रुख खुटले कपट खिड़की घर चोबाड़े से आभा कपट खिड़की घरे लगले दखे से कसन शोभा कपट खिड़की कांडा बथा कहाँ ले आना से कपट खिड़की कांडा बथा कहाँ ले आना से रुख खूट सरुन गेले बसुन गागा से रुख खूट सरुन गेले बसुन गागा से सरगी सिना रे बसतर ने खुबे रुख काय मजारे आलमारी संदूक बनाऊन पैसा संगाऊ रहू रुख खूट ले ए बने से रुख के बचाऊ रहू ये तो पीढ़ी काजे रान रले जीवना होय दे उजर ये तो पीढ़ी काजे रान रले जीवना होय दे उजर नहाले काय के घर बना दे हो दे हर बर नहाले काय के घर बना दे हो दे हर बर सरगी सिना रे बसतर ने

चलोड़ तबे जानी सक सन बोल तभी ती पाट का झड़े से पाट का झड़े से मारे रसोना मेढा मेढा चलड़ी होली उसरी बूटा च मरण पड़े से मरण पड़े से मारे रसोना कूट झुड़ंगा बोल देखा पीला गोदा मौलगी मौ

ड़ी मटर जानी से कसन बोल तभी पीला गदा मलगी मन सुकुमा चले से मारे रसोना हजारी घोड़ा च फुजारी घर टूटा पाए च भैंसा जानी से।

ना गड़िया गाँव च नड़िया फूजरी जानी से कसन बोल तभी झेड़िंग लेटिंग आरती करे से मारे रो सोना।

झटा जानी सकसन बोलत बीत रतने घेरे से रतने घेरे से मारे रसोना सुख मुका सुग्रीवीर अंजना चो बेटा बीता हनुबीर सात पर गण अठारह गढ़।

0: पळली उसरी बुटाचे मोरण पळेसे.
1: हा तो दाखा कितलो नंगत मारी रसोना की सुनाला श्री रामनाथ कश्यप. गाव मनने दखा जवान लेका लेकी हो ना ले डोकरा डोकरी हो बिया घरे नहीं तो और कहीं दूसर बाजार मंडी ने कहा बोले ओढ़ तोड़ हारा जीता ये रीलो गीत के गायसोत मंतर एबे कई कसन आजकल चुपीड़ी भूलकते जासोत आम के भूलक तर नोए कसन बोले का है कि ये रीलो ने बोले आमचो आगे चो जूना बेराचो जोन रूसुम आए ये सपाए के दखुक लाए मेरे से. तो आज चो कवि गोष्ठी इतले ही रली तो जाते जाते फिर आ रख मैं बलबीर सिंह कच्छ करें से जुहार.
2: हाँ बोंड को
3: है ना
2: तो का है रसिया कवि गोष्ठी लेने
3: हो ना
2: दिन बस सुन ला होती ने
3: हाँ
2: तो था भाग धर लो भाई मंदरला श्री जगन्नाथ बघेल श्री शिवनारायण पांडे श्री
3: रामनाथ कश्यप
2: इतरो भाई ने था भाग धरू
3: भाग धर ला ना.
2: तो मैं बोलते रहे ध्यान ध्यान चो गोट मन तो होली ने संगे संग कवि गोष्ठी बल होली तो मैं बोलते रहे संगे संग मोटी नाच गोटो गीत
3: गीत
2: अलग गीत क्या गोटो छाड़ू गीत को देवन पाचम फिर चीता
3: चीता
2: अले सुनुए गीत के

0: दसमो
1: हाँ को
0: काय सुंदर गीत रली ना ने
1: हो काय अरे गीत
0: हाँ अरे गीत के गाते रला बलवीर सिंह कच और मंचो संगवारी मन
1: तो वोण को
0: है ना
1: तो मोटरी बार दखले तो मोटरी बार सर लेने
0: सर लेना जो
1: गोड संग काय सुंदर की कविता संग गीत गोविंद अमरालु दादा दीदी मन काज यान बोल काय सुंदर मन बस समय में टाकुर सति मन बोल बिल्कुल समय होले खात पाए धोन भति काय सुरेडी कोटा कर बस रसते मन बोल ने हाओ तो बाजी काय सुना दे बोलते तो हुनी हिसाब ने मन काज बोल काय सुंदाम बोले ज्ञान ध्यान जो गोट मन तो अनुसचे मन काजे हमने संग बरन बन जो रहस्य मन काज गोट मन ने ज्ञान जो गोट मन बोले अरे मन बोल काय सुंदर आजकल जो खेती बाड़ी समय आए जान सीस ने यान बोल दिन बोले थकुन पुकुन उन भती रेडियो कटा कटा बुसर सते मन बोल हो अरे मन बोल काय सुसन गोट मन सुन ले मन बोल काय सुंदर चढ़ंग ना लागे से
0: तो मैं बोलत रहे ना दसमो हम जो समय वाले होय से ने आ तू मन रख रख सकल मैं विदा मांगे से
1: आले
0: ऐची संगे आमचो गांव कार्यक्रम सुनतोर सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान संजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं बोंड को
1: और मैं दसमो
0: हमें दुना करूं से
1: जुहार।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। कार्यक्रम घलर में आइए सुनते हैं भद्रू कश्यप और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

सागर नामचो राजा के राम 7000 बेटा रलाजे, कपिल मुनि चो सराप ले तो के आई गने जरते रलाजे, तुचो पाँव के धोल रोजे राम अंत बोर बाटे लुकू रहे शिव चो सिरने। ये गंगा सागर तुचे बस किरतिया रघुबीरो।

नक्षी हम सजन दादा दीदी मिथिला पुर चोर राजा हाक दिला सत्यानंद मंत्री के राज राजे तुई जासे राजा मन के न्यूता देसे इला जाले देंद मोचो सीता बेटी के।

खबर पहला राजा मन होला बोले हरेक मन मिटिला पुर इला हाथी घोड़ा चेगुन चेगुन राजा इला लके जन जन होला हरेक मन चाह नास्ता सबके दिलो बस्त आसन।

राजा सांगलो पाछे गोटक मोझो धनु आसे हूं धनु के टूटाऊ दिया से गोटक आसे मचो बेटी श्री सीता नाम बीचे कोनी टूटा ले हुनी मचो बेटी के नी आसे बिंदी गिरी।

राजा नेकित प्यां छे अच्छा मोंजा बोले से सुन जनक राजा तुच मुछ बोला से कितरो मैं संगे से हुतलो।

सन गोट के आना उचो राजा उठल झट के आज धनु कहाँ से दकाऊ देस तुचो धनु कहाँ से मके तु दकाऊ देस तुचो धनु के टूटाऊ तुचो बेटी के मोहने दे तुचो धनु कहाँ से तु मके दकाऊ देस असन बेरुन गेलो दका दिसने ठाऊ धनु छोटेच के दकुन गेलो पराऊ धनु छोटेच के दकुन गेलो परा।

0: El champa pulada, sundara saki, samo la ranga san.
1: El champa pulada,
0: sundara saki, samo la ranga san. El champa pulada,
2: कार्यक्रम घलर में आप सुन रहे थे भद्रु कश्यप और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जेगोट में अभी हम सुनेंगे ऋतु चक्र के विषय में। प्रस्तुति है बंशीराम कश्यप की।
3: पिलामन काजे गोड कार्यक्रम सुनतोर सब पाए गांव कारी भाई बहन मन के मोचो बाटले खुबे खुबे माया और लाड़। दखा भाई बहन मन, आमी रोजे दिनाचो सन तुमचो काजे नंगट नंगट गोड मन धरून इवाओ। उसनी आजी बले मैं तुमचो काजे ऋतु मंचो नंगट गोड धरून अमर ले से आले मैं मूर करें से सुनावे। ऋतुचक्र बोलने ने मौसम चो बदल तो समय आए। एक बरक ने मौसम कितलो वार बदले से कसन ने बदले से बल्ले ने पृथ्वी बेर चो बाहर किंदर तोर और पृथ्वी आपलो जगाने लोहलो कारण ने समय बदले से और आमी एक ही मौसम चक्र या ऋतुचक्र बोलो से। ऋतु चक्र ने एक बरक ने 12 महीना होय से 12 महीना ने हर ऋतु 2 महीना चो होय से और आमचो भारत देश ने ऋतु 6 ठान भाग ने बाटला से एमन चो नाव असन आए। गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत ऋतु। उसनी पहली ऋतु चो नाव आए गर्मी, जो के आमी जेड बोलो से। ये बरक चो 6 ठान ऋतु मन ले गोटोक ऋतु आए। जेठ ने घाम खूबे अधिक रुआए। जेठ ऋतु चो मूर बल्ले ने मार्च अप्रैल, जो कि हम जेठ या आषाढ़ महीना बोल बोलुआ। ये महीना बेर चो उजर खूबे अगर रागुआए। जोन कारण ने बियाने बियाने बोले खूबे घाम लागुआए। जोन कारण ने बियाने बोले घाम लागू रुआए। जेठ समय ने खूबे घाम चो कारण ने नदी नाला तरी डबरा टिकरा चुआ पानी आठून जवाए। पानी आटलो कारण ने पानी काजे जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी मन बले खूबे हरबर हुआ। जेठ समय ने मेरार मन मनुक पीला झीला मन पातर ढीला ढाला कपड़ा मन फिंदुआत काय काजे बल्ले ने गर्मी ले अस्थिर लागो और उस संगे संगे देह ने पानी चो कमी नहीं हो बोलून पानी डंडिक डंडिक पीवात। जेठ दिने बड़े दिन रुआए और डहा बले खूबे लागुआए। गर्मी दिन चो तापमान 40 डिग्री ले ऊपरे रुआए। जेठ ले आम के खूबे फायदा बले हुआए। नगद जेठ घाम होले ने नगद वर्षा बले हुआए। नगद घाम छेकले जहरील बीती कीड़ा मकोड़ा बले मरुन जवा। जेठ समय ने खूबे पाक फल मन बले फरुआए। जसन आमा काकड़ी तरबूजा खरबूजा लीची भेलवा तेतर काटाकुली चार डूमर खदम खूबे ठान फाग पलमन बले फरुआत। और दूसरा ऋतु बोलुआत आमी चमास। चमास जो जेठ चो पाटकुटी हुआ। चमास ऋतु चो मूर जुलाई ले सितंबर, जो कि हम सावन भादो बोल बोलुआ ये महीना ने शुरू हुआ। चमास चो मूर दक्षिण पश्चिम मानसून लहरा मन ले शुरू हुआ और आम चो देश ने चमास चो सीजन मूर हुआ। चमास इले ने आमचो देह पाए के जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा मंचो देह पाए के बोले नगद अस्थिर लागू आए। और आमचो भारत देश गोटो कृषि प्रधान देश आए। ये थानो लोग खुबे पानी चो ऊपरे आशित आसोत। चमास चो पानी ने धान पान कोदो कुटकी मरिया जोंद्रा आरु खुबे ठान फसल मन लगवात। और संगे संगे चमास चो पानी ले लाटा बूटा पेड़ पौधा मन बोले हरा भरा और नगद बढ़ुआत। वर्षा कसन होय से बल लेने बेरचो घाम खूबे छेक लेने नदी नाला तरी डबरा टिकरा चुआ समुद्र चो पानी भाप ले रूप धरून बत्ती झिकुआए और ऊपर उन बाष्प के ठंडा अने शीतल करून बत्ती अमके नीचे फिर घसरुआए। बादरी चो पानी खूबे वजन हो लेने वर्षा चो रूप ले खाले घसरुआए। चमा समय ने खूबे जहिरा कीड़ा मकोड़ा मन वाले जन्मुआत जनले खूबे बीमारी सीमारी मन हुआ आरु चमास बेरा आम के बासी कोसी मन के निखातो राय आम के अधिक ले अधिक तपलो बीती मन के खातोर पीतो राय चमास बेरा खूबे पानी होले ने खूबे झनधन चो हानि हुआ जसन बाढ़ ले खूबे आम के झनधन चो हानि हुआ ऊंचो पाटकुटी हुआ है शरद ऋतु ये तीसरा ऋतु आए शरद ऋतु के आमी पतझड़ वल बोलुआउ ए असन ऋतु आए जोन चमाचो पाटकुटी और शीत चो फूरे युवाए अरु रुख राई आपलो पाना पति मन के घसरवात शरद ऋतु ने तापमान ने गिरावट बोले दखुक मिरुआए शरद ऋतु ने दिन रात चो समय लगभग बराबर रुआए शरद ऋतु ने बेर चो घाम खूबे अच्छा लगवाए जोन कारण ले सुनरी गुणवत्ता सुनरे घटे चो बोले ऋतु बोले बलुआत आरु शरद ऋतु चो मूर होतो महीना आय अक्टूबर नवंबर जोन आमी अश्विन या कार्तिक महीना बोले बोलुआ शरद ऋतु ने वर्षा होले पाटकुटी बादरी साप आरु नीलिया दखा दीवाय शरद ऋतु ने भौरक हरा भरा हरियाली दखा दीवाय आरु वातावरण खूबे मनमोहक बोले लागुआय शरद ऋतु ने दिन बेरा खूबे घाम लागुआय आरु राती भेरा खूबे शीत लागुआय आरु खेत मन के पाकलो धान चो सुगंध गंध चारों बाटे फैलून वातावरण के एकदम सुगंधित बनवाए शरद ऋतु ने मौसम अच्छा रुआ जोन कारण लोग मन चो श्वास बोले खूबे नगत रुआ जेन कारण शरद ऋतु के अनुकूल ऋतु बोले बलुआत आमचो लगे आश्रय चौथा ऋतु हेमंत हेमंत ऋतु शीतकाल समय ले एतो गोटोक ऋतु आए जोन उन छह भारतीय ऋतु मन ले गोटोक आए जोन शीत समयाचो स्वागत करुआए आरु ए ऋतु समया ने पूरा वातावरण शीत लागुआए पारंपरिक हिंदू कैलेंडर चो अनुसार हेमंत ऋतु चो मूर दिसंबर जनवरी जो के आमी माघ या पूस महीना बोले बोलुआ आमचो जीवन ने हेमंत ऋतु बरक चो सबले अच्छा हरिक उदित और आनंदमय चो ऋतु आए हेमंत ऋतु ने शीत धीरे धीरे बाड़ुआए और दिन नानी और राती बड़े होते जवाए हेमंत ऋतु ने ओस बले खूबे घसरुआए हेमंत ऋतु चो शीत और शिशिर चो ठर्राती सर्दी चो मंजार चो ऋतु आए जो ने हरिक उदिन संगे संगे श्वास काजे बले नंगत आए आमचो लग आसे पांचवा ऋतु शिशिर शिशिर ऋतु बारची छह ऋतु मन ले गोटोक ऋतु आए शिशिर ऋतु के आमी शीत ऋतु और सर्दी ऋतु बले बलुआ आमचो भारतीय कैलेंडर ने ए ऋतु जनवरी फरवरी जो के आमी माघ या फागुन महीना बोले बोलुआ शिशिर ऋतु के समय ने खूब शीत लागुआए और मौसम बोले शुष्क यानी ठंडा रुआए और लहरा बोले ठंडा ठंडा बहुआए शिशिर ऋतु ने पेड़ पौधा मन के पाना मन बोले निकरुक मुरियाए शिशिर ऋतु ने रवि फसल मन हुआ जसन चना गेहूं जो और खूबे ठान फसल मन हुआ ए ऋतु ने हल्का फुल्का घाम दका दीवाए जोन कारण ने शीत बले नगत लगवाए और संगे संगे ऋतु स्वस्थ काजे बले और देह पाए काजे बले नगत ऋतु आए काय काजे बले ने कि आमचो देह पाए ने रोग प्रतिरोग क्षमता बले रोग संगे लड़तो बीती क्षमता बले खूबे बढ़ुआए ए ऋतु बारह महीना चो सब ऋतु ले ठंडा ऋतु आए जोन थाने शीत चो तापमान जीरो डिग्री से खाले जरूर हुआ ए ऋतु ने ठंडा लहरा चो कारण ने

ऋतु के बलुआत। बसंत ऋतु शीत ऋतु जो पाटकुटी युवा उन्हीं कारण ने बसंत ऋतु ने शीत कम लागू हुआ और रुक राही जंगल झाड़ी ने नवा नवा पाना पती मन बले युवात। और आमचो रुक ने फूल मन बले युवात जोन खूबे सुंदर महकू और संगे संगे बाड़ी खिड़ी ने सरचो सो सुंदर सुंदर पीलिया पीलिया फूल मन बले दकुक मिरुआ। आमचो भारत देश ने रीति रिवाज परंपरा चो अनुसार मांग महीना चो शुक्ल पक्ष ले पंचमी ले बसंत ऋतु चो मोर हुआ बलुआत जो के आमी बसंत पंचमी के रूप ले बनावा। भारतीय संस्कृति रीति रिवाज चो अनुसार बसंत ऋतु के ऋतु मंचो ऋतुराज बले बलुआत और संगे संगे बसंत ऋतु ने त्योहार बाहर बनातो काजे नगद समय बले आए बलुआत। बसंत ऋतु ने आमी होली चो त्योहार बले बनावा आमी एक रंग मंच चो त्योहार बले बोलुआ। और होली त्योहार बसंत ऋतु चो मुहूर्त होतो चीना त्योहार आए और आमचो भारत ने देश ने हरिक उदीले होली त्योहार मनावात। बसंत ऋतु ने शीत ऋतु ले दिन बड़े रुआ और बेर चो घाम खूबे रुआ जोन ले वातावरण खिनिक खिनिक तपते जाऊआ। बसंत ऋतु ने रवि फसल काटतो समय आए जो के आमी शीत समय ने लगा रुआ और बसंत ऋतु के काटुआ आमी उनके रवि फसल बोलुआ। मौसम चो प्रभाव मौसम बदल तो ऐचो प्रभाव जलवायु ने तापमान ने आरु दिन के आरु राति चो बेड़ा नानी बड़े होतर ने रुक राही चो जीव जंतु ने कीड़ा मकोड़ा ने सब जीव ने ऐचो प्रभाव पड़ुआ है। तो आम तुम चो का अच्छा नंगत नंगर गोड़ धरु नेवरो आम चो लगे गोड़ गीत आसे ए गीत के बोले सुनो।

0: એદાય આમચો જાતો સમ્યા હોયસે જાતો ફૂરે પિલામન કાજે ગોર્સ કાર્યક્રમ સુનતો સપાય નાની બડે પિલામન કે મોચો બાટલે ખૂબે ખૂબે મયા આઉર લાડ.
1: बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जेगोट में आप सुन रहे थे. ऋतु चक्र के विषय में प्रस्तुति थी बंशीराम कश्यप की. आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है. रात के 8:45 होने वाले हैं. कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी

0: ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
5: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
4: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, West Bengal government is taking the lands from common people and handing it over to the BCF. The chief minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया.
6: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers in North Bengal, adjoining the Chicken's Neck corridor. The border security force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: ये देश की सुरक्षा का सवाल है.
4: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
7: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and Disaster Response Team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janith Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
8: We are very thankful to India because since the day this Dithwa happened, opened their warm heart to us and we really appreciate their help. We are very good friend of India and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
7: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri initiative as a testament to its human-centered diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and two UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashwani News, Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
9: India jo kiya hamare liye vaccine.
10: At that time, India made a fast response and sent the vaccine to us. I also took that vaccine. It was very good for us, our relatives and all the countrymen. It was a very nice gift from India to the world. So for this, we are very grateful. Best wishes to the Indian government and the people. Many, many thanks to India.
9: India government and people ke liye bahut bahut dhanyawad.
7: In the last 12 years, India has stepped up as a global leader through impactful initiatives like Vaccine Maitri and Operation Sagar Bandhu that blend vision with execution. Its commitment to humanitarian aid and regional partnership is anchored in the civilization ethos of Vasudev Kutumbakam. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
4: Union Minister for Culture and Tourism, Gajendra Singh Shekhawat, has said that the Modi government is committed to the conservation and restoration of India's cultural heritage. In an exclusive interview with Akashwani News, he said, under the mission to bring back stolen or smuggled antiquities from abroad, 670 sculptures and artifacts have been brought back so far. Mr. Shekhawat expressed confidence that this number will cross 1,000 by the end of this year.
11: Under the leadership of the Prime Minister, this initiative has been launched in mission mode under the name Gyan Bharatam Mission. We are digitizing our manuscripts. In this vision, digitization does not merely mean creating a digital copy or storing a digital version of these manuscripts. Rather, the objective is to bring them into a computer-readable format.
4: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, Follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the NewsOn AIR app. External Affairs Ministry today summoned Charge

0: Fares of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of three Indian lives. Our correspondent has the details.
1: The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The U.S. Charge Aid Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operate in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem, with over 2,55,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. A report.
2: Several reforms brought by the government over the last 12 years, from the launch of Startup India, establishment of Atal Incubation Centres, the Fund of Funds and the simplified compliance norms, have transformed India's entrepreneurial landscape beyond recognition. The ecosystem today spans deep technology, space, defence, agri-tech, health tech and clean energy. Among those that will be spotlighted at the summit is MedUpPlus, a medtech startup that has developed a comprehensive, portable eye screening device now being adopted across India, Europe and USA. Built mostly on government support without any venture capital funding. Talking exclusively to Akashwani News, co-founder Ravi Kiran spoke about how the government platform gave their innovation the visibility.
3: When we started, the early stage startups were given a high priority and the government was focusing more on early stage startups, and the government is learning very quickly. Modi ji has started putting a lot of efforts towards not just early stage startups but also the mid stage.
2: It may be noted that India-France Year of Innovation, of which this summit is the centerpiece, seeks to deepen collaboration between the two nations in emerging technologies, startups and scientific research. This is Shailesh Menon, Akashwani News, Nice, France.
0: A Seoul court has sentenced former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison today after finding him guilty of ordering drone incursions into North Korea to escalate tensions and justify his December 2024 martial law declaration. The Seoul Central District Court convicted the jailed former president on charges of benefiting the enemy and abuse of power. Former Defense Minister Kim Jong-un also received a 30-year sentence for his role in the operation. On to sports. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Shen Su-yu in a one-sided quarterfinal clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. Yamaguchi defeated India's Tanvi Sharma in the quarterfinal clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight, with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The match is scheduled to begin at 11 p.m. Indian Standard Time. Indian women's team will start their campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. In FIFA World Cup 2026, co-hosts Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya tomorrow. Heavy rainfall is also expected over other parts of northeast India, Bihar, Kerala, Mahe, Odisha and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. The Met Department said that the southwest monsoon has further advanced into the entire northwest Bay of Bengal, some more parts of West Bengal, Bihar and some parts of Odisha and Jharkhand. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
4: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। कार्यक्रम नंजर में प्रस्तुत है समाज सेवक तुकेश्वर प्रसाद खूंटे से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता।
5: सपाए रेडियो सुन तो भाई बहन के खुबे खुबे सेवा जोहार। जसन की आमी ये नंजर ने कई कसन बलने कोनी बले क्षेत्र ने कोनी बले बाटने जौन बाते हुन बले ने समाज चो उन्ती बाढ़ती काजे कई कसन काम करतो लोग मन बले आसोत रहसोत असन लोग संगे बले आमी गोड बात करून बाती सुनाओ से कसन बले काय की काची बले काम चो जोन मेहनत करे से मसागत करे से संघर्ष करे से हुन चो कहानी के सुन लेने जान लेने जी काय की दूसर लोग के बले प्रेरणा मिले से गोटक मार्गदर्शन असन मन ने जानुक लाए हुए से तो असने ची मैं समाज सेवा चो क्षेत्र ने बलने काम करूँ भाई संग गोड बात कर ले से आरु एमन के यही समाज सेवा क्षेत्र ने काम कर तो काजे हुन मन के डॉक्टर चो उपाधि बले मेरली से तो टुकेश्वर प्रसाद सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा।
6: सर मेरा नाम है टुकेश्वर प्रसाद खूटे और मैं ब्लैक कॉलोनी दरभा में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम है जहानी राम खूटे और सर धन्यवाद आपको भी देना चाहता हूँ कि आज मेरे को यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला।
5: अच्छा चलिए तो आप मतलब कि जो शिक्षा दीक्षा है कैसे हुई कहाँ पर हुई?
6: सर मेरा पढ़ाई पहले उधर रायपुर में हुआ था, कॉलेज तक हुआ था, बाकी मास्टर की डिग्री जो समाज में किया वो यही बस्तर यूनिवर्सिटी से किया हूँ मैं।
5: अच्छा समाजशास्त्र से?
6: जी।
5: अच्छा सर, जी। तो अभी मतलब आपका जो क्या कर रहे हैं, सरकारी नौकरी या फिर कोई समाज सेवा में ही है?
6: हाँ मैं सेवा में ही हूँ सर, जॉब तो नहीं है, कहीं बीच बीच में कहीं जॉब लगता है तो प्राइवेट इसी करता हूँ।
5: अच्छा।
6: बाकी अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जहाँ सेवा देने का मौका मिलता है तो जाता हूँ, अपना योगदान प्रदान करता हूँ सर।
5: अच्छा हाँ, तो ये जैसे कि आपको भी मतलब अभी अभी समाज सेवा के क्षेत्र में पीएचडी की जो उपाधि प्राप्त हुई है, मतलब इसमें तो जो भी इस तरह की उपाधि जो लेते हैं उनको बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तभी इस तरह की जो सम्मान मिलता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज सेवा के जो मतलब क्षेत्र में, सबसे पहले तो समाज सेवा के क्षेत्र में आपको रुचि कैसे हुई?
6: जी क्या है सर, मेरे यहाँ गुरु घासीदास जी हैं, तो मैं बचपन से ही मैं उनके बारे में घर में और सुनते आ रहा हूँ।
5: अच्छा।
6: कि वो समाज के लिए कितने योगदान दिए और हमेशा सत्य के राह पे चलते रहे हैं। तो घर में मेरे माँ पापा भी मेरे को ही शिक्षा देते थे, तो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है वो। और जब मैं 5वीं क्लास में था तो एक कविता बताना चाहता हूँ, स्लोगन श्लोक है, मैं उसको पढ़ा था सर, उसको विस्तार से मेरे को बताए थे जब मैं पूछा तो उस समय था, नर होना निराश करो मन को, नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो यह व्यर्थ न हो। जब ये स्लोगन जब आया था पढ़ा मैं, तो सर लोग बताए तो मैं उनको दोबारा पूछा, मेरे को और विस्तार समझिए, तो बोले कि जिसे हमको जीवन मिला है तो हमारा जीवन क्या होता है कि हम खाना खाए मजदूरी की हो तो हमेशा चलता है, लेकिन जब इस जीवन हमको मिला है तो कम से कम ऐसा काम करके जाओ कि अगर अपना पड़ोसी याद करे कम से कम कि ये आदमी था तो कम से कम अच्छा काम किया, दूसरे खेत के लिए काम किया, तो वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का था। वो श्लोक आप भी याद है।
5: अच्छा जी, देखिए टुकेश्वर प्रसाद खोटे जी, आपको एक छोटा सा श्लोक ने मतलब इतना समाज के लिए एक महान काम करने का जो रास्ता आपको प्रेरणा के रूप में मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी जैसे कि समाज सेवा के क्षेत्र में मतलब क्या करते हैं, लोगों को किस तरह की उनको प्रेरणा देते हैं, कैसे करते हैं?
6: सर मैं क्या है, 3-4 सालों से योदय प्रोग्राम जो चल रहा था, बस्तर में चल रहा है अभी भी, उसमें भी जुड़ा हूँ और अपना समता साहित्य अकादमी में भी जुड़ा हूँ। तो सर अपना सभी क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ तक कि जैसे कोई गर्भवती महिला भी है तो उनको अच्छे पोषण आहार कैसे मिलना चाहिए उनको बताते हैं कि आप अच्छे पोषण आहार के लिए ये सब्जी खाइए, ऐसे करिए, रेस्ट लीजिए, उसको बताते हैं। रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और रक्तदान शिविर लगवा के वहाँ रक्तदान भी करवाते हैं सर।
5: अच्छा
6: जी,
5: तो जैसे योगा से भी आप जुड़े?
6: जी जी, योगा भी सर, जहाँ भी समाज में कभी भी लगता है, अब क्या है बाकी जो क्षेत्रीय लोग हैं कुछ लोग जानते भी हैं, तो किसी कुछ काम भी रहता है उन लोग आते हैं मेरे पास, मेरे को बोलते हैं कि जैसे ऑफिस में बात करना है, तो कभी कभी क्या है गांव से आने से दिक्कत होता है, तो मैं उनके साथ जाता हूँ।
5: अच्छा।
6: उनका काम कराने के लिए उनका बात करने लगता हूँ। अच्छा। सर ऐसा ऐसा काम है इनका, इनका क्या काम है सर, तो देखिए।
5: अच्छा।
6: तो ऐसा हेल्प करता हूँ।
5: अच्छा, लोगों को मतलब किसी काम के लिए मार्गदर्शक कर?
6: जी जी जी जी,
5: ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि कुछ कुछ समाज से भी संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं?
6: जी, तो जैसे अपना समता साहित्य अकादमी भी है, तो इसमें भी सर जैसे अभी स्कूल जब खुला था तो उस समय हम लोग मतलब बच्चे जो गरीब बच्चे हैं और जो एकदम मंडल एरिया के बच्चे हैं जैसे कोलिंग है अपना, वैसी कुछ कुछ पंचायतें हैं।
5: अच्छा।
6: जहाँ पे बच्चे लोग के पास घर में उतना पैसा नहीं रहता घर वाले पास, तो हम लोग समता साहित्य अकादमी की तरफ से हम लोग क्या किए कि जो हमारे जो कर्मचारी लोग हैं या जो सक्षम हैं उनको जाके हम लोग बोलते थे कि सर आप बुक डोनेट कर सकते हो, तो कोई 10 कॉपी 10 पेन 10 पेंसिल चाहे 5 पेंसिल भी हो या सिस्टमेटी भी कुछ भी। अच्छा। अपनी तरफ से उन लोग योगदान देते थे, तो हम लोग इकट्ठा करते थे और उसको फिर सिविल लगा के स्कूल मन में बांटते थे।
5: अच्छा
6: जी,
5: तो ये तो मतलब सेवा का जो क्षेत्र आपने चुना है, मैंने हमारे बस्तर जो जिला में है सब, वो सबसे पिछड़ा जो ब्लॉक माना जाता है, तो यहाँ के लोगों को मार्गदर्शन करना और उनको ऊपर उठाना, एक सही राह पर ले जाना भी बहुत जरूरी है। तो आप मतलब उस क्षेत्र में कब से मतलब ये कार्य कर रहे हैं?
6: सर मैं यहाँ बस्तर 13 में आया था, 2013 में, तब से यही हूँ मैं दरभा में।
5: दरभा
6: जी, तो 13 के बाद मैं 15 से जुड़ा हूँ। पहले एक रामकृष्ण शारदा सेवा आश्रम करके चलता था प्रोग्राम, तो उसमें गर्भवती के ऊपर ही फोकस था, काम करते थे छोटे बच्चे के ऊपर, तो वहाँ 2 साल सेवा देता था। उसके फिर योद्धा प्रोग्राम, फिर समता साहित्य, वैसी मतलब जहाँ भी लगता है कि ये समाज सेवा के लिए काम है तो वहाँ मैं झूलता हूँ, निस्वार्थ भाव से अपना सेवा देता हूँ।
5: अच्छा, तो मतलब हम दरभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे, वहाँ पे मतलब ज्यादा करके मतलब किस चीज को हम प्राथमिकता के साथ मतलब समाज सेवा में योगदान दे सकते हैं?
6: जी, वहाँ क्या है सर, कुछ जागरूकता तो बहुत जरूरी है, खाने पीने में भी है, क्योंकि एनीमिया और खून की कमी होती है और बहुत दिक्कत होता है। उसमें हम लोग जो बीएमओ साहब है उनके साथ भी बात किए हैं, उन लोग मार्गदर्शन करते भी हैं, और एक प्रकार से जो मलेरिया जो होता है सबसे खतरनाक घातक हमारे दरभा में ही होता है, बस्तर में, बाकी जगह नहीं होता, तो उसके लिए भी हम लोग गांव में जाने से मच्छरदानी का उपयोग करना है और कहीं कचरा मतलब पानी इकट्ठा करने ना दें तो उसको भी करते हैं सर, ये ज्यादा जरूरत है यहाँ बस्तर में।
5: अच्छा
6: जी, और आजीविका भी बहुत जरूरी है सर उनके लिए, क्योंकि बहुत बच्चे लोग क्या है दसवीं पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद फिर उनका विवाह हो जाता है तो बाद में क्या है दिक्कत होता है, ऊपर से कम उम्र में कभी कभी शादी भी कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर्वस्तर के लिए। इसमें मैं मतलब इसी एक बार चर्चा भी किया था, मैं मांग भी किया था, सीएम आए थे उस समय, आवेदन भी दिलवाए थे हम लोग कि दरभा जैसे जगह में कॉलेज की रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर अंदर गांव से आते हैं बच्चे लोग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से, और जगदलपुर आना तो उनके लिए पैसा भी इतना नहीं है कि वो जगदलपुर अप डाउन कर सके, तो इसीलिए दसवीं बारी पढ़ के छोड़ देते हैं बच्चे लोग। तो मैं एक बार एप्लीकेशन भी दिए थे हम लोग, बात भी हुआ था लेकिन कुछ कारणवश नहीं हुआ होगा।
5: अच्छा, जैसे कि आप उस क्षेत्र में आजीविका के लिए मतलब बहुत तकलीफ है, तो इस तरह से उनको कोई स्वरोजगार के लिए भी कोई ऐसा आप लोगों ने काम किया है लोगों के?
6: हाँ जी सर, जैसे मैं सर क्या करता था कि जैसे शिविर होता था जगह जगह में तो मैं वहां जाता था और योजना के बारे में जानकारी लेता था, पूछता था क्या योजना है, कैसे मिलेगा।
5: अच्छा,
6: तो कुछ कुछ योजनाएं मेरे को पता चलता था, मैं क्या है वो दूसरे को बताता था। दस लोग, अगर मैं 10 लोग को बताया तो एक आदमी भी अगर फायदा लिया तो मेरे को अच्छी बात है, मेरे लिए समझो गर्व की बात है। तो कुछ लोग फायदा भी लिए और ले भी रहे, जैसे मैं कुछ भी जानकारी मिलता है जो योजनाएं होती है तो मैं हर किसी को बताते जाता हूँ कि ये योजना है भाई, लेना है तो ले लेना, यहाँ बात करना है, अगर नहीं होता है तो बताओगे तो मैं साथ में जाऊंगा, बात करने लगूंगा, अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है।
5: अच्छा
6: जी।
5: और खुटेश्वर जी, जैसे कि समाज सेवा के क्षेत्र में मतलब बहुत सारी जैसे ट्रेनिंग वगैरह है, प्रशिक्षण वगैरह है, कई जगह होते रहते हैं, तो ऐसा मतलब उसमें आप की भागीदारी कहीं हुआ है क्या?
6: नहीं, ऐसा नहीं हुआ है सर।
5: नहीं हुआ?
6: नहीं जी।
5: अच्छा, तो जैसे कि आप बहुत सारे मतलब समाज सेवी संगठनों से जुड़ करके उनको सहयोग देते हैं और इस समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो आपको कैसे मतलब ऐसा खबर मिलता है कि किन के साथ हमको जाना है, कहाँ जाना है, किन चीजों के बारे में उनको मार्गदर्शन करना है, इसकी तैयारी तो जरूरी है
6: जी। तो इसमें सर क्या है, अभी सोशल मीडिया है तो व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, तो इसी जैसे समत साहित्य है, योदय है, तो ग्रुप में डालता है कि हमको जैसे बरसात आ गया तो हमको ये क्षेत्र में जागरूक करने की जरूरत है, तो उसकी जब सूचना मिलती है हाँ ठीक है तेजी जागरूक करना है तो निकल जाते हैं। आज कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 किलोमीटर के आसपास या 2 किलोमीटर या कोई मिल भी गए उनको हम बता दिए, उनको बोल दी कि भैया आप भी 2 लोग को बता देना, ऐसा सावधानी बरतना है, ऐसा है बोल के ऐसा समझो सर ऐसे बताते हैं।
5: अच्छा
6: जी।
5: तो ऐसे आपको कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा समाज सेवा के क्षेत्र में मन में ऐसा संतुष्टि आपको महसूस हो रहा होगा कि कोई ऐसा समाज सेवा का कार्य किया हूँ, ऐसा कोई याद है?
6: हाँ जी है सर, ये एक बच्चा है वो अपना बस दरभा ब्लॉक के दिल मिली एरिया का है, पखनार या दिल मिली एरिया का है, लड़की है वो क्या है स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, कस्तूरबा में रहती थी, और हम लोग जब घूमने गए थे इसी तो पता चला कि दोनों पैर उसका बचपन में कुछ कारणवश चल गया था, तो यहाँ से माली के नीचे से कट गया था।
5: अच्छा,
6: तो जगदलपुर में जब सिविल लगा था तो मेरे को याद आया कि वो बच्चे का ऐसा मैं देखा था, तो उसको पता किया बच्चा कहाँ है, तो पता चला कि कस्तूरबा में है बच्चा, वहाँ स्कूल में। फिर मैं गया, मैडम लोग से बात किया, एक मैडम भी गई साथ में, और मैं अपने खर्चे से ही बच्चे को उठा के जगदलपुर लाया, और दोनों पैर उनका जो लगता नहीं है वो लगा सर।
5: अच्छा
6: जी, तो बहुत अच्छा लगा, सुकून लगता है
5: सुकुन,
6: कि किसी का भी छोटा सा भी काम करोगे और उसके बदले में एक छोटा सा दुआ मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून से। मैं उसी के लिए काम करता हूँ।
5: अच्छा
6: जी।
5: तो अभी मतलब भविष्य में आपकी मतलब क्या प्राथमिकताएं रहेगी?
6: सर जहाँ भी जरूरत लगता है, मैं तो हमेशा समाज में ही, मेरा बचपन का ही था कि दूसरे खेल पे ही करना है, और एक अपना दिल की बात बता रहा हूँ, मेरा मेरे को कभी ना नौकरी या जॉब करने का कोई मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं।
5: अच्छा,
6: मेरा था कि समाज सेवा करूँ, मजदूरी भी करूँ लेकिन दूसरे के हेल्प करूँ। अच्छा, ऐसा मेरा मतलब दिल है। और कभी भी क्या होता है सर, जैसे मैं किसी को देखता हूँ तो उसमें अपने आप को झांकता हूँ, मान के चलो कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है या बूढ़ी महिला जा रही है या कहीं बैंक में लाइन लगे रहते हैं बहुत जगह, या तो सोसाइटी में लाइन लगे रहते हैं, तो वहाँ मेरे को आभास होता है कि वहाँ मेरे माँ बाप रहता, मतलब वो खड़े हैं उसके जगह, मेरे माँ बाप अगर खड़े रहते तो मैं क्या करता।
5: अच्छा,
6: तो ऐसा मेरे को फीलिंग होता है,
5: होता है।
6: जी, तो ये दिल से उठते है सर सेवा, और मैं दिल से करता
5: हूँ। अच्छा, टुकेश्वर कुटे जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो समाज सेवा के क्षेत्र में आपको जो डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है
6: जी,
5: तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए कि मतलब क्यों मिला, कैसे मिला, क्या कारण, आप तो महसूस कर रहे होंगे।
6: जी जी, पहले मेरे को सर समता साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ धमतरी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समता अवार्ड का पुरस्कार मिला था। उसके बाद सर अखिल भारतीय शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय समाज दुस्सम्मान जांजगीर से प्राप्त हुआ। उसके बाद सर गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा ग्लोबल सोशल आइकन सावित्री बाई फुले अवार्ड शिमला में प्राप्त हुआ। सर साउथ वेस्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी चेन्नई से डॉक्टरेट इन सोशल वर्कर की उपाधि प्राप्त हुआ सर।
5: अच्छा,
4: कार्यक्रम नंजर में आप सुन रहे थे समाज सेवक तुकेश्वर प्रसाद खूंटे से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। कार्यक्रम खेल पत्रिका में आइए सुनते हैं मैराथन खिलाड़ी कुसुम शार्दुल से भरत कुमार गंगेदित्य की भेंट वार्ता।

0: साप्ताहिक खेल पत्रिका। खेल पत्रिका सुनतो जमाए दादा दीदी सियान सजन मन के खूबे खूबे जुहार। दादा दीदी मन जसन की तुम्हें जानास कि आमी बेरा पछताए था खेल पत्रिका कार्यक्रम ने कई जन खिलाड़ी मंचो खेल चो जानकार मंचो भेड़घाट के आमी तुमके सुनाते रहूं से असनी आम चो लगे। आजी अमरली से कुसुम शार्दुल ये बस्तर हेरिटेज मैराथन जो हो रहे हो तब पहली स्थानीय मन के मेरू रहे तो अली मन संग गोड़ बात करूं सबले आगे कुसुम तुई तुचो परिचय तुचो जन्म बार कहाँ होली तुचो पढ़ाई लिखाई कहाँ होली और एबे कितरो पढ़ाई कर ली सी ये जमाए गोट के आम चो सुनते दादा दीदी मन के साथ
1: मचो दादा दादी मन के सबके जुआर। मचो नाम कुसुम शार्दुला है। मैं मंदोता बस्तर चौहान का है तो वहीं से जो पढ़ाई है मचो कंप्लीट होली से पहली ले दरो बारहवीं तक। हाँ मंदोता ले
0: तो पढ़ाई कहाँ तक होली से
1: पढ़ाई बारहवीं तक होली मचो।
0: हाँ जो चो ये पट पढ़ाई नहीं होली
1: नहीं होली से थोड़े दिक्कत होते रहे होने कारण से नहीं कर ले का है।
0: तो जसन पढ़ाई तो बारहवीं तक होली और ये खेलकूद हिसाब ने काय काय ने अच्छा लागे से खेल तो बीते और काय ने रुचि आसे
1: खेलकूद का मके दौड़ तो ही अच्छा लागू है का है। चल पहले कबड्डी बल अच्छा लगते रहे लेकिन एक बार मच मुंह के पाव रहे उसमें दाद गड़ रहे होने का मके डर लगवाए कबड्डी खेल तो काजे और हम जो आम चो दौड़ तो बीती आए उन खूब ही अच्छा लगवाए मके होने का उसी में मच रुचि आसे उसी में करे से अभी
0: तो मैराथन बोलुआत बल्लो ने होनी दौड़ तो परा तो बीती ने।
1: हाँ परा तो बीती का है।
0: तो मैराथन ने ये तो हिसाब कसन होली और कसन करुण भाती मन नहीं ले कि मैं यही खेल के मैं चुनाव करूँगा ये खेल नहीं हुआ है बोलूँ।
1: हाँ सबसे पहले मैं कोनी सांगला कि हाँ भर्ती वर्ती हुआ है का है क्योंकि जसन बारी हम गांव ले आए हम नहीं जानते रू हम का है कि कहाँ पढ़ते रहा है कसन करते रहा है कि थोड़ी बहुत हम जो सर मन जो पढ़ा रुआत का है उन मन सांग रुआत का है हाँ आगे पढ़ते रहा है का है वहाँ से आगे जाऊन भाती हमके नौकरी मिलवा ये मिलवा है जो उनकी अच्छा तो घर जो परिस्थिति है उन बल ठीक हुआ है बोले उन हम चीज स्कूल में सांग तो रहा है का है सर मंचो हुनी मंचो गाइडेंस मतलब जो सांगते रहो सर मन हुनी मन के सुनन सुनन आगे का है तो जसन बारी निकलन कुछ ना कुछ तैयारी करते रहे असन लागते रहे का है उधर ने इंटरेस्ट लाग लिया अच्छा लाग लिया नहीं मग जाते रहे नौकरी सरकारी नौकरी करते रहे का है बोले बाद में वही से तैयारी शुरू कर ले बस्तर फाइटर बीती अभी जो बीती है 2021-22 में शायद तो उसी में तैयारी कर ले तो उसमें मके अच्छा लाग ली का है तो
0: काय तैयारी कर ली सुता
1: वहां जान पुलिस भर्ती ने लंबी कूद ऊंची कूद गोला फेंक उतर 100 मीटर 3 किलोमीटर हर मतलब करावात का है। हाँ तो वहीं पे मचो काय जाऊ रहे तो वहां नहीं होली मचो तो बस्तर फाइटर बीती में
0: मतलब कौन था नहीं जाऊ रहे
1: यहाँ पे परपा में हाँ वहाँ हो रहे फिजिकल जो दौड़ धूप आए का तो नी होली का है उधल दाय में खूबे मोटी रहे का है पर आग नहीं सकते रहे का है 50 मीटर पड़ा तो मचो बहुत दूर ची बात है सांस फूलते रहते रहे की अहन लागते रहे अंदर से बहुत लेकिन अंदर से लागते रहे छोटे बेला मचो इच्छा रहे की नहीं पहले मतलब पुलिस में जाते रहे वहां अच्छा दुखवाता सन टाइप जो जो वर्दी कपड़ा आए जो खाकी वर्दी पिंत रहा है शौक लाग
0: अच्छा रहे
1: हाँ अच्छा लागे तो वही मतलब छोटे समय ले इच्छा जो ना से हाँ उदली दायले का लेकिन गांव में जो तैयारी वैयारी करावात का है लेकिन हुन नी दख्त रहा का है जब भर्ती जाऊ रहे तब नी होली का है मक अंदर से लाग ली नहीं इसमें मक जात रहा का है इसमें मतलब पुलिस भर्ती में जात रहा है नहीं कुछ बल कायद करते रहे तब मैं उदल दायले ही कायद कर ले तब अच्छा लागवा है दौड़ तो काज और मज गोटोक दीदी रहे है उन सांग ली कि नहीं दौड़ तो रहा का है जहन अभी मोटी आसी तू नहीं निकला लीस फिजिकल तो तू जान का है तो उनके तैयारी करते रह का है तब कहीं जा से तो वहां पैसा बल मिलवाए असन कर उन बल नहीं मा के मच दीदी तब मैं जानू हाँ ठीक है बल्ले का है वही फिर कर ले मैं वहां से बस्तर फाइटर जो भी थी बाद में नहीं होली तो वहीं पे हम जो यहाँ जगदलपुर में इंदिरा स्टेडियम बस वहां पे हम जो मैडम रहे एसटीपी मैडम उन जानू आम के का है तो बेसिक ट्रेनिंग दिली का है थोड़े मोटी जसन रहे तो वहां से जानू मके दे तो फिर धीरे धीरे मैं सीख
0: तो
1: ले का है
0: ट्रेनिंग बोलो नहीं परा तो बीती
1: हाँ परा तो बीती क्योंकि बहुत मोटी रहे नहीं खूबे मोटी रहे मैं दिक्कत होते रहे परात का होनी मैडम सिखाली एक्सरसाइज काय करत रहे कसन करत रहे कितरो परात रहे हाँ धीरे धीरे मत शरीर फिट होली का है बरा तो लायक जो उधर डाली अच्छा लागली और दीदी बल संग रहे नहीं कहीं मतलब बाहर बल जात रहा है अच्छा आएगा फिर वहां से मक इंटरेस्ट लागली का है नहीं मक परात रहेगा है परात रलन जोन बल भर्ती है दे तो उसमें दे दे असन थिंकिंग इली सोच विचार हाँ
0: तो फिर जसन मन तो इली तो ये मैराथन ने भाग धर तो कहाँ कहाँ होली से फिर कहाँ उतोल फिर कहाँ कहाँ भाग धर तो होली
1: उतरन यहाँ पे हम जो का है तो नारायणपुर होली का है
0: काय होली होता है
1: वहाँ पे मैराथन होली का है हाँ उसमें जा रहे का है
0: तो काय होली कितने किलोमीटर चढ़े
1: वहाँ 21 किलोमीटर चढ़े का है वहाँ दौड़ ले उनसे पहले का है तो इंजरी रहे तो छाड़ रहे का है मैं हाँ मतलब जो कमर दुखा है मतलब जो अभी जो सीजी पुलिस ली उनसे कैसे तैयारी करते रहे तो मचो उसमें लॉन्ग जंप एक दिन करुक जा रहे हैं उसमें मचो करण लचक लिखा है उनसे कारण
0: हाँ
1: करु रहे
0: कितने दिन तक कसन
1: करीबन 8-9 महीना जनवरी में दिलान भाती छाड़ रहे का है हाँ उतरन बाद में तैयारी कर ले बस 4-5 महीना तैयारी कर ले का है उतरन नहीं 2 या 3 महीना बाद में हम जो अभी जनवरी में होली का लास्ट महीना में नारायणपुर में तो उसमें गेले का है वहां पे पोजीशन लगे जोन मचो वहां यहाँ तो मैं इंदिरा स्टेडियम करते रहे उतरन इंजरी होली में छाड़ ले वहां करते रहे का है हम जो धर्मपुरा स्टेडियम आ से हाँ परिसर भी स्टेडियम आ से तो वहां करते रहे वहां फिर एक जन भैया मिल लो मके हन बोले पुलिस विभाग जो है मनोज करटम करुण भाती हाँ उन भैया बोल मेरा थन तैयारी करवाए गए हाँ बाहर बाहर खिलुक जावा तो हुन जानू मतलब नहीं कुसुम तो ये एक दिन हुन जसन परा ले का है हाँ करीबन 45 मिनट जसन परा ले नहीं कुसुम तु पराक शख्स का है तु पराव का है असन करुण भाती बल्लो का है तो हुन जिसन उन्हें प्रैक्टिस कराते रहे तो मैं हुन जिसने करते रहे उन खुद कराते रहे हाँ नहीं कुसुम भाग तो रहे का है उन खुद मोटिवेट कराए मके इच्छा मतलब अंदर से कि नहीं कुसुम पराव का है तु पराग सकीस अंदर से इतरो मतलब कायद करे का है और उन्हें तैयारी करा लो फिर वहां फिर नारायणपुर में होली गेलू का है फिर वहां पे जो पोजिशन लगली थर्ड पोजिशन लगली
0: नारायणपुर ने
1: हाँ थर्ड पोजिशन तीसरा पोजिशन ली तो उसमें मंगे थोड़े अंदर से दुख लागली क्योंकि थोड़े उन चल ज्यादा कर रहे हैं तैयारी और भैया बोल बोलते रहे जोन मच करा तो बीता कोच भैया है नहीं कुसुम तू चो दे फर्स्ट है दे का है बोले लेकिन मतलब लड़की मन से थोड़ी दिक्कत रुआ का है पेट दर्द कभी का है महीना में जो एवाए जो नून दर्द तो उनसे चक्कर में मच नहीं हिली का है अंदर से जब वहां पहुंच ली मग लाग ली है नहीं मतलब पहले शिकायत लागत रहे भैया के सांग ली नहीं भैया थोड़ी दिक्कत हो मैं कुछ दिन के असन करूं भाती तो भैया मैं कुछ नहीं बोलो का मैं जब थर्ड प्लेस लग ली चलो कोई बात नहीं बहुत ही अच्छा मतलब कायद के लिए जब 2 महीना मित्र रिजल्ट आने को सकीस तो अच्छा है देखा 2-3 महीना चो बोलो का तो वहां लग ली लेकिन मगे अंदर से खुश नहीं लागत रहे क्योंकि मैं उन हिसाब ने मैं तैयारी करते रहे का हाँ सुबह शाम जात रहा है सुबह 2-3 घंटा फिर शाम के 2-3 घंटा हाँ मेहनत सुबह शाम करते रहे तो अब उन रिजल्ट नहीं लन तो दुख है देखा है
0: दुख हो दे, हाँ
1: फिर 11-12 बजे तक

0: नहीं कुसुम, हुन बोल ऐसी अभी तैयारी कर, मैं कर आए तू के तो अच्छा रिजल्ट है दिखाए। 42 किलोमीटर आए, 42 किलोमीटर बोलो ने एक बार सोच तो भी थी बात आए का 42 किलोमीटर बोलो ने जो 42.1595 किलोमीटर आए उनके तय कर तो रहे का है, मतलब बहुत दूर सी बात आए का है। अब मैं पहले तो पराख नहीं सकते रहे का है, बहुत दिक्कत होते रहे लेकिन तैयारी करते रहे, छाड़ उन बोल रहे हैं। हाँ बेसिक ट्रेनिंग यहाँ वहाँ करते फिर दर्द कारण छाड़ रहे, तो उन सब कुछ याद कर रहा है यार, कोनी सुना उरत रहा है कि नहीं कुछ तू करु कसन नहीं सकी सन सन उन सब कुछ के मैं जाए और प्रैक्टिस में जब सुरता करे तो नहीं मग कर तो रहा है का बोले भाती मैं करे का है। फिर भैया बोले फुल का है तो सपोर्ट करे कि नहीं कुसुम, तो कात कर तो रहा है यहाँ बस्तर का जेत रहा है सुन करुण भाती। फिर भैया सुबह शाम तैयारी कराए, कभी धूप ने बलहाक दे का मके कुसुम आओ तु खाना वाना खा लीस कि नहीं, हाँ खा ले ठीक है तू जूता पिंदू नाओ, तो उन सब कुछ सुरता कर लन खूब कायद लगवाए का नहीं कोनी कोच आए जो गुरु रु आए सिखा तो भी था हाँ कोई अच्छा काज सोचवाए बोलून भाती, लेकिन कभी कभी गागुक बल भात रहे कि नहीं नहीं इतना धूप ने काय का जुसन कायद कराए, मैं कभी कभी गुस्सा होता है अपने आप के कि भैया मैं काय का जुसन कराए से, लेकिन जब रिजल्ट इली तो बहुत अच्छा ही ली गए। हाँ फिर काय
1: तो दिन ने कितरो टाइम तक तुम चुप प्रैक्टिस होते रहे?
0: सुबह ठंड टाइम होलो ने 4:30-4 बजे उठून तैयार होते रहे का है, 5 बजे तक पहुंचते रहे का है, 1.5-2 घंटा कंटिन्यू भगाए का है भैया, इंडोरेंस चाहिए मतलब जो सांस ले तो बीती आए का है, हाँ उन चाहिए तो कंटिन्यू तो भागुक पड़े कुसुम उतर दुर्भाग तो रहे तो। और एक जन भैया बोल रहे हाँ तू 3 घंटा तक भाग से तब तू 42 किलोमीटर भागुक सक से, हाँ तो बोले 3 घंटा भाग तो रहे इतरो दूर बाप रे मैं तो उतरो भागुक बोल नहीं सके, लेकिन जब 21 किलोमीटर भाग रहे हैं तो लाग ली कि नहीं भागुक हो दे अभी मतलब उतरो भाग ले से तो और थोड़ी तैयारी करें दे तो अच्छा हो दे बोलून भाती। हाँ फिर उतरो ने फिर कंटिन्यू उसने कर ले का भैया करा लो वर्कआउट करा लंबा लंबा। एक दिन उसने शनिवार जो दिन रहे का उन दिन अच्छा लंबा भी थी वर्कआउट रहे 30 किलोमीटर जो रहे, हाँ मैं जानू 25 किलोमीटर कर ले का हाँ उधर उधर ग्राउंड ने बोले गोल गोल घूम तो जो 400 मीटर आए वहां पे गोल गोल लगा तो दिमाग बोल काय हुआ है काय, हाँ खुद चो घेन तो रहा और परा तो बोले बड़ा तकलीफ काय हुआ है दिक्कत 25 किलोमीटर भाग ले। फिर मैं जो वहीं पे ही मतलब थोड़ी दिक्कत हो पेट दर्द और पीठ दर्द स्टार्ट हो ली वहीं पे, हाँ तो भैया बोले नहीं भैया मैं पराग नहीं सके का है थोड़ी दिक्कत होली से अब को की सांगू नहीं सके कि लड़की मन कुछ ना कुछ दर्द आए ये वाय का है, तो वही ली मैं सांग ले। अब बहुत सारे भैया मन रोत का है वही साथ में करते लोग मन नहीं भैया अब उतरो लोग से पूरे सांग बोल नहीं सके, फिर जूता उता निकाल ले कपड़ा पहन ले नहीं भैया नहीं सके का पराग लाए बोलिन भाती, भैया मैं खींच लो का कुसुम तू 1 रुपया बोल नहीं मेरे वहां पे जब मेरा थनकर से नहीं अभी 42 किलोमीटर पराग बोले अभी बीच में तू वर्कआउट छाड़ सी तो तू पराग नहीं सकसे अभी तैयारी नहीं करी जाले बोलू भाती, इधर जोर से खींच लो गए अंदर से लाग ली फिर एकदम से गांगेदा होले का एकदम आंख में आंसू होले और जानू फिर से जूता पहन ले और फिर परा ले 5 किलोमीटर 30 किलोमीटर कंप्लीट कर ले। तब भैया देख लो आर गेलो ठीक है अब पानी अच्छा से पीऊ और रेस्ट कर का यार शाम के नी आओ का बोले ए बात जलाओ नाल तो नी आओ का बोलून भाती, हाँ गागते गागते बहुत दिन जो एकदम से गागेंदा हो ले का मैं और परा ले लेकिन कंप्लीट कर ले कंप्लीट कर तो बीती भले धीरे धीरे करूँ लेकिन कंप्लीट कर लो बीती अंदर से भी अच्छा लग हुआ है का हाँ और जानू छाड़ लो बीती अंदर से गवा नहीं देवाए नहीं आज मुझे वर्कआउट नहीं होली का है बोलून भाती।
1: तो ये मैराथन बस्तर हेरिटेज मैराथन रहे हुन थाने पहला स्थान मिल ली,
0: हाँ बस्तर हेरिटेज मैराथन में मुझे पहला स्थान मिल ली मतलब उतर वर्कआउट कराए तो हुंचे हिसाब ने सुबह शाम कभी कभी धूप में बलहाक दे आम चो जो सांस ले तो बीती आए हुंचो पूरा कायत हो रहे नहीं धूप में उतर घाम ने 12 बजे 1 बजे 2 बजे जो घाम ने 1-2 घंटा 2 घंटा बोले लेकिन 1 घंटा में भागी का है तो दिक्कत है लेकिन होनी दिक्कत थी बोलू बात नहीं कितर जितर ज्यादा मेहनत करुआ उतर हुंचो फल मिरुआ है बोलून भाती, जैसे नाम चो गाँव ने आम चो दादा दीदी मन रुआत का है वहाँ जैसन खेती बाड़ी करुआत हाँ। जैसन धान कायत करुआत हुन पहले ट्रैक्टर ने वा जूता वात उतरन फिर लाटा लाटी कायत करुआत हाँ।

0: उचावात काय पारी मन के छोलवात उतरण रोपा मंडात भी त्याय तो हुंचे का स्तर लागू आए नहीं तो धान लगात रहा है तो भुनुआत फिर उतरण के दखुक बल जावा समय समय में फिर उसमें बाड़ू आए उन सब कुछ एक काय तो रुआ है उसनी आंच बल शरीर
1: शरीर
0: हाँ तैयारी आए का हाँ मैराथन का जे
1: मैराथन का कहीं बल खेल का
0: हाँ शरीर का कहीं बल खेल का शरीर का जे
1: हिसाब ने तैयारी करो
0: हाँ हिसाब ने तैयारी करु पड़वाए का उसनी छोटे मतलब जतन करू अपने आपके शरीर के बल उसनी करु पड़वाए
1: अच्छा दूसरा गोठ है कि जैसे मैराथन चो गोठ आम गोठी आम से
0: हाँ,
1: तो होंचो काय काय नियम आए
0: हाँ,
1: मैराथन बोलो ने आम चो हाँ, सपाई एबे नुआ पीढ़ी चो लेखा लेखी मन बोले आसोत कोनी जैसन पूरे ये तोर मन आसे का कहे तो होंचो नियम काय काय रहे
0: हाँ हुंचो नियम बोलो ने जहन आम 42 किलोमीटर भाग लुकाए उतरो दूर तय करत रहे तो एक नियम रुआ का है जहन जूता सोला गोटोक सोल बीती पिंत रहा का है एक ठन दुई तीन ठन बीती नहीं पिंत रहा है उतरन फिर आप लोग का है तो अच्छा से तैयारी संगात रहा है पहले से संगाक पड़वाए का है फिर उतरन जो बॉडी का जाए उससे पहले एक दुई सप्ताह पहले तीन सप्ताह पहले एक महीना पहले बॉडी की मेंटेन संगात रहा का है जसन तेल फूल चो खातर बीती आए बाहरी बीती खातर नु आए मतलब बहुत सारा रूल्स रुआ का है आमचो तो उनके फॉलो कर लेने उनचो रिजल्ट खूब अच्छा मिलवाए का है मैं बल खुद नहीं खात रहा का है सोजी उबला उबला खात रहा है दाल दाल सीटी लगा थोड़ी जैसे नमक थोड़ी जैसे हल्दी हाँ उतरी नहीं तो पालक अलग या कुछ और बल बनाए थे उनको थोड़े से एकदम से नाच बराबर थोड़े जैसे जीरो ऑयल बुलवा हुनी के बनान भाती हाँ तसली हाँ मैं तेल लगान भाती खाए से हाँ उसन मेंटेन कर पहले से कर रहा ने क्योंकि उतर दूर भाग तो रहा है शरीर की मेंटेन संगा तब तो भाग खोए दे 42 किलोमीटर बलन बहुत दूर च बात आए का हाँ तब वहां से हाँ 42 जो नियम आए का है उन्हीं कायद करुक पड़वाए का है जैसन की 42 किलो एक जगह से दूसरे जगह हम के जात रहा है तो उन रूल्स है का है उनके फॉलो करुक पड़वाए का है तुरंत फिर जान जगह जगह पानी बल रुआ है
1: हाँ।
0: दूसरा कोनी नहीं देता रहा है होनी पानी पी उतरा है जैसन केला है
1: आयोजक आत
0: हाँ आयोजक हाँ,
1: संगाल वासे हुनके पी उतरा है
0: हाँ,
1: दूसरा बाहर ले देऊ
0: हाँ संस्था साइड ले संगा रुआ हुनकी पी उतरा है हमके जगह जगह संगा रुआ जैसन केला है उसके बाद एनर्जी ड्रिंक उसके बाद असन कुछ कुछ और काय काय ऑरेंज संतरा संतरा उतरा संगा रुआत का है फिर पानी बोतल मन तो संगा रुआत का है उसने संगा रोत यहाँ भी अपन आमचो का है तो लाल बागले और चित्रकोट ले होलिये बीती हाँ मैराथन में अच्छा लागली का है यहाँ जो शुरू बल करत रहा है उतरो दूर तय करत रहा है तो आम के शुरू में आम के धीरे धीरे करत रहा है जैसन की 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उनके धीरे धीरे आप लोग फेस मेंटेन करो
1: धीरे धीरे बढ़ा तो रहा है
0: हाँ हाँ हाँ
1: पाचे हो उनके
0: हाँ
1: गति के
0: हाँ
1: स्पीड के बढ़ा तो रहा है
0: हाँ उसने करत रहा है क्योंकि हम जहन की 100 मीटर भागवा हूं मन स्पीड भागवात या 400 बल भागवात हाँ उन मन स्पीड पर आवाज का है क्योंकि हमके खत्म एक जगह से यदि यही पास में ही खत्म करता रहा है बोलून भाती लेकिन उतरो बीती 42 किलोमीटर भागता रहा है तो उन जगह जी हमके धीरे धीरे भाग पड़वाए गए वहीं पे हाँ
1: और ये जैसा ये होली मैराथन गोटोक और सुना दे ऐसे वॉक थान बोलो ने पैदल चाल
0: प्रतियोगिता
1: हाँ मैराथन बोलो ने परात बीती प्रतियोगिता और हुन पैदल हिंड तो बीती प्रतियोगिता तो ये दोनों ने काय फरक आए हुनके खिंडी काम चो सुन तो दादा दीदी मन सांग
0: हम जो दादा दीदी मन के ही सांगे काय तो जो मैराथन बीती है हुन अरक फरक रुआ का है क्योंकि इसमें पैदल हाँ उसमें परा तो रहा है और इसमें पैदल चल रहा है जो नामी जो ड्रेंग उनसे उसमें कुछ कुछ रूल्स रुआ का है जन की एक पाय नीचे काय जमीन में आसे एक पाय ऊपर आसे टाइप अरे जल तो बीती ज्यादा घुटना बल नहीं मोड़ रहा है हाँ जमीन में ही रत रहा है
1: घुटना नहीं मोड़ रहा
0: हाँ ये खूब सारा रोल शुरू है इसमें भी पैदल चल में और जैसे पानी बटल है उसमें बल एनर्जी ड्रिंक जैसे हम 42 किलोमीटर का है तो बीच बीच में धरू हम थोड़े थोड़े गुड़ उसने बल यहाँ पे बल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उसमें बल मैराथन हाँ सावधानी बर्तुक पड़वाए का है
1: तो ये पैदल चाल नहीं बोले कहा भाग धर तो रोल
0: हाँ हाँ यहीं पे पिछले साल रह का है महिला दिवस दिन 8 मार्च अभी 2025 में रहे उसमें हाँ उसमें बल सुन ले का है उदल मैं जो यहाँ रहते रहे तो वहाँ रत रहे पैसा चाहिए इधर उधर का है तो कायत होते रहे फिर जूता बल दिक्कत होते रहे उससे पहले मैं गांव ले बोले जो 4-5 बीती जूता है उन्हीं जूता पीन उन भाती मैं दौड़ते रहे का है हाँ उसमें बोले घुटना उठना दर्द या सीन पेन बोलीवात का है हाँ उनचो घुटना नीचे हुआ है वहां दुख तो रहा है फिर का है तो मग लागली कि नहीं मग पैसा चाहिए कि उससे पहले मैं बहुत कायत होत रहे जूता मन गेंद रहे 1000 रुपया बोले नी टिक रहे 2-3 महीना टिके और ऊपर से दर्द वर्द बल हो लेकिन तो भी पर आए उतरन बाद में अभी फिर 8 मार्च जो हो रहे उसमें काहे तो लागली का नहीं मग जूता घेंद और दूसरा भी घेंद रहे बोलन बाद फिर वहां पे नहीं अंदर से रात में लागली उससे पहले ही सुन रहे मतलब वहां पे 9000 मिल रहा है फर्स्ट इनाम बोलन बात तब मैं बोले नहीं ये पैसा कांत रहा है मगे तब मैं अच्छा जूता घेने दे कम से कम 2021-2100 में जो 2500 में अच्छा जूता ये वाय का कम्फर्ट रुआ है बीती नी दुख आए बोलवात का क्योंकि भैया मन पिन तो दखते रह रहा है कोनी कोनी भैया मन महंगा बीती पिन तो मग बोल लागे की नहीं मग बोल पिन रहा है बीती बोलन भाती फिर अंदर से इच्छा कर उन दिन वहां जो दंतेश्वरी मैया चाहे उनके अंदर से कायत कर ले का नहीं मक आ सकता सी पैसा चौसन टाइप अंदर से कायत कर ले प्रेयर करके नहीं मक चाहिए मतलब चाहिए अंदर से कभी कभी ठान लो ने हुआ है बुलवात नहीं किसी चीज के दिल से चाह और उनमिति मीर हुआ है बुलवात का है हाँ उसनी होली का है और सेकंड दिन जब सुबह होली फिर इले थोड़ी देर से वार्म अप कर पुड़वाए का है अपने शरीर के 4-5 मिनट 10 मिनट जो भी आए और जो शरीर जो स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत इधर उधर क्योंकि हम जो जीरो मूवमेंट में रुआए का है जो शरीर आए अपने जहन सोन उठू हम तो उन्हीं का जब कायद थोड़ी बहुत कायद कर रहा है फिर उसमें कर ले फिर वहां पे कर ले साड़ी पिंदू नून बोले साड़ी उतरते पिंदुक बल हो नुआ वहां पिंक साड़ी पिंदू फिर महिला दिवस दिन अब मगर उसे नहीं पता रहे उन दिन मैं फिर लाल साड़ी पिंदू दिले मैं फोन कर रहे तब उन मन बर दीदी मन की नहीं इलन मीरू आए मैं सोच ले की हाँ इलन मीरू आए बोले भाती मैं नहीं आने का लाल बीती गस नहीं आने रहे उन्हीं साड़ी पिन ले यार पैदल चले और फर्स्ट इले फिर वहां पहुंचू मग जो लाग ली बहुत ही अच्छा लाग लिखाए कि नहीं हाँ मैं फर्स्ट ही लेगा नहीं अब मैं जूता घेन सके का है तो बाद में फिर अपनी पैसा संग आ रहे हैं फिर जूता घेन लेका है अभी तक बोल चले सुन जूता फिर उन चल पहले बोले मतलब बाहर बल गए जैसे उत्तराखंड ओगरा बोला है उसमें बोले गए ससनी बीती का है तुम्हें और जैसे कि हम लाल बाग में बोले एक बार होली मेजर ध्यानचंद चुकायत हुआ है हाँ उन चो का बोल कर वहां से जो आईजी सर आए हम चो यहाँ बस्तर जो आए उन सर से मिल ले उन सर जो उन चो जो बात आए बहुत ही मोटिवेट करवाएगा अच्छा से हाँ अगर ध्यान से सुन ले फिर यहाँ एक कायत वासे वहां पे पूरा हक दे रो सबके हाँ वहां सम्मानित कर ला फिर नहीं तैयारी करते रहना है ऐसे करूँ मतलब हिंदी में बल का तैयारी करते रहते रहे का बोलून भाती मीरू आय का बोलून भाती उतली दाल में उन सर चो जो गोठिया तो बीती कायत उनके तो मत नहीं कायद करते रहे जो असन सील्ड ओल्ड मिरवाए ये मेडल में अंदर से खुश लागवा नहीं नहीं करते रहे और तो वहीं से ही आधा ज्यादा कायद हो ले सर से प्रेरित फिर उन सर से मिल भाती सील्ड ओल्ड झोंकले खुद दी लोग आए सर हाँ फिर वहां से अच्छा लागवा और उतरन फिर उत्तराखंड जब रहे वहां से बल कलेक्टर सर मिल तो का झाक दी रहे उदल लाए हाँ उतरन हम जो सर आई स्टेडियम जो हम जो सर मनाथ का है पिल्ले सर मन सोनी सर हाँ उतरन नाम जो अभी का है तो निधन होली उन डकाड़े सर ये सर मन मग जात का पैसा बल देव रोत का है हाँ
1: उत्तराखंड जात
0: हाँ उत्तराखंड जात का मग पैसा बल देव रोत का कुसुम फिर उससे पहले और एक बार बल जाओ रहे हैं आसाम बल जाओ रहे हैं हाँ वो न ओपन बीती जाए ओपन बीती हाँ स्टेट बीती में मेडल लग रहे तब आसाम बल गेले का है वहां आसाम जाओ रू का है आसाम तो गेले तो सही उधर लायदम से बचपन का है रहे का है अब जात रहे का है स्टेट ने तो मेडल लग ली का है भाग ले कसनी भी 10 किलोमीटर रहे वहां पे जो यहाँ पे हम जो कोरबा में होली का है कोरबा बल नहीं जाऊ रहे मैं उतरो दूर लेकिन गेले यहाँ से बस जगन बाती मैं गेले यहाँ से मैं अकेले जाऊ रहे का है कोरबा में वहां सरमन मकीस पे से लानू के विरोध का है नहीं बस्तर चको नीली से बोले
1: हाँ, ये बाटले हो रहे
0: छत्तीसगढ़ एसोसिएशन हाँ, जो यहाँ से कायद करवा फिर ओपन बीती हुआ है मैराथन हाँ, हाँ, उसमें मेडल लग लेने रेलवे वेलवे भाव हाँ, भर्ती धरवात का है एक मतलब मेडल लग लो उठावा डायरेक्ट लेकिन मची स्टेट चलग रहे तैयारी बोले उतर नहीं ले लेकिन वहां लगू रहे मचो फिर कुसुम बस्तर चौस लेकिन और तैयारी करा और कायद कर हो से बोलते फिर वहां पर मतलब उदल राय बोल करते रहे जो मैडम आए मचो एस टीवी मैडम करा रहे उनकी माध्यम ले जाऊ रहे मैं वहाँ पे फिर उतरन फिर जाते तो रहे लेकिन आसाम जाते मेरा स्टेट खेलू नीले उतरन फिर मग नेशनल जाते रही सर मन पैसा वैसा दिला जा रायपुर में गेले मच मोबाइल बल घूम ली अब मैं कहन मच नंबर भूल गए बाद में मच भाई के जोन रहे उनके जो इंस्टा आईडी आजकल चला बात का है इंस्टा आईडी फेसबुक बाद में याद कर ले का है अब नंबर मोबाइल तो चोरी होली मचो अब मैं को कोठे नंबर बोल घर चो याद नहीं आए तो बाद में जानू कहन कर फोन करून भाती फिर इंस्टा में मैसेज करून हम मच मोबाइल घूम ली फोन लगा बोले फिर नंबर दे रहा का है फिर गेलू उन बाडले खेलू नीलू फिर थर्ड बार फिर अभी फिर जाओ रहे बिहार में बोल जाओ रहे उसने बोले ठीक ही रहे का है पुड़वा
1: बिहार ने का रहे
0: बिहार ने बोले क्रॉस कंट्री रहे हाँ असम ने बोल रहे क्रॉस कंट्री हुआ एक 10 किलोमीटर
1: क्रॉस कंट्री बोल
0: क्रॉस कंट्री बोलने ओपन मैराथन जो हाँ साल में एक बार हुआ है का हाँ अक्टूबर नवम्बर
1: बोलो ने ओपन रहे कोनी बल भाग
0: हाँ
1: कोनी बल उम्र चो लोग भाग धर
0: हाँ एज ग्रुप रू आए उसमें भी 17, 18, 19, 20 और 21 ले उन पाटे ओपन रू आए का है हाँ 10 किलोमीटर जैसे वहाँ पे कितरो 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर रू आए उदली दायले मतलब अच्छा लागू है मके नहीं करते रत रहा है उदल दायले और अच्छा लागू है का है नहीं बाहर बाहर बल खेलुक मिरू आए बाहर बल घूमुक मिरू आए और जो पैसा बीती बात है पैसा बल मिरू आए तो उन सब कुछ अच्छा लागू है का ये भी बोले
1: तो ये भी जैसन आमचो इतरो सपाई गोठोली आमचो जैसन कोनी सुन तो लेखा लेखी मनासोत और जैसन कोनी मन ने आसन बनासोत की आम के बोले ये दौड़ने नाले मैराथन ने नाले और कोई कहीं खेलने जैसन भाग धर तो रहा तो असन आमचो नुआ बाबू नोनी मन का जी कहीं आप लोग बाटले संदेश
0: आमचो जो काय तो आमचो संचो जो नास काय लेका लेकी मन सब है जो नाम चल बड़े बल्लास होत नानी बल्लास होत आमचो ले हाँ उन मन का जो यही सांग जो मतलब कुछ ना कुछ रुचि अंदर से रू आए काय उन रुचि के निकरात रहे काय तब हुआ है काय मतलब मैं बल नहीं जान रही स्कूल पढ़ते रहे लेकिन लाख रही कि नहीं पुलिस में जात रहा है लेकिन पुलिस में जात रहे तो काय कर रहा है उन नहीं पता नहीं रहे लेकिन इधर बारी नहीं कर ले लेकिन कुछ नहीं जान रहे पर तो कितना आए बोले भाती लेकिन बाहर में जब नहीं कर ले तब पता चले कि गांव में कुछ नहीं पता चलते रहे जब यहाँ जगदलपुर में ही ले रहे तब अभी जाने कि नहीं पराल सब कुछ हुआ है का है मीरू आए सन टाइप से फील लाग ली का है तो उन्हीं कह चाहे से मैं बोले कि मतलब कुछ ना कुछ आप लोग रुचि हो लो ने अपने अंदर से दिखात रहे का है
1: गोटो गोटो और पूछे देखिए जैसे बस्तर हेरिटेज मैराथन ने पहले स्थान ली उन्होंने कितना पैसा मिल ली
0: वहाँ 150,000 ली जानू
1: हाँ। ये सुन तो लोग मन का गोटो बाट दिखा लो वहाँ आया की ये दौड़ बोलो ने परा तो मैराथन ये के करुण बोले जीत लो ने पैसा
0: मिरुआ का है
1: ये मैं पूछ ले सुन तो लोग मन बोल दे होती 2-4 हजार सुन लो ने तुम मन के लागे देखे बोले पैसा मिल सकता
0: हाँ खूबी पैसा इतना पैसा बोलो ने मैं पहले सोचते रहे क्योंकि मैं उतना पहले पैसे कभी नहीं काय कमा रहे हैं या कमा ले से मतलब लागत रहे का जब वहाँ आमचो नारायणपुर मैराथन होली क्योंकि वहाँ बल संभाग बीती रहे आमचो मतलब उन मन खुद नारायणपुर जिला से रहे फिर संभाग चु रहे और ओपन सब चु रहे का हाँ वहाँ मतलब भैया जितरो करा रहे हूँ सामने मज वहाँ बल 1 लाख उठाते इतरो काय भरोसा रही लेकिन थोड़े गड़बड़ा ली का मचो
1: अच्छा, पहला ना, बल 1 लाख रहे
0: हाँ वहाँ बल 1 लाख रहे का लेकिन
1: तीसरा कितरो रहे
0: सेकंड जो दूसरा रहे 50,000 रहे और 20,000 रहे का
1: तीसरा स्थान मिल रहे
0: हाँ तीसरा वहाँ 20,000 मिल रहे लेकिन खुश लग ली 20,000 भी बहुत काय तो आए का जो पर आलू 1-1.5 घंटा जो 1.5 घंटा काय तो आए पर काय तो आए हाँ और यहाँ जो तय कर ले यहाँ बोलूस नहीं रही का है तो पैसा मिल ली खुश लाग ली फिर उन्हीं जो जो जूता घेन ले जो नहीं पहले जो जो पैदल चल भी आए उन भी तीन तो तैयारी करते रहे फिर जो भैया बोल लो जूता चरक फरक रुआ है रोड रन चु भी और ग्राउंड चु भी तो दूसरा भी घेन अभी तुझे लग पैसा ही लीस का है हाँ फिर मैं घेन ले का है 10,000 हाँ 10,000 चो आए का है जूता उन जून जूता पर आले अच्छा लागली घुटना उठना नहीं दुख ली का है उसमें कार्बन प्लेट लग रुआ गए हाँ पीछे उतरे धूर पर आले तो एकदम कंफर्ट लाग ली का है चलो इतरो खर्चा कर ले तो मिल ली उनसे फायदा और जो खा तो पी तो आए डाइट बुलवा हाँ फल फ्रूट पानी जोन भी है जितरो खर्चा है हाँ वहाँ लगा ले तो पैसा मिल ली का है क्योंकि शरीर ने लगा लो ने जितरो शरीर के अच्छा संगा वहाँ बोलो ने काय तो आए काय पैसा ज्यादा काय शरीर मायने बुलवात नहीं उसने बीती आए काय खूब अच्छा लागू आए काय
1: मान सम्मान बोले मेरे से
0: मान सम्मान तो गहे दिन मिलते ही
1: तो अच्छा गोटा है सुन तो लोग मन के बोले दुई टप्पा कहीं नंगत गोट सीखुक सुनुक मिलली होती आमचो संगे पीछे गोट बात के सुनुन भाती तो इतरो अच्छा तू इस टप्पा गोट के सांगली और सुन तो आमचो दादा दीदी मन बोले अच्छा नंगत लागली होती तो आली तेबे सपाय दादा दीदी मन के बोले और तू के बोले खूबे खूबे जुहार
0: मचवाड़ लेवल सभी दादा दीदी मन और तू बल सर के जुहार
2: साप्ताहिक खेल पत्रिका
3: कार्यक्रम खेल पत्रिका में आप सुन रहे थे मैराथन खिलाड़ी कुसुम शार्दुल से भरत कुमार गंगादित्य की भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोक रस। प्रस्तुति है संपत रामनाथ की। संयोजक हैं चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: कोनिन लोगरस के सुन तो सपा दादा दीदी मन के मच बाटले जुआर हाले सुनु पहिल फोन काचो आए।
1: हेलो
2: कोनिन लोगरस।
1: नमस्कार दादा, मैं चिंगरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ इंद्रभान सिंह बोला था।
2: हाँ दादा, जुआर ना कसन आसास।
1: ठीक है दादा, ड्यूटी में हूँ और ड्यूटी के टाइम खत्म हो गई से और बस आए का टाइम हो गई से दादा। और हमारे कति तो खूब आंधी तूफान रही से दादा, एक हफ्ता सारे कोई कार्यक्रम ठीक से सुन नहीं पाए, नेटवर्क गड़बड़ रही से एकदम।
2: गर्मी से राहत मिल रही है।
1: हाँ गर्मी से राहत मिली से आज में दिसंबर को पंडवानी गीत सुनू दादा, वो का पिजन बाई की आवाज में, पिजन बाई की आवाज में पंडवानी गीत वो गीत ला सुना दिया दादा।
2: ठीक है इंद्रवान दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
1: शामिल करा दादा, जोहार।

एक दिन यहाँ का दसी दुआस के दिन किच्चक रानी सुजेशना के पास भोजन खाए बर पहुंची और लेके थाली जब तैयारी भये सुजेशना और देवी सलेंद्री हाथ में पंखा लेके हिलावा थवे

है, एक नाम सलेंद्री है, मोर पास में बेटी के सामान रखे हो, ये तोर भाची है की चक्कत है, गाँव भर कहते बेटी की बेटो सब बहुत जन मोर भाची नहीं हुआ है, पर ये मोर राज रानी के लायक है, 12 बजे रात के मोर से घर में भोजन के थाली सजा के आज भेज देबे। सुदेशना घायल हो गए और देवी सलेंद्री ला बोले, देवी सलेंद्री 12 बजे दोपहर के बेर हो गए, कहे भाई भोजन के थाली

बात है दाई। और भैया के नियत मोले अच्छा नहीं लगा तब मैं का करूं बेटी, ये थाली ला जल्दी ते पहुंचा के आ जा। हाथ में थाली लिए लोटा में पानी और देवी सलेंद्री आगे आगे चलने।

0: कथी ला मुंद ली
1: ओ?
0: देवी सलेंद्री भोजन लगे के पहली मन में सोचा है भगवान मोर भरते दया करे मुरारी काबर कि अभी अभी अगर आखी मनी दिया गे मैं थाली ला छोड़ दूँ प्राण लेके भाजा भगा जाऊँ ऐसे कहकर सलेंद्री और प्रेम के साथ धीरे धीरे भीतर में पहुँची।
2: हेलो पोनी लोगराज।
3: हेलो
2: यहाँ पोनी लोगराज दादा कौन बोला ससना आगे?
3: राम कुशल पटेल बोला था मैं पारा लोरमी ले।
2: पटेल दादा सांगाना काय काय काम बोला चले से आजकल?
3: सब बढ़िया है माहौल तो अभी गर्मी के फुल गर्मी चलते ही ना तो।
2: अच्छा पानी नहीं मार ले से?
3: पानी नहीं हवा गरा चल रहा है खाली।
2: असन जल खूब गर्मी से गाँव
3: बहुत गर्मी है। पेड़ झाड़ तो सब कट कट गए पेड़ झाड़ रही थी तो कुछ हवा आती तो कुछ नहीं
2: है। हाँ, रुख रही मन वाले लगा तो रहा है और घर मन वाले बना तो रहा है ज्यादा जुगे करुण रुख मन के नहीं तो रहा नहीं।
3: हाँ।
2: पटेल दादा सांगा आज कौन गीत के सुन तो कच फोन लगा ला ससना?
3: ममता चंदा का दे दो फिर।
2: हाँ ठीक है पटेल दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते भी।

0: हेलो पुनीन लोकराज।
1: हेलो,
0: हाँ पुनीन लोकराज।
1: पुनीन लोकरस।
0: हाँ कौन बोला सर? दादा आगे ना संगास नहीं ना।
1: दादा मैं अमीर कश्यप बोले हैं ना, सांगे
0: हाँ
1: लगा ले।
0: हाँ और अमीर दादा कसन
1: अभी
0: आसना सांगा कब दिन ले फोन लगा
1: तो
0: ले
1: नगत
0: सर।
1: नगत आंसू आल तो मैं का सोने परिवार को सुना सासना।
0: हाँ मैं सपाई अच्छा हूँ दादा।
1: तू संपत नाग बोल सी इसने
0: हाँ दादा मैं संपत नाग बोले से। हाँ
1: चिता लेना तू चवाज के।
0: मुख्य चिताल चिताल लागली का। और अमीर दादा दान दान निबुन मुरिया लासना गाँव बाटे आजकल।
1: हाँ ये दे रोपा लगा का छुई तैयार करूँ ना, पोला पका तो रहा है।
0: हाँ हाँ और पानी कसन आ जाल तुम चो गाँव मन बाटे।
1: पानी तो आजकल नहीं आता ना,
0: हाँ हाँ फिर
1: रोज शाम शाम तो बादरी धा के समांतर मारे नहीं अच्छा ले।
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पानी सुविधा से पानी दकान दकड़े तो पोला पका लो रहा से।
0: हाँ हाँ और कोनी कोनी बीच ने तो कौन कौन बटे अच्छा मार लिसका है ना सन।
1: हो कौन कौन तो बाटे अच्छा मारे से काय।
0: हाँ और अमीर दादा तुम चो गांव बाटे हम सर की बोल बेचू आस ना।
1: हाँ बेचू आत ना सर जी।
0: हाँ कसन आस जल सर की होने सु।
1: सर जी बोले अच्छा आया से ना।
0: हाँ। और अमीर दादा सांगा आजी कौन गीत के सुन तो कच फोन लगा ला ससना।
1: ये आजी मुके गोटो को छत्तीसगढ़ी गीत सुना उन दिया सुना काय तो बीती ना उन चना के दार बीती।
0: हाँ चल ठीक है अमीर दादा तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते बेना।
1: हाँ।

0: फोन इन लोगरस के सुन तो सपा दादा दीदी मन के मच बाटले जुआर हाले सुनू पहल फोन काचो है।
1: हेलो फोन इन लोगरस।
2: जय जोहर। वंदे मातरम। जय जोहर।
1: वंदे मातरम
2: दादा। मैंने रेलवे कॉलोनी जगदलपुर जगदलपुर बस्तर रमेश भारद्वाज।
1: रमेश भारद्वाज।
2: हाँ दादा।
1: हाँ भारद्वाज दादा संगा ना का आजकल काय काय काम करते चले ना।
2: हाल चाल ठीक है। पानी तो गिरा थे दादा। हाँ। पानी बहुत पानी गिरी। आज देखो मानसून तो आ गए है करीब करीब।
1: हाँ।
2: मानसून पहुँच गए है।
1: हाँ पानी तो आजकल मारे से ना जगदलपुर बाट बोले।
2: अब देखो खेती किसानी वाले मतलब भी थोड़ा आराम होगी से।
1: और रमेश दादा संग आज कौन गीत के सुनते कच फोन लगा ला
2: दादा। हाँ, ए, मुर ये सुने के राशि दे मन के संगवारी मन गाए है दादा गीत के बोले ए बाटो जंग से अच्छी चुरी लो रहा।
1: हाँ।
2: चुरी घेरी दे दादा मोके कर सुना करी दादा।
1: हल ठीक है रमेश दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते भी।

0: फोनिन लोगराज
1: नमस्कार दादा मिरी को जिला कोरिया छत्तीसगढ़
0: इंद्रवान दादा सांगा ना आज कौन गीत के सुन तो काजे फोन लगा ला सस ना
1: दादा गीत सुनो दादा यहाँ तो धूप जबरदस्त करी से कल पानी गिरी से आज उमस गर्मी बढ़ गई से दादा आज मैं ममता चंद्रा का तो आवाज में भी सुनो कुछ भी छत्तीसगढ़ी गीत सुना दी
0: ठीक है इंद्रवान दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए

0: हेलो फोन लोगरास।
1: हाँ जी हाँ दादा फोन लोगरास।
0: जुआर कौन बोला से आगे ना संगास नहीं तुम्ही।
1: मैं विवेक कुमार चौधरी बोले से दादा।
0: हाँ कहाँ ने दादा।
1: सरसा गुरा जिला बस्तर छत्तीसगढ़ ने बोले दादा।
0: हाँ दादा सांगा ना कसो ना सस तुम्ही।
1: ये तो दादा खरे आते छुट्टी आए। मैं मास्टर रायगुड़ सर भाई दादा।
0: कहाँ पढ़ा वाल दादा।
1: फर्स्ट आई गुड़ा बेच दादा फर्स्ट आई गुड़ा बेच घर
0: आते। अच्छा गांव ने ची पढ़ा वास।
1: अरे गांव से पढ़ा है। अरे 16 तारीख खुलवा दी स्कूल।
0: हाँ
1: तो भी तीन गांव की चला दिया दादा।
0: कौन भी तीन दादा।
1: ये बनवीर कच्च गांव में की ताए गुटे से आंचो। ये भूई ने जन्म धर लू यही भूई ने मर लू माता सिरहा आए झाड़ा सिरहा आए। एक गीत के सुनावा से। हाँ दादा मैं 1 साल ले लगा दादा।
0: नहीं,
1: आगे बढ़ लगाते रहे आगे बढ़ लगाते रहे 1 साल ले भी बार करू रहे नहीं लगाए।
0: अच्छा ये भी 88 पे जान दादा।
1: ये भी 88 दादा लखवा मारनी काय करू अब रही कुछ नहीं सके को निहास के धर में ही दुख हो गए ना हल्दी है। काय करू अब दादा हम कम भाई फरकस रहे ना। कोनी लोक सी काली पहुंचे चंद्र जी सी ठाकुर को बोले जी हार करे थे। और बलवीर बूटी से आनाते हूँ तो रिटायर हो के रिटायर हो लो हूँ नहीं साग ले रिकॉर्डिंग सुनो आप मैं सुन के रहूंगा दादा जमा चीज की सुनो है। आप मन कथा दासा दादा
0: सब बचा सादा हमी
1: हमी बोला सा आप पानी पाना मारे से दली परा है।
0: अरे ठीक है दादा तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए ना।
1: अरे ठीक है दादा जी
0: हाँ जी।

अर्जुन तेरा चौकूट आए बड़ियारा पुरगा वीर माने भूत जन्म लो झाड़ा सिरहाना अर्जुन तेरा चौकूट आए बड़ियारा पुरगा वीर माने भूत जन्म लो झाड़ा सिरहाना अंग्रेज मन उदलताए राज कर तिरला राजा मन बले अंग्रेज चो हाथ चो खेल ना होला अंग्रेज मन उदलताए राज कर तिरला राजा मन बले अंग्रेज चो हाथ

राज दीवाना रे तो ऊपरे खूबे जुरुम करला खूबे डंड होली ते वे आदिवासी मन झूला राजा चो दीवाना।

झाड़ा सिरा चो बाट दखालो वाट उपरे चलला जोहन बाती आपलो हक ताजे सपाय लड़ला झाड़ा सिरा चो बाट दखालो।

झाडाशिरायां सुबीर झाडाशिरा बीर झाडाशिरायां सुबीर झाडाशिरा आरापुरने

झाड़ा सिरा जन्म धर्म।

0: हेलो, गुड इवनिंग
1: हेलो।
0: लोगरास।
1: हाँ जोहार दादा। तो
0: हाँ जोहार ना, कौन बोला सा दादा?
1: कुमार साहू बोला से दादा करमा चौक लोहारी है जिला कमाल छत्तीसगढ़ से।
0: हाँ, और अशोक दादा संगा ना पानी ओकरा कसन मार ले जाले।
1: पानी तो नहीं गिरा से दादा, हम कपक थे। अभी तो मौसम एकदम गर्मी है ना, कप्पा ले टपा हो गया अभी तो।
0: हाँ, ए बस्तर बाटे किंडी किंडी कौन कौन बट मारे से ना पानी आजल।
1: हाँ,
0: हाँ
1: बस्तर थोड़ा बहुत हरा भरा हो जाए अगर गर्मी के असर कम पड़ जाए दादा।
0: हाँ ऐता किंडी के उतलो गाम तो नहीं आए, जे के
1: हाँ
0: से
1: हाँ
0: काय पेड़ बोले उतलो नहीं आए।
1: हाँ
0: हाँ, और अशोक दादा काय काम बुता करू आसना तुम्हें?
1: अभी तो दादा गर्मी में कुछ काम बुता नहीं बना थे दादा, काहे गर्मी ज्यादा बाढ़ गए है। अभी बस खेती किसानी की तैयारी में लगे हवन कि पानी
0: हाँ
1: कब गिरे तो कब खेती किसानी की तैयारी करी चाहिए।
0: हाँ हाँ उम्रे उम्रे देवे पानी। अल अशोक दादा संगा आज कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा लाता ना
1: और
0: दादा
1: लक्ष्मण
0: तुम।
1: मसूरिया का है का दादा, कोई
0: चल
1: भी गीत चल ही दादा।
0: हाँ, ठीक है अशोक दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: बोलो।
1: हाँ सब अच्छा है दादा। तो आकाशवाणी जगदलपुर कार्यक्रम का ने सुनवास दादा तुम्हें? रेडियो ने सुनवास की मोबाइल ने सुनवास ना?
0: मैं
1: हाँ, रेडियो ने बोला तो सुन को आए जानो।
0: रेडियो आप
1: हाँ,
0: क्लियर हुआ है।
1: तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए ना।
0: हाँ दादा, राम राम दादा।
1: जरूर।

0: हेलो फोन इन लोगरास।
1: हाँ दादा नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोला सर? दादा के नाम संगा सुनाई ना।
1: हाँ गीदम रो जगदलपुर से मैं की राजू राव बोल रहा हूँ दादा।
0: राज दादा कसना ससना तुम्हें?
1: बस ठीक है दादा, चल रहा है दादा, माता की कृपा से चल रहा है, माई दंतेश्वर की कृपा से सब
0: हाँ
1: काम चल रहा है दादा। और दादा आप सुनाइए क्या हाल चाल है बताइए।
0: सब बढ़िया है दादा, तुई संग जानो आजकल पानी माल कल कसन लागे जाले आज।
1: हाँ बतर में अब पानी आ गया है दादा, अब गिर रहा है झिमिर झिमिर, तो बस वही है दादा कि आप थोड़ा अच्छा लग रहा है दादा, थोड़ा गर्मी भी कम हुआ है।
0: हाँ किंडी काली पानी मार तो किंडी शीतर लागे का मुंह
1: हाँ
0: खाने
1: दादा
0: में।
1: हाँ
0: और राजू दादा संगे आज कौन गीत के सुन तो काज फोन लगाला सास?
1: पानी मारे गले झाई।
0: पानी मारी गला जाए ने।
1: हाँ दादा
0: हल ठीक है दादा, तुम चो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए दादा।
1: हाँ दादा जुआर दादा।
0: जुआर ना।

0: हेलो, गुड इवनिंग लोगरास।
1: दादा जोहार ना।
0: जोहार ना, कौन बोला सर? दादा आगे ना संगा सुनाई ना।
1: बागेश्वर मंडाई बोलू से ना, फरत गांव जिला कोंडा गांव ले।
0: आओ बागेश्वर दादा संगा ना, आजकल काय काय काम होता चले से?
1: काम बोता तो बिताई नहीं दादा, ले कोई खेती किसानी तो काम चलू है।
0: हाँ, ये बोनो कुमरिया लाज बेना तुम्हें?
1: अभी ना जुन दादा।
0: हाँ, पानी कसा ना जाले? हाँ
1: पानी तो नहीं, राती पर रहे
0: हाँ
1: खेदिक खेदिक, अभी तो ना जुन। हम चेक लिखे ना।
0: हाँ
1: हाँ
0: और बागेश्वर दादा सांगा ना, कितलो तक तुम पढ़ला सा जाल ना?
1: मैं 12वीं पढ़ने से ना 8 बीता है।
0: हाँ अच्छा, 800 बीता है।
1: हाँ
0: एवे खेती बाड़ी करुआस की नौकरी बोल करुआस ना?
1: नहीं मैं ड्राइवर करे थे ना।
0: अच्छा, ड्राइवर काम करुआस।
1: हाँ
0: काय बीत के चलाए से जाले?
1: मैं छोटे गाड़ी चलाऊँ थे ना, बोलेरो।
0: अच्छा, बोलेरो।
1: हाँ
0: और काम बुता कसन? अच्छा चले से जानो।
1: अच्छा है करे थे, फसल में जाकर काम वाले करे थे ना, तो
0: हाँ, गच्चा
1: यू
0: बुत।
1: का जो।
0: हाँ
1: हाँ ये रेडियो सुनन सुनन गीत लिखन
0: हाँ
1: लिखन से सुनन सुनन, तो यूट्यूब का जो काम करे थे ना।
0: हाँ
1: हाँ दादा
0: और पागेश्वर दादा सांगा, आज कौन गीत के सुन तो आज फोन लगा ला ससना?
1: योगेश्वर पुजारी तो सुनाऊं जैसे ना, डेंग डोंगरी ने मांदर बाजे।
0: योगेश्वर पुजारी चो। हाँ
1: हाँ दादा
0: ठीक है पागेश्वर दादा, तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से ना, सुनाते हुए
1: अलजुआर ना।
0: अलजुआर दादा।

आप सुन रहे थे फरमाशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोक रस। प्रस्तुति थी संपत रामनाग की, संयोजक थे चंद्रशी ठाकुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the The news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defence technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jade Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF 2026, a week-long celebration of documentary, short fiction and animation cinema, is all set up to begin on Monday. Addressing a curtain raiser press conference in Mumbai today, Managing Director of National Film Development Corporation, NFDC, Mr. Prakash Magdum, informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सुबह 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।